0: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 6:55 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में खबरें पेश होंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषश्च ह्यः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीयोपवेशनं कृतवन्तौ। उभयोः मध्ये ऐतिहासिक सभ्यतागत संबंधान् इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं वार्ता अभवत्। संवादे म्यांमार भारत देशयोः मिथः सुरक्षां संपर्कं च समेत्य देशद्वयोः संबंधानां समेपि पक्षाः चर्चिताः। उपवेशनस्यानन्तरं विदेश सचिवः विक्रम मिसरी अवोचत् यत् देशद्वयेन विदेश व्यवहार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यादि विषयेषु कार्याचरणाय साहमत्यं प्रकटितम्।
2: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
1: राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मुः अवदत् यत् भारतस्य नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, महासागरादि नीतिषु म्यांमार देशः महत्वपूर्णः सहभागी अस्ति। ह्यः राष्ट्रपतिभवने म्यांमार देशस्य राष्ट्रपत्युः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य स्वागतं कुर्वन्ती राष्ट्रपतेः मुर्मुः अवदत् यत् उभयोः देशयोः मध्ये पुरातनाः सम्बन्धाः सन्ति। राष्ट्रपतिः अवदत् यत् म्यांमार देशः भारतस्य दक्षिण पूर्व एशिया देशस्य प्रवेशद्वारः अस्ति, अपि च एकमात्रः आसियान देशः अस्ति यस्य भूसीमा भारतेन सह संलग्नास्ति। भारत ओमान व्यापकार्थिक सहभागिता संधिः CEPA

0: मध्यमोद्यमेभ्यः च महत्वपूर्णरूपेण लाभो भविष्यति।
1: I am confident that this comprehensive agreement
2: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
1: of our shared future.
0: भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः रक्षामन्त्रिणोः द्वितीय संवादोपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्याम् अभवत्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अथ च ऑस्ट्रेलिया देशस्य उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्रिश्च रिचर्ड माल्सः उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवन्तौ। श्रीसिंहेन प्रोक्तं यत् उपवेशनावधौ भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोर्मध्ये सुरक्षासम्बन्धः सुदृढः अभवत्। श्री माल्स अवादीत यत् ऑस्ट्रेलिया भारत देशौ रक्षा सहभागितां सुदृढः अकुरुताम्। देशद्वयं सामुद्रिक क्षेत्रे मिलित्वा कार्यं करिष्यतः। वार्तायां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग विषये प्रगतिः समीक्षिता, यया सहभागितायाः नूतन मार्गस्य अन्वेषणं भविष्यति। भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्यां दलस्य वरिष्ठैः पदाधिकारिभिः कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कृतवान्। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् दलस्य सांसदः प्रवक्ता च डॉक्टर संवितपात्रावर्यः नरेन्द्रमोदीप्रशासनस्य 12 वर्षाणां सेवायाः विषये, सङ्घटनात्मकविस्तारस्य विषये तथा च समाजस्य विभिन्नेषु वर्गेषु दलस्य प्रसारस्य विषये विवरणानि विनिमयीकृतवान् इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने कल व्यापार और आर्थिक, रक्षा सुरक्षा तथा सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपसी संपर्क के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की है। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और उसकी क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
4: Both sides underscored the
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और आध्यात्मिक संबंध हैं। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रैंडन लिंच कर रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कल से लागू हो गया। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारत को ओमान की 98% टैरिफ लाइनों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी, जो ओमान को होने वाले भारत के 99% से अधिक निर्यात को कवर करती है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी के

0: मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरू भाई अंबानी के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल के ढहने की जांच के लिए 2 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया है। इस हादसे में 6 श्रमिकों की मृत्यु हो गई थी। जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा गठित समितियों ने जांच शुरू कर दी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि पुदुचेरी में पेट्रोल, डीजल या रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इनकी आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेल उद्योग के राज्य स्तरीय समन्वयक ने कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों का पर्याप्त भंडार है और निर्बाध आपूर्ति जारी है। जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किए। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। इनमें ओलंपियन बलराज पंवार, एशियाई खेलों में रजत पदक विजेता अरविंदर सिंह और जसविंदर सिंह शामिल हैं। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में आज गरज के साथ तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U Min Aung Hlaing held detailed talks on the entire gamut of bilateral issues in New Delhi yesterday. The discussions covered trade, defence, border management and culture, among other areas of interest. Briefing media after the talks, Foreign Secretary Vikram Misri said, the Prime Minister reaffirmed India's support for the sovereignty and territorial integrity of Myanmar, and both sides underscored the importance of preventing the misuse of territory for activities inimical to their security interests.
2: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India and the US have finalized most elements of the first phase of the bilateral trade agreement and negotiations are now focused on a few minor issues, commas and full stops. He said that the US team is in New Delhi to hold talks on finalizing the first phase of bilateral trade agreement BTA. The talks will take place in New Delhi from today till Thursday. India's chief negotiator is Darpan Jain, additional secretary in the Department of Commerce, while the US team is led by its chief negotiator, Brendan Lynch. 5 newly appointed Supreme Court judges will take oath today. Chief Justice of India, Surya Kant, will administer the oath of office to the judges. President Draupadi Murmu, after consultation with the Chief Justice of India, has appointed 5 new judges to the Supreme Court. According to a notification issued by the Law Ministry, Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Justice Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Justice Shri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Justice Sanjeev Sachdeva, and Chief Justice of Jammu and Kashmir and Ladakh High Court, Justice Arun Balli, have been elevated as Supreme Court judges. Senior Advocate Venkita Subramani Mohana has also been appointed as a judge in the Apex Court. BJP National President Nitin Nabin held a meeting with senior party office bearers and workers in New Delhi yesterday. Talking to media, party MP and spokesperson Dr. Sambit Patra shared key details, highlighting discussions on Narendra Modi government's 12 years of service, organizational expansion and future initiatives aimed at broadening the party's outreach across various sections of society. He said that the government is completing 12 years in office and everyone

0: One has witnessed how India has progressed under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with advancements taking place across every sector. Uttar Pradesh government has constituted two separate high-level inquiry committees to investigate the collapse of the segmental span of the under-construction bridge over the Betwa River in Hamirpur district. The committees under the district administration and Uttar Pradesh Bridge Corporation have begun a comprehensive investigation into the incident which took six lives. District Magistrate Hamirpur Abhishek Goyal said that the three-member inquiry committee constituted by the district administration, headed by the additional district magistrate Namami Gange, is conducting a detailed examination of all administrative, technical and procedural aspects related to the incident. In Uttarakhand, UNESCO World Heritage Site Valley of Flowers, located in Chamoli district, has been opened to tourists. The Forest Department has appealed to visitors to cooperate in the conservation of the valley's rich biodiversity and rare plant species. According to the department, Valley of Flowers is currently home to more than 300 species of flowers and several rare varieties of flora. Forest Range Officer Chetna Kandpal said that the valley will remain open to visitors until the 31st of October. In hockey, India registered a commanding 4-1 victory over Korea in their third Pool A match of the Men's Under-18 Asia Cup in Takamigahara, Japan, yesterday. Captain Ketan Kushwaha led from the front with a brace, scoring in the third and 36th minutes. Varinder Singh added another goal in the fifth minute, while Shahrukh Ali sealed the win with a powerful strike in the 54th minute. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 7:10 हुए हैं। समाप्त करें लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह। प्रोग्राम से पहले एक वक्फा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज़ जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे राकेश, चिप्स खाएगा?
4: एक मिनट यार, ये कुछ अजीब टेस्ट कर रहे हैं।
3: अच्छा, जरा पैकेट दिखा। ओए, ये तो एक्सपायर्ड है।
4: क्या
5: ऐसा आपके साथ भी हो सकता है? इसलिए ध्यान रखें, खाने पीने की कोई भी चीज खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं 1800-112100 पर।
6: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट।
9: रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, वैसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ, इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में। 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
11: तीनों कॉलेज में
12: डोंट वरी,
11: फीस तो देखो।
13: क्या हाल है, क्या हुआ?
12: फीस की टेंशन।
13: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
7: RBI कहता है
14: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: मीटिंग में 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। आज मंगलवार हैं, 2 जून 2026 ईस्वी। आज का पैम सुबह लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने मेज़बान रूफ अली और नाजिमा रशीद का प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर। दुआ है कि ये खूबसूरत सुबह अपने दामन में तमाम सामीन के लिए और हम सब के लिए नई उम्मीदें और नई खुशियां लेकर आए।
1: आमीन सुम्मा आमीन। यह आपकी अपनी आवाज़, आपका अपना रेडियो स्टेशन, जहां अल्फाज भी दिल से निकलते हैं और बातें भी दिल तक पहुंचती हैं। मैं हूं आपके साथ नाजिमा रूफ अली, आपकी खिदमत में हाजिर और ये पैगाम सबसे खूबसूरत से मशहूर है।

0: आपने ट्यून किया आकाशवाणी श्रीनगर का स्टेशन मीडियम 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 MHz पर, और आप सुन रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह अपने मेज़बान रूफ अली और
1: नाजिमा के साथ।
0: जी, आज मंगलवार हैं और आज का जो हमारा जो मरकज़ी मौजू है वो सेहत के हवाले से भी रहता है, और आज हम एक ऐसी आलमी लहर के बारे में बात करेंगे जो बराह रास्त हमारे बच्चों के जिस्मानी और ज़हनी सेहत से जुड़ा है। नाजमा, हाल ही में मलेशिया दुनिया का वो ताज़ा तरीन मुल्क बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर कानूनी पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया और चंद यूरोपीय ममालिक के बाद मलेशिया का ये कदम इस बात का सबूत है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ तफरी नहीं बल्कि बच्चों की सेहत के लिए एक संगीन खतरा बन चुका है।
1: बिल्कुल वजह फरमाया आपने, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूके, अब तो इसमें मलेशिया का भी इजाफा हो चुका है। ये कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे कम उम्र जो सार्फीन है, सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनके हवाले से नए जवाबित पे गौर किया जा रहा है। और ये जो पाबंदियाँ हैं ये या तो 16 ईयर्स या फिर 18 ईयर्स के जो बिलो के बच्चे हैं उनके लिए रखी गई है, ताकि वो जो कम उम्र बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर उनके पाबंदी से जो है ज़रा नज़र रखी जाए। और हुकूमत का ये कहना है कि इकदामात जो है इन बच्चों को ऑनलाइन की जो हरासमेंट होती है, ऑनलाइन हरासानी या जहनी दबाव या जो नामुनासिब मवाद होता है सोशल मीडिया के जरिए उन तक ना पहुंचे और उन्हें जो है उनके जहनों पे कोई खराब असर ना डाले। ये अच्छा एक कदम है, बिलखसूस इस दौर में जब हम अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं सोशल मीडिया के साथ इतने जुड़े हुए हैं कि जो मॉरालिटी का एक कॉन्सेप्ट रहा है शायद उसके साथ कहीं कहीं मिलावट हो रही है।
0: जी बिल्कुल, और सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर दुनिया भर की हुकूमतें जो हैं इस सख्त फैसले पर क्यों मजबूर हो रही है। तुम्हारी सेहत और नफ्सियात के मुताबिक, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया का जो बेजा इस्तेमाल बच्चों की सेहत को और जो बड़े तरीकों से जो है तबाह कर रहा है।
1: बिल्कुल, और याद दिलाते चले यहाँ पे कि मलेशिया ने ये जो टोटल सोशल मीडिया बैन है ये लगाई नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियली इस वक्त पे ये इम्प्लीमेंट किया है कि ये जो बैन है जो 16 साल के कम उम्र बच्चे हैं, 16 साल के या फिर 16 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए फिलहाल सोशल मीडिया हैंडल्स बनाना या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स को जो है हैंडल करना उस पर फिलहाल के लिए पाबंदी लगाई गई है। ये हम मलेशिया की बात कर रहे हैं, और बात इसलिए कर रहे हैं किसी और मुल्क की क्योंकि ये ऐसा कदम है जिसको सराहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बताते चलें कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं कौन कौन से रहेंगे, इसमें लगभग 8 मिलियन यूज़र्स जो है उस कंट्री में जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फिर यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उन पर पाबंदी लगाई गई है। और

0: एज वेरिफिकेशन होगी पहले, जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे भी वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है कि एज को पहले वेरीफाई किया जाए, तब जाके जो है आपको जब अंदाज़ा पूरा यकीन हो जाएगा कि उनकी उम्र 16 ईयर से ज़्यादा है, तब जाके आप ये कर सकते हैं। अच्छा, इस पर पेनल्टीज भी लगाई गई है, जो टेक कंपनीज हैं अगर वो ये ऑर्डर्स जो है कंप्लाई करने से फेल हो जाते हैं तो उन्हें उन पे लगभग 10 मिलियन रिंगिट जो वहाँ की करेंसी है वो जुर्माना हो सकता है।
1: बिल्कुल, मलेशिया ने तो कानून बना दिया, लेकिन क्या हम बतौर मुआशरा इस खतरे को समझ रहे हैं? हमारे डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमतों के साथ साथ वालदेन का भी आगे आना है, आना होगा। बच्चों को स्क्रीन से दूर करके इंडोर और आउटडोर खेलों की तरफ लाना होगा। इससे जो है इसे बातें इसमें जो है मतलब उनमें जो वो चेंज है, मतलब वो जो सोशल मीडिया को का प्लेटफॉर्म पे जो आते हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनका जो रुझान है वो कम हो जाएगा और इनकी जो जहनी सेहत जो है उस पर भी वालदेन को नज़र रखनी होगी।
0: बिल्कुल, ये ओवरऑल हम देखें हर एक तरीके से बच्चे पे असर डाल रहा है, चाहे हम अगर हम जहनी सेहत की ही बात करें, आप देखें कि हमारे बच्चे के सामने खाना रखा हुआ होता है और उसे खबर ही नहीं होती कि मैं खा क्या रहा हूँ। वो इतना मसरूफ होता है उस फ़ोन में, सोशल मीडिया पे। और आप देखें कि घर में कितना आइसोलेशन का माहौल रहता है, चार लोग घर के चार अफराद जो है या तो चार कमरों में होते हैं या फिर एक कमरे में बैठ के चार कोनों में होते हैं, दुनिया से जुड़े हुए होते हैं फोन के जरिए, लेकिन इतनी भी फुर्सत या फरागत नहीं छोड़ी होती इस फोन ने कि आप आपस में बात कर लें। तो ये चीज है। और आपने भी रूफ साहब ये नोटिस किया होगा कि हमारी उम्र के जो, अब हम खैर बच्चे तो नहीं रहे, लेकिन हमारी उम्र के जो बच्चे हुआ करते थे, हमें बहुत सी चीजों का इल्म बहुत देर से हुआ जो शायद उस वक्त के लिए मुनासिब था, लेकिन आप देखें कि हमारे बच्चे आजकल वो शायद 3 साल 4 साल की उम्र में जानते हैं जो हम शायद कहीं ना कहीं 16-17 साल की उम्र में जिन बातों का हमें इल्म हुआ था। तो ये जो वक्त से पहले आपको बहुत चीजों का पता होना या फिर ये जो फिल्टर शायद कहीं ना कहीं खो गया है, इससे समाज में बहुत तब्दीली आ रही है और शायद ऐसी तब्दीली जो कि गैर मुनासिब है।
1: जी बिल्कुल, हमारे बच्चे जो हैं, हमारे बच्चों की जो सेहत ही हमारी मुस्तकबिल की जामिन है। सोशल मीडिया की इस वर्चुअल दुनिया से निकल कर इन्हें हकीकी दुनिया की खूबसूरती का तजुर्बा करने दें।
0: जी, बाहर जाएं, घूमें, मज़े करें, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना है और इस मौसम में एंजॉय करें और कोशिश करें आप अपना ये मोबाइल फ़ोन जो है ज़रा सा फ्लाइट मोड पे डाल दें और अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितना खूबसूरत बनाया हुआ है, इन मनाजिर से अपनी आंखों को तरावत बख्शे।
1: बिल्कुल।

0: नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? और बच्चे आगे से जवाब देते हैं, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। आपने बूट पॉलिश फिल्म से नगमा सुना। ज़रा आप सोचें कि आज के दौर के बच्चों को देखें। आज अगर हम किसी 10 या 12 साल के बच्चे से नाजमा पूछेंगे कि बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो जवाब आएगा मेरी मुट्ठी में है स्मार्टफोन या मुट्ठी में है सोशल मीडिया।
1: जी
0: तो मलेशिया ने 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया की पाबंदी इसलिए लगाई है क्योंकि बच्चों की मुट्ठी में मौजूद ये स्मार्टफोन इनकी तकदीर बनाने के बजाय इनकी सेहत और मुस्तकबिल को धुंधला कर रहा है।
1: बिल्कुल ठीक। और मुस्तकबिल की बात करें तो
0: जी
1: हमारे
0: जी
1: बच्चे जो है कहीं भी पीछे नहीं है, हर
0: बिल्कुल
1: एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से मुस्तकबिल अच्छा हो उनका भी और हमारे इस समाज का भी, हमारी सोसाइटी भी आगे बढ़े। और कल नतीजे भी सामने आए थे JEE एडवांस्ड के, जो कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन एडवांस्ड होता है, इंडिया का सबसे माना जाता है, वन ऑफ द
0: सबसे
1: टफेस्ट
0: बड़ा। जी
1: इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। और ये गेटवे है जो भी हमारे IITs हैं उनके एडमिशन के लिए। और हमारे जम्मू कश्मीर से भी बहुत से बच्चों ने कामयाबी हासिल की है, और हम उनकी कामयाबी पे उनको
0: हमारी टीम की तरफ
1: बहुत
0: से भी इन तमाम
1: मुबारकबाद
0: होनहार
1: देते
0: तुलबा जो
1: हैं।
0: है उनके वालदेन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं।
1: जी। और बिलखसूस उन बच्चों को मुबारकबाद देना चाहेंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है।
0: जी जी
1: और इस दौर में मेहनत करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी है, उसके बावजूद इतनी अच्छी कामयाबी हासिल करना ये बहुत बड़ी बात है
0: जी
1: और
0: जी
1: फख्र
0: बिल्कुल
1: की बात है। और इसके अलावा मुबारकबाद तो आप हमारी तरफ से कबूल करेंगे, लेकिन हमारे वो दोस्त भी जो हमें अब इस वक्त पे सुन पा रहे हैं और जो शायद इस वक्त पे क्वालिफाई नहीं कर पाए, हम सिर्फ JEE की बात नहीं कर रहे हैं, जो ज़िंदगी के किसी भी इम्तहान में अभी उनको लग रहा है कि कामयाबी हासिल नहीं हो रही है, उनसे बस इतना कहना चाहेंगे कि हिम्मत ना आप हारें। और उनके वालिदैन से बिलखसूस ये दरख्वास्त करना चाहेंगे
0: जी
1: कि ये जो
0: सितारों से आगे जहां
1: कंपेरिजन्स
0: और
1: हैं,
0: भी हैं, अभी
1: जी
0: इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अलामा इकबाल ने बोला था। जी
1: बिल्कुल, अभी बहुत से मराहिल और भी पार करने हैं, बस वालिदैन से ये दरख्वास्त हाथ जोड़ के कि कंपेरिजन्स ना करें, अपने बच्चों का जो हौसला है उसको तोड़े ना। हर एक बच्चा बहुत यूनिक होता है और हर एक बच्चे की अपनी अपनी सलाहियत होती है।
0: बिल्कुल। और अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिलें ख़त्म हो गई। कायनात में आपके लिए बेशुमार रास्ते और कामयाबियों के लिए नए मैदान जो हैं वो खुले हैं,
1: जी
0: तो आप खुद पर जो है आप पे यकीन रखें।
1: बच्चा ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब्ड होता है, उसके बाद जब वालिदैन आके ये बताते हैं कि फलां का बच्चा जो है इतने नंबर से कामयाब हो गया, आप ही ने कुछ हासिल नहीं किया, और सुबह सवेरे ही ये स्टार्ट हो जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बच्चे के जहन पे क्या असर पड़ रहा होगा। डिप्रेशन के बहुत से मामलात हैं और एक रीज़न ये कंपेरिजन भी है। तो अपने बच्चों को इस रैट रेस में ना डालें, देखें कि बच्चों की कामयाबी कहाँ की तरफ उनको लेके जा रही है, उनका जो हुनर है, उनका जो शौक है, वो कहाँ की तरफ लेके जा रहा है। और जब वो अपने, वो कहते हैं ना, कुछ काम किया कुछ इश्क किया, कुछ ऐसी नज्म है अच्छी खासी, और जब आप अपने काम से अपने शौक से
0: जी
1: इश्क
0: जी
1: करेंगे तब जाके आपकी कामयाबी जो है आपके कदम जरूर चूमेंगी।
0: जी बिल्कुल। और आज इस पायम सुबह के इस प्लेटफॉर्म से हम जो हैं ख़ास तौर पर तमाम वालदेन से मुखातिब हैं, तो इनसे आप हम हमारी जो हैं गुजारिश है कि आप बच्चों की जो जहनी सेहत है, मेंटल हेल्थ जो है, इनकी खुशी और इनकी ज़िंदगी जो है दुनिया के किसी भी रैंकिंग, किसी भी कॉलेज या किसी

रात 9:30 पर कश्मीरी अदबी मैगजीन समाप्त करें संगरमाल। मौजू है कशुर अफसांत मौजूद दौर। इस मौजू पर बात करेंगे अशरफ ज़िया, मुश्ताक अहमद मुश्ताक और शकीलुरहमान। शब 10 बजे फिल्मी नगों का फरमाइशी फ़ोन इन प्रोग्राम पेश होगा। हेलो आपकी फरमाइश, प्रोग्राम पेश करेंगे रोहित मुश्ताक।

हम सफर, ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। आज के शुमारे में मौजू ईज़ और तकलीफ में नुस्खा कीमिया की अहमियत। आज इस मौजू की जो है दूसरी किस्त पेश होगी। इस उन्वान पर तफसली रोशनी डालेंगे मुमताज आलमदीन दानिश्वर और इस प्रोग्राम के रूह रवां हज़रत मौलाना फ़याज़ अहमद ज़रूर साहब। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं सलीम एजाज कपड़ा। सुना ना भूलिएगा ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हम सफ़र सुबह 8:45 पर।

सुबह 9 बजे मक्का में रोजनामों की सुर्खियां पेश होंगी। कश्मीरी नगमों से आप महसूस होंगे सुबह 9:30 पर। सुबह 10 बजे प्रोग्राम पेश होता है सूफी सदा। आज के प्रोग्राम का मौजू है

पंजाबी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा सुपर 4:30 पर। गोजी प्रोग्राम समाप्त करें शाम 5 बजे। देहाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे शाम 6:05 पर। हालात तो वाकयात की जानकारी आपको मिलती है प्रोग्राम शेरबिंद के जरिए शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज़ का वक्त नशरिया है रात 8 बजे। समीन, यह हैं आपके बाद हमारे यहाँ से नश्र होने वाले प्रोग्राम।

0: मीडियम एफ 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 8 बज रहे हैं। आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। उत्तराखंड का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुला। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल और हॉकी में अंडर 18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का मुद्दा भी उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
4: Both sides underscored the
5: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
4: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
3: दोनों देशों के बीच मुख्य रूप से व्यापार और आर्थिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, विकास सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई। म्यांमार भारत का रणनीतिक पड़ोसी देश है और इसकी 1640 किलोमीटर लंबी सीमा नागालैंड और मणिपुर सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों से लगी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने भी श्री आउ लाइन से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए राष्ट्रपति आउ लाइन व्यापार और उद्योग जगत से बातचीत के लिए आज मुंबई जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है, अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमेरिका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। दोनों पक्षों ने 3 फरवरी को समझौते के पहले चरण की रूपरेखा घोषित की थी। रूपरेखा पर सहमति बन जाने पर 7

0: फरवरी को संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। अब समझौते के लिए कानूनी पक्ष तय किया जाना है। अमरीका पिछले वित्त वर्ष में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बैठक में पिछले 12 वर्ष के दौरान मोदी सरकार की सेवा, संगठनात्मक विस्तार और समाज के विभिन्न वर्गों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि हर नागरिक पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति का साक्षी है। श्री पात्रा ने कहा कि आज भाजपा और एनडीए सरकार को देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सेवा का अवसर मिला है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
3: 2-3 branches also.
1: वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुँचता है।
4: बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गाँव तक पहुँच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में चमोली जिला स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। वन विभाग ने पर्यटकों से घाटी की समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पति संरक्षण में सहयोग की अपील की है। वर्तमान में घाटी में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और दुर्लभ वनस्पतियां मौजूद हैं। वन क्षेत्राधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि ये घाटी 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहेगी।
5: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937।

0: में, और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन ग्रुप के शीर्ष अधिकारी अमिताभ झुनझुनवाला को बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऋण निधि के दुरुपयोग के कारण बैंकों को अनुचित नुकसान हुआ। इससे पहले सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड और अनिल धीरूभाई अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने आजमगढ़ जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े होने का आरोप है। एटीएस ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और कुछ आतंकी संगठन भारत में आतंक फैलाने के लिए शहजाद भट्टी के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और अंकों की पुष्टि के लिए पोर्टल को सक्रिय कर दिया है। विद्यार्थियों को पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने के बारे में जारी दिशा निर्देशों का ध्यान से अनुपालन करने को कहा गया है। बोर्ड ने इस जानकारी के लिए वीडियो जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय के 5 नव नियुक्त न्यायाधीश आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत उन्हें शपथ दिलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला संघर्ष रोकने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने बताया कि उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू से बातचीत की है और मध्यस्थों के जरिए हिजबुल्ला से भी संपर्क किया है। श्री ट्रंप ने बताया कि अब बेरूत की ओर सेना नहीं भेजी जा रही है और जो सैनिक रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। हिजबुल्ला ने कहा है कि अगर इसराइल की ओर से हमले बंद होते हैं तो वो भी हमला नहीं करेगा। 2026 के एशियाई खेलों से पहले 22 नौका चालकों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कुल 22 रोवर्स को अब टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी 6 अलग अलग नौका समूहों का हिस्सा हैं। अब ये रोवर्स एशियाई खेलों और रोइंग विश्व कप जैसी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे। टॉप्स डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल खिलाड़ियों में पेरिस ओलंपिक 2024 के प्रतिभागी बलराज पंवार, एशियाई खेल 2022 के रजत पदक विजेता अरविंद सिंह और एशियाई खेल 2022 में 2 पदक जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: जापान में पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप में कल भारतीय टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। कप्तान केतन कुशवाहा ने 2, वरिंदर सिंह और शाहरुख अली ने 1-1 गोल किया। भारत का अगला मुकाबला कल चीनी ताइपे से होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रायलसीमा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी स्थिति रह सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी समाचार पत्रों ने अपनी सुर्खियों में आज राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को वरीयता देते हुए अंतर्राष्ट्रीय मसलों को भी मुखपृष्ठ पर जगह दी है। लोकसत्य ने पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। लाखों रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाया। दैनिक जागरण ने नए ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 के सफल परीक्षण के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन लगातार 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। पत्र ने CBSE के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ी की जांच शुरू होने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की आला अधिकारियों के साथ मंत्रणा को दूसरा शीर्ष समाचार बनाया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के कथन को पहली खबर बनाते हुए लिखा है, अमेरिका से व्यापार समझौता जल्द। वीर अर्जुन ने म्यांमा के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भेंट का चित्र सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए म्यांमा के राष्ट्रपति के बयान को सुर्खी बनाया है। भारत के खिलाफ

0: की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय में भारतीय रिजर्व बैंक की नीति निर्धारक इकाई के 3 से 5 जून के मध्य लिए जाने वाले फैसलों का विश्लेषण किया है। शीर्षक दिया है, महंगाई से गरीबों को बचाने पर फोकस होना चाहिए। पत्र याद दिलाता है कि पिछले 10 वर्षों में खाद्यान्नों की कीमतें इलेक्ट्रॉनिक सामान के मुकाबले ज्यादा बढ़ी हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन ने कहा, म्यांमार भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं को अंतिम रूप दिया। एशियाई खेल 2026 से पहले टॉप समूह में 22 नौका चालक शामिल। और हॉकी में अंडर-18 एशिया कप में भारत ने कोरिया को 4-1 से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीटिंग में 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेज़बान रूफ अली और मेरे साथ नाजमा रशीद
3: यही पे मौजूद है।
2: जी बिल्कुल। और आपको बता दें, ये जो प्रोग्राम है ये आप सुबह 7:10 से 11:30 तक समाप्त करते हैं। तो नाजमा, हम बात कर रहे थे JEE एग्ज़ाम की।
3: जी।
2: तो हम यही बात जो है इसको आगे बढ़ाएंगे कि ये जो कोई भी इंसान जो है वो गिरने से पहले चलना नहीं सीखता। ज़िंदगी का ये उसूल है कि जब तक हम ठोकर नहीं खाते हमें संभलने का जो हुनर है नहीं आता। जो आज JEE के रिज़ल्ट में जो बच्चे पीछे रह गए हैं वो ये हरगिज़ ना समझे कि यह सफ़र का अख्तिताम है। ये तो बस एक तजुर्बा था, एक ऐसी ठोकर थी जो आपको मुस्तकबिल में एक मजबूत और कामयाब इंसान बनाने के लिए ज़रूरी थी। तो हमने वालदेन से गुजारिश की, तो हम एक बार फिर उनसे यही गुजारिश करते हैं कि अपने बच्चों को सिखाए कि हारना कोई जुर्म नहीं है। कामयाबी की खूबसूरत इमारत हमेशा नाकामियों के जो पिलर्स हैं पे ही खड़ा होती है। अगर आज हम गिरते हैं तो कल वो इसी तजुर्बे के बलबोते पर जो हैं आकाश के बुलंदियों को छुएंगे। जी
3: बिल्कुल सही बजा फरमाया आपने। और इस साल जो है 56,880 जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाइड करार दिया गया है और 1.79 लाख स्टूडेंट्स ने दोनों पेपर्स में अपेयर हुए थे। और जो ऑल इंडिया रैंक वन है वो शुभम कुमार ने सिक्योर की है 360 में से 330 मार्क्स। हालांकि हम अक्सर ये बात कहते हैं और अभी रोफ साहब भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ये जो मार्क्स वगैरह है इससे ये साबित नहीं होता कि इंसान कितना कामयाब है या इतना काबिल है। इंसान की जो असल काबिलियत है वो उसके अखलाक से पता चलती है, वो जिस भी काम में है उसमें कितना अच्छा कर रहा है उससे पता चलता है, ना कि आपकी परसेंटेज और मार्क्स से।
2: मार्क्स का जो है ये मोहताज नहीं है, मार्क्स पे डिपेंड नहीं है।
3: बिल्कुल सही। और इस वजह से हम आज देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे कहीं ना कहीं इस कंपटीशन के चक्कर में पिस रहे हैं, क्योंकि ये मार्क्स का जो हमने इतना प्रायोरिटाइज किया है इस चीज़ को कि इंसान की जो अखलाकियात की तालीम है उस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बस अगर ध्यान देते हैं वो डिग्रीज पे है, वो सर्टिफिकेट्स पे है, वो आपके इनामात पे है। और फिर से एक बार वही दोहराना चाहेंगे, वालिदैन से वही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस रैट रेस में अपने बच्चों को ना डालें, उनके ज़हनी सुकून को ख़राब ना करें, उनकी सेहत को खराब ना करें।
2: इनका हाथ थामें और कहें कि कोई बात नहीं बेटा, हम मिलकर कुछ और बेहतर करेंगे।
3: बिल्कुल, इस बार नहीं हुआ अगली बार सही, और अगर इसमें नहीं हुआ किसी और में सही।

0: अब समाप्त करें प्रोग्राम पयाम सुब और अपने मेज़बान रूफ अली और मेरे साथ नाज़िमा रशीद।
1: जी रूफ साहब, हमने बहुत प्यारा सा नगमा अपने सुनने वाले दोस्तों तक पहुंचाया। उम्मीद करते हैं नगमा पसंद ज़रूर आया होगा, एक बहुत खूबसूरत पैगाम के साथ कि ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती रहती है और शायद ज़िंदगी इसी का नाम है। कभी आपके सामने अच्छे दिन आते हैं, कभी ख़राब दिन आते हैं, लेकिन एक कॉल भी है ना कि ज़िंदगी जो है दो दिनों पर मुश्तमिल है, एक अच्छा और एक ख़राब। तो आपने जो है अच्छे दिन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है और जो ख़राब है उसमें जो है अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, तवक्कुल के साथ सब्र करना चाहिए। तो जिंदगी इसी चीज का नाम है, इसी सिलसिले का नाम है
0: जी, बिल्कुल।
1: और हमने आज बहुत कुछ और भी पहुंचाना है
0: जी। पहले एक इतला देते हैं हमारे सामीन को
1: जी,
0: हमारे प्रोग्राम के बारे में एक इतला समाप्त करें। प्रोग्राम हेलो रेडियो के ताजे शुमारे की रिकॉर्डिंग आज यानी 2 जून को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक होगी। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है एलर्जी असबाब और इलाज। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदऊ किया है नामवर मौलिज डॉक्टर ताहा कुरैशी को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिज से मौजू की मुनासिबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप रब्ता करें फ़ोन नंबर 0194248036 पर। और फ़ोन नंबर आप फिर से नोट करें 0194248036 पर। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा आज यानी मंगलवार को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक जी।
1: अच्छा जी, मैं अभी जो है अखबारात की सुर्खियां चुन रही थी अपने सुनने वाले दोस्तों के लिए, तो एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी और उसमें ये चीज़ सामने आई है कि आप बेहतर जानते हैं इस वक्त पे जो है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर का अभियान चल रहा है 100 दिनों का, हालांकि जो है 51 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। उस हवाले से भी तफसीलात अपने सुनने वालों तक पहुँचाएंगे कुछ ही वक्त में, लेकिन एक बात जो मेरी तवज्जो खींची अपने सुनने वाले दोस्तों की तवज्जो भी जो है वहाँ की और ले जाना चाहेंगे। और लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है वो ज़रा संगीन बनी हुई है, क्योंकि 62% लोग जो है नशा आवर अशिया का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ सुनने वाली है कि इसमें एक्टिव जो स्मोकर्स हैं उससे ज़्यादा पैसिव स्मोकर्स की तादाद है, और ये रिसेंटली एक रिसर्च हुई है और इसका जो खुलासा है वो यहाँ पे हमारे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल है मुंबई में, वहाँ से एक बड़ा सेमिनार हुआ था और उसमें इस बात का इंकशाफ हुआ है कि जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना था कि ये जो एक्टिव स्मोकर्स की वजह से पैसिव स्मोकर्स जो कैंसर्स में मुब्तला हो रहे हैं उनकी भी खासी तादाद है, और वो सुनने वाली बात है। आप देखिए, स्मोकिंग अगर कोई बंदा करता है, हम अक्सर उस बात पर ध्यान देते हैं कि स्मोकिंग कितनी इंजरियस है, सेहत को किस तरह से खराब करती है, माहौल को किस तरह से खराब करती है, लेकिन हम ये बात बहुत कम करते हैं कि जहाँ पे वो स्मोकिंग करता है उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं
0: उन
1: पे कितना असर पड़ता है। हालांकि उन बेचारों की कोई गलती तो होती है नहीं उसमें, लेकिन हम अपने साथ साथ किसी और की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं उसकी बिना किसी गलती के। तो आप देखें कि ये जो वबा है इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, आप अपनी जान किस तरह से बचा सकते हैं और अपने अजीजों की जान किस तरह से बचा सकते हैं, तो ये बात सामने आई थी।
2: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ। बल बल

0: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
1: सब्र रोशिद सुलुम।
0: सुनते रहिए हमारी नशरियात
2: दुनिया के किसी भी कोने में, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
3: सुबह के 8:30 हो रहे हैं, आइए अब आकाशवाणी दिल्ली ले चलते हैं आपको, जहां से आप उर्दू में खबरें समाप्त करेंगे।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतनी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कुश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। और हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 चार गोल से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों रहनुमाओं ने कल नई दिल्ली में तिजारत, दिफा, तवानाई और कनेक्टिविटी के शोबों में बाहमी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए वसीतर मौजूआत पर बातचीत की। म्यांमा के सदर भारत के 5 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। बातचीत के बाद नामानिगारों को जानकारी देते हुए खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने म्यांमा के इकतदार आला और इलाकाई सालिमियत के तई भारत की हिमायत का इरादा किया और तरफेन ने अपने सिक्योरिटी मफादात के मुनाफी सरगर्मियों के लिए अपने इलाके के इस्तेमाल की रोकथाम की अहमियत उजागर की।
1: Both sides underscored the importance of preventing the misuse of sovereign territory for activities inimical to their security interests. Overall, this visit by the President has once again reaffirmed the shared commitment of both sides to deepen their long-standing partnership and to work together for mutual benefit, growth and prosperity in the region.
0: खारिजा सेक्रेटरी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, तवानाई और मसनूई जहानत जैसी अहम टेक्नोलॉजी के शोबों में करीबी इश्तराक कायम करने में दिलचस्पी का इजहार किया। म्यांमा के सदर आला सतह के वफद के हमरा आज मुंबई जा रहे हैं, जहां वो कारोबारी और सनती रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू करेंगे और मुख्तलिफ मकामात का दौरा करेंगे। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने बाहमी तिजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है और अब मुजाकरात में चंद मामूली उमूर पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी टीम दोतरफा तिजारती मुआहदे के पहले मरहले को हतमी शक्ल देने के बारे में बातचीत के लिए नई दिल्ली आई हुई है। ये बातचीत नई दिल्ली में आज से जुमेरात तक जारी रहेगी। कॉमर्स के महकमे में एडिशनल सेक्रेटरी दर्पण जैन भारत के आला मुजाकरातकार हैं, जबकि अमरीकी टीम की सरबराही उसके आला मुजाकरातकार ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन ने कल नई दिल्ली में पार्टी के आला अहदेदारों और कारकुनान के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और तर्जुमान डॉक्टर संबित पात्रा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल तंजीमी तौसी और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों तक पार्टी की पहुंच को बढ़ाने से मुतालिक बातचीत के कलीदी निकात को शेयर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने 12 साल मुकम्मल कर

0: रही है और हर किसी ने ये महसूस किया है कि कैसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत में हर शोबे में तरक्की रूनुमा हुई है। जनाब पात्रा ने कहा कि मौजूदा वक्त में बीजेपी और एनडीए को मुल्क की 22 रियासतों में खिदमात अंजाम देने का मौका हासिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मिसाली क़यादत में गुज़श्ता 12 साल में भारत में नुमाया तब्दीली रूनुमा हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का उसूल इस तब्दीली का मुहर्रिक रहा है। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों पर मरकूज मुतअद्दिद पहलुओं का आगाज और निफाज किया है। आकाशवाणी न्यूज गुज़श्ता 12 साल में कलीदी शोबों में किए गए हुकूमत के इकदामात पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम हुकूमत की जानिब से ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक किए गए इकदामात का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़िश्ता 12 साल में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक इक़दामात में नुमाया तब्दीली आई है। हुकूमत की जानिब से हिफ्ज़ाने सेहत, तालीम, रोज़गार के मौक़े और मुआशी शमूलियत के लिए किए गए इक़दामात इस तब्दीली के मुहर्रिक हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जिसका आगाज 2015 में किया गया था, करोड़ों ख़वातीन अपने कारोबार को शुरू करने और वसअत देने के लिए ज़मानत से मुबर्रा कर्ज हासिल कर पाई हैं। मस्कूरा स्कीम के तहत इस साल मार्च के आखिर तक 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का कर्ज दिया जा चुका है, जिसमें से 17 लाख करोड़ रुपए ख्वातीन को दिए गए। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए तिरुपुर तमिलनाडु की रिहायशी वंशीरी ने बताया,
2: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ। 2-3 ब्रांचेस ऑल्सो।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उमानिया जैसी कलीदी स्कीमों की बदौलत बैंकारी, बचत और कारोबारी प्लेटफॉर्मों तक ख्वातीन की पहुंच बढ़ी है। जनधन योजना के तहत ख्वातीन के 33 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश में शिमला की रिहायशी सरोज बाला ने कहा कि हुकूमत की स्कीमों से मुतालिक रकम अब सीधे उनके बैंक खाते में मुंतकिल की जाती है।
3: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी है। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
1: इख्तराई प्रोग्रामों और मौजू पॉलिसियों के साथ ख्वातीन एक खुद कफील और सबकी शमूलियत वाली मईशत को तश्कील देने में अहम रोल अदा कर रही हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
0: सुप्रीम कोर्ट में 9 तकर्रर शुदा 5 जज आज हलफ लेंगे। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत उन्हें ओहदे का हलफ दिलाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की तकर्री की है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने तलबा के लिए नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच के लिए पोर्टल शुरू कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने यह जानकारी दी है। CBSE ने तलबा को ये सलाह दी है कि वो नंबरों की तस्दीक और इम्तिहान के पर्चों की फिर से जाँच के लिए दरख्वास्त देने के तरीके के बारे में हिदायात के ताल्लुक से वीडियो को ध्यान से देखें। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तराखंड में यूनेस्को आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सैयाहों के लिए खोल दिया गया है। मजकूरा मकाम रियासत के चमोली ज़िले में है। जंगलात के महकमे ने सैयाहों से अपील की है कि वो वैली के मालामाल हयातियाती तनवो और पौधों की कमयाब अकसाम के तहफ़ में तावुन करें। महकमे के मुताबिक वैली ऑफ फ्लावर्स में सरेदस्त फूलों की 300 अकसाम और पौधों की मुतअद्दिद कमयाब अकसाम हैं। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर चेतना खंडपाल ने बताया कि वैली 31 अक्टूबर तक सैयाहों के लिए खुली रहेगी।
4: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में, और 1938 में उन्होंने

0: पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: काबिल जिक्र है कि वैली ऑफ फ्लावर्स एक ऐसे खित्ते में वाक़ है जहां मुश्किल जुग्राफियाई हालात हैं। मौसमी हालात और सलामती के मेयारात को मद्देनज़र रखते हुए सयाहों को ज़रूरी रहनुमा खतूत जारी किए जा रहे हैं ताकि उनके सफ़र को महफूज और लुत्फानंदोज बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने हमीरपुर ज़िले में बेतवा दरिया पर ज़ेर तामीर पुल का कुछ हिस्सा गिरने के वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की 2 इंक्वायरी कमेटियां तशकील दी हैं। इस सानहे में 6 अफराद की मौत हो गई थी। हमीरपुर के ज़िला मजिस्ट्रेट अभिषेक गोयल ने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तशकील दी गई 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी इस वाक़े से वाबस्ता सभी इंतज़ामी तकनीकी और तरीक़ाकार से मुतालिक पहलुओं की तफसीली जाँच कर रही है। ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इस हादसे के सिलसिले में कुरारा थाने में केस दर्ज किया गया है। साल 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। ये खिलाड़ी अब कश्तीरानी के मुकाबले वाले बड़े बैन अल-अक़वामी खेल मुकाबलों के लिए तैयारी करेंगे जिसमें एशियाई खेल और वर्ल्ड कप सर्किट शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: खेलों के महकमे की वजारत ने कहा है कि इन कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया जाना तमकों के इनफरादी इम्कानात पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय कश्ती के कई खेल मुकाबलों में पायदार इस्तेहकाम कायम करने की एक और कोशिश है। जिन खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है उनमें 2024 के पेरिस ओलंपिक में खेलने वाले बलराज पंवर, एशियाई गेम्स 2022 में चांदी का तमगा हासिल करने वाले अरविंद सिंह और 2022 के ही एशियाई गेम्स में 2 तमगे जीतने वाले जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। शामिल किए गए बेशतर खिलाड़ियों को खासतौर पर 2026 के एशियाई खेलों को जहन में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1 के मुकाबले 4 गोल से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के तीसरे और 36वें मिनट में 2 गोल किए। वरिंद्र सिंह ने 5वें मिनट में 1 गोल किया जबकि शाहरुख अली ने खेल के 54वें मिनट में जोरदार तरीके से गोल किया। इस कामयाबी के साथ ही पूले में कोरिया और जापान के साथ साथ भारत के भी 6 पॉइंट हो गए हैं। भारत कल अपना आखिरी पूल मैच चीनी ताइपे के खिलाफ खेलेगा। केरलम में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनज़र 14 जिलों में से 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन में बारिश में शिद्दत आने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हिजबुल्ला लड़ाई रोकने पर रजामंद हो गए हैं। इससे कबल उन्होंने इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की और सालिसों के तवसुत से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप को इससे मुत्तला किया। सदर ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर गुफ्तगू के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। अमरीकी सदर ने कहा कि अब कोई भी फौजी बेरूत नहीं जाएगा और जो फौजी वहाँ रास्ते में हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। सदर ट्रंप ने बताया कि हिजबुल्ला ग्रुप ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि सभी तरह की गोलीबारी बंद हो जाएगी, इसराइल उस पर हमला नहीं करेगा और वो भी इसराइल पर कोई वार नहीं करेगा। तृणमूल कांग्रेस ने अपने 2 एमएलए संदीपन साहा और ऋतप्रता बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया है। ये कार्रवाई दोनों रहनुमाओं की जानिब से पार्टी मुखालिफ कार्रवाइयों, कलीदी मीटिंगों में अदम मौजूदगी और पार्टी क़यादत मुखालिफ बयानात की वजह से की गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
3: शुक्रिया नीतिका। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और म्यांमा के सदर के दरमियान हुई बातचीत को नुमाया किया है। वजीर आजम ने म्यांमा के तई हिमायत का इरादा किया जबकि सदर ओमिन आउलाइन ने कहा कि म्यांमा में भारत मुखालिफ अनासिर के लिए कोई जगह नहीं है। अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की कुल तादाद 37 हो गई। रोजनामा इनकलाब की नीट इम्तिहान से मुतालिक सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट का नीट इम्तिहान कंप्यूटर से कराने से इनकार, पेपर लीक की वजह से दोबारा इम्तिहान के लिए 21 जून की तारीख मुकर्रर की गई है।
1: और अब

0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। म्यांमा के सदर ओमिन आउनलाइन ने यकीन दिलाया है कि म्यांमा के इलाके को भारत के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका ने बाहमी तजारती समझौते के पहले मरहले के बेशतर पहलुओं को हतमी शक्ल दे दी है। उत्तराखंड में यूनेस्को के आलमी विरसे के मकाम वैली ऑफ फ्लावर्स को सियाहों के लिए खोल दिया गया है। एशियाई गेम्स 2026 से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। हॉकी में 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप में भारत ने कोरिया को 1-4 चार गोल से हरा दिया। 2026 के एशियाई खेलों से कबल 22 कश्तीरां खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स तरक्याती ग्रुप में शामिल किया गया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। सुबह के 8:45 हुए हैं।
2: समीन पेशे खदमत से प्रोग्राम हम सफर। ये प्रोग्राम जो तहता वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

तो ऐसे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बोजान हम सफर आज के प्रोग्राम मुख मोजोस इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलाही राजून इस दर्जा कर पज परुन अथ मोजोस पर डिस्कत करान प्रोग्रामिक रूही रवा हजरत मौलाना फयाज अहमद जोरो साहब प्रोग्रामिक प्रोड्यूसर च सलीम एजाज कपड़ा।

0: मीठे में दोस्तों और 68.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ हैं। आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। अब पेश हैं मकामी रोजनामों से ली गई आज की सुर्खियां।
1: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: आज मंगलवार है, साल 2026 ईस्वी के माह जून की 2 और जिलहजा 1447 हिजरी की 16 तारीख। रोज़नामे में मुख्तलिफ मौज़ूआत की खबरें शाया हुई हैं और चंद रोज़नामों ने आज के जो है पहले सफ़ात पर जगह बनाई है, चंद खबरों ने जिनको लेकर आज की शेष सुर्खियां तरतीब आई हैं। एक उर्दू रोज़नामे की सुर्खी है, हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला आज से, सिर्फ 5 किलो सामान साथ रखने की इजाज़त, दीगर सामान ज़मीनी रास्ते आएगा।
3: जी, और इसी हवाले से और एक सुर्खी अंग्रेजी अखबार पे लिखता है, चीफ मिनिस्टर उमर राइट्स टू सेंट ओवर जम्मू एंड कश्मीर हज पिलग्रिम्स बैगेज वूज डिले कॉजिंग डिसअपॉइंटमेंट, जमजम डेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेडिशंस अफेक्टेड, सेफ्टी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, सेंटर डिफेंड्स हज बैगेज कर्ब्स, ऑल डिसीजंस टेकन इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स, सेज मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स।
0: ये सिर्फ सहतियामा की जंग नहीं बल्कि कौमी सलामती की एक अहम लड़ाई भी। नौजवान नशे से आज़ाद होंगे, मुनशियात के तारीख जाल में झगड़े नौजवान की जंजीरें टूट रही हैं। LG मनोज सिन्हा।
3: जी, अंग्रेजी अखबार पेसी हवाले से सुर्खी लिखते हैं, LG इन्वोक्स सूफी लेगेसी इन वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, इन द लैंड ऑफ सईद सिमनानी नुंद्रशी, आई स्टैंड विद योर फैमिली इन द फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, एंटी ड्रग कैंपेन नाउ पीपल्स मूवमेंट, LG सिन्हा रिएटरेट्स अडिक्ट्स आर विक्टिम्स नॉट क्रिमिनल्स, अश्योर्स रिहैब सेंटर्स लिंक्स क्रैकडाउन टू नेशनल सिक्योरिटी, सेज दोज हु फ्लेड जम्मू एंड कश्मीर विल बी ट्रैक्ड डाउन, सो far 923 FIRs, over 1000 arrests in 51 days, LG to lead padyatra in Gandharbal on June 5th.
0: Srinagar Hawaii Adda July se 3 maah tak hafte mein 2 din band rahega, runway ki maramat ke 22 flight operation ke motli nauguzair airport director.
3: Srinagar airport to shut twice a week for 3 months. Flight operations cancellations due to runway repairs. Airport director. Likhte hai Srinagar airport to shut 2 days weekly, Monday, Tuesday from July to September. Shut down due to ongoing runway repair work. Earlier plan of weekend closure was changed to weekdays. Prior phase already has restricted flight hours, April and July. Tourism stakeholders say timing will haunt peak tourism season recovery. और साथ में ये भी लिखा है कि होटलियर्स से शट डाउन विल डैमेज टूरिज्म मोमेंटम, ट्रैवल एजेंट्स फेयर आइटनरीज डिस्ट्रप्टेड, फ्यूअर फ्लेक्सिबल बुकिंग्स। जी
0: बिल्कुल, सियाहती शोबे को धचके का खदशा, नामुनासिब फैसला होटल्स क्लब के सदर मुश्ताक अहमद।
3: जी, अंग्रेजी अखबार मेरे पास लिखते हैं, जस्टिस संजीव कुमार अपॉइंटेड एक्टिंग चीफ जस्टिस।
0: जम्मू कश्मीर में शवर के हाथों तशद्दुद की शिकार खवातीन में 6.3% की कमी, नौजवान लड़कियों के खिलाफ जिंसी तशद्दुद की शरह 0.1% अभी भी बरकरार।
3: ये खुशाइंद बात अगर इसमें जरा कुछ कमी वाकई हुई है तो। खैर, मेरे पास अंग्रेजी अखबार लिखते हैं, जम्मू रेलवे डिवीजन कलेक्ट्स ₹66.5 लाख इन मे चेकिंग ड्राइव।
0: 13.5 किलोमीटर तवील जोजिला टनल 9 जून को आर पार होने की तवक्का, तकरीब में नितिन गडकरी की शिरकत का इम्कान, हमाम उसमें राबिता की जानिब अहम संगमेल।
3: फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड गार्लिक मार्केट इन पुलवामा ड्रॉज फार्मर्स ट्रेडर्स। लिखते हैं साथ में, कमर्शियल LPG प्राइस हाइक्ड बाय ₹42, 5 kg LPG अप ₹

0: जी
1: जी मेरे पास उर्दू रोजनामा लिखते हैं, पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 साल का जश्न, खुद कफील भारत की तामीर एतमाद वकार और बाइख्तियार बनाने की अलामत, पीएम मोदी।
0: ऑस्ट्रेलिया में शदीद तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही, 70,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुनक़ता।
1: मणिपुर में पहली बार कोबरा यूनिट तैनात।
0: अमेरिका की ईरानी फौजी तनसिबात पर बमबारी, कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल हमले।
1: जी लिखते हैं, जिला इंतजामिया पुलवामा ने जिले में मरदमशुमारी 2027

0: आप जगजीत सिंह की आवाज़ में गज़ल सुन रहे थे। यह आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ है। सुबह के 9:20 हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ से खबरें नशर होंगी, पहले कश्मीरी और उसके फ़ौरन बाद उर्दू में। खबरों से पहले यह वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज़ जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर सुबह 9:02 सपद कशरीन खबरन हुन बुलेटिन हेस सारा अख्तर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोन 51 दोह ब्रो जम्मू कश्मीर के लूको तब्दीली हज मशल जजम तो लूकन हि भरपूर शिरकत करने सी मशल आज वमीद हौसले तो पक इराद अकिस प्रजलवी मशल में तब्दील सपजमज। जम्मू कश्मीर किस कुलगाम जिले में मनशियात मुखाल पदयात्रा हज क्यादत करने पे अकिस अवी इजतम खताब करान वो तमो सिर्फ सहत आमुक योत जंग कह बल्कि कौमी सलामती हज अहम लड़ाई त।
3: धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के सहयोग से एक ऐसा जन आंदोलन बनता जा रहा है जिसने जम्मू कश्मीर की हर गली, हर परिवार और हर दिल को एक ही इरादे से जोड़ने का काम किया है। आवाम के हर परिवार का आज एक ही संकल्प है कि अपने गांव, अपने शहर को हमें नशा मुक्त बनाना है। मैं बड़े एतमाद से आज कहना चाहता हूँ कि वे जंजीरें जिन्होंने हमारे नौजवानों को ड्रग के अंधे जाल में बांध रखा था, वे अब कड़ी दर कड़ी दिन ब दिन टूटती जा रही है।
2: पीएम स्वनिधि स्कीम हिंद सपद शवरी मुकमल, वजीर अजम नरेंद्र मोदी द्रुस मुल्क में रेड वाल मैारी जिंदगी में मसबत तब्दीली अनस अमी स्कीम हज अहमियत वतलम। अक सोशल मीडिया पोस्टस में वो वजीर अजम अमी स्कीम कि अमि तबक मुस्तकिन सहल शरहन पे कर्ज आयतन थवने। सऊदी अरब पेट फरीज हज अदा करने पत सपद जम्मू कश्मीर कन हुजाज किरामन हुन वापस यिनुक सिलसिल अजक पे शुरू। अत मुतलिक वो जम्मू कश्मीर हज कमेटी हिंद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुजात अहमद कुरैशियन जो सफरी महमूद पे ये वाले जम्मू कश्मीर कन हुजाज किरामन हिज वापसी हिंदे सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल करना आमच।
4: हमारी जो फ्लाइट है, पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, उसके बाद दो फ्लाइटें या तीन फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो हजाज किराम को जो उनके रिलेटिव्स होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। तकरीबन 12:30 के करीब पहली फ्लाइट इंशाल्लाह लैंड करेगी श्रीनगर एयरपोर्ट। जो हजाज किराम का सामान है उसका ज्यादातर हिस्सा 30 kg जो है वो बाई रोड आएगा, यानी तीसरे या चौथे दिन वो श्रीनगर हज हाउस पहुँचेगा।
2: चीफ सेक्रेटरी अटल डुलोन जम्मू कश्मीर में पेट्रोलियम चीज, एलपीजी तो खाद सान तमाम जरूरी चीजन सप्लाई कुन ठहरे वर बरकरार थाने की जरूरत पे जोर दुम। तम रात जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा तो सहायती सीजन बाप दरकार खेन खुर्दीन हिंद जरूरी चीजन दस्तियाबी तो स्टॉक पोजिशन जायजे हवान। तमो दी मुतल महकमन हदायत जम बनवी यह कथ यकी घरेलू सर्फन हिंद बाप रन पकवन गैस गसन तजारती इस्तेमाल मे अन कहजबगी कापि रटने बाप सख्त कदम तुल। मीटिंग मे सूबे कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्गन जानकारी दिवान वादी में पेट्रोल, डीजल तो एलपीजी गैस वफिर स्टॉक मौजूद। जमिक डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीम सिंह तोतियन हूत श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदे सिलसिले में भगवती नगर यात्री निवास में एकिस मीटिंग दौरान यात्रा बाबत तमाम इंतजाम तो तैयारियों जायजा। डिविजनल कमिश्नर दी मुतलक महकमन हिंदे तरफ जारी तैयारियों तो तरकियती काम वक्त पे मुकमल कर हदायत। यमुक मकसद यात्रियों भगवती नगर यात्री निवास में बेहतर सहूलत आयतन थवन ये तम बालतल तो पहलगाम बेस कैंपो बापत रवाना सपदन। हपर्च गवी तरक्की तो पंचायती राज महकम सेक्रेटरी महमद एजाज अजदन श्री अमरनाथ जी यात्रा हिंदे सिलसिले में करने वाले इंतजाम जायजे हूतमुत। तमो हज बालतल तो पहलगाम वतो प्री फैब्रिकेटेड बैतुल खुला तो गुसल खानन तंजीम अफरीदी कोतन तैनती वेस्ट मैनेजमेंट कन इकदाम साम। तमो दु तमाम स्टेक होल्डरन सुकी तो मेहनत सान काम करने किस जरूरत पे जोर। वलुर म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट श्रीनगर के अथवासन आगानी आपसन हूं मुकाबल करने चन तैयारियों तो लूकन हिंदे तहफुजस मुतलिक बेदारी पैदा करने बापत खसूसी तरबियती प्रोग्राम मुनद कर्मुत। अत मौक पे मतलो अथॉरिटी हिंद सीईओ डॉक्टर एहसानुल हक चिश्तीन यथन तरबियती प्रोग्राम अहमियत। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर की इकॉनमिक ऑफेंसेस विंग खोशीपुरा एचएमटी श्रीनगर जमीन हिंद गपल करने किस एकिस मामलस में मापदा पे मुलवस जो कसूरवार गिरफ्तार करमित।

0: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि 51 रोज पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने तब्दीली की एक मशाल रोशन की थी और लोगों की भरपूर शिरकत से ये मशाल आज उम्मीद, हौसले और अजम के एक रोशन शोले में तब्दील हो चुकी है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में निकाली गई मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा की क्यादत के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सेहत आमा की जंग नहीं बल्कि कौमी सलामती की भी एक अहम लड़ाई है।
1: धीरे धीरे जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों के सहयोग से यह एक ऐसा जन आंदोलन बनता जा रहा है जिसने जम्मू कश्मीर की हर गली, हर परिवार और हर दिल को एक ही इरादे से जोड़ने का काम किया है। आवाम के हर परिवार का आज एक ही संकल्प है कि अपने गांव, अपने शहर को हमें नशा मुक्त बनाना है। मैं बड़े एतमाद से आज कहना चाहता हूँ कि वे जंजीरें जिन्होंने हमारे नौजवानों को ड्रग के अंधे जाल में बांध रखा था, वे अब कड़ी दर कड़ी दिन ब दिन टूटती जा रही है।
0: पीएम स्वनिधि स्कीम के 6 वर्ष मुकम्मल हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर में रेडीबानों के मयार हयात में मुस्बत तब्दीली लाने में इस स्कीम की अहमियत को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कीम की बदौलत इस तबके के मुस्तहिक़ीन को आसान शरों पर कर्जे फराहम होते हैं। सऊदी अरब में फरीज़ हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो रहा है। इस बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा कि सफरी महमूद से आने वाले जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी के सिलसिले में तमाम तैयारियां और इंतजाम मुकम्मल हैं।
2: हमारी जो फ्लाइट है, पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, उसके बाद 2 फ्लाइटें या 3 फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो हुजाज किराम को जो उनके रिलेटिव्स होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। तकरीबन 12:30 के करीब पहली फ्लाइट इंशाल्लाह लैंड करेगी श्रीनगर एयरपोर्ट। जो हुजाज किराम का सामान है उसका ज्यादातर हिस्सा 30 kg जो है वो बाई रोड आएगा, यानी तीसरे या चौथे दिन वो श्रीनगर हज हाउस पहुंचेगा।
0: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में पेट्रोल मसनूआत, एलपीजी और खाद समेत तमाम जरूरी अशिया की बिला तातुल सप्लाई को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया है। वो कल जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा और सियाती सीजन के लिए दरकार अशाई जरूरत की दस्तियाबी और स्टॉक का जायजा ले रहे थे। उन्होंने मुतलका महकमों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि घरेलू सार्फिन के लिए एलपीजी को तिजारती इस्तेमाल में न लाया जाए और ऐसी किसी भी बेजाबतगी को रोकने के लिए सख्त निगरानी करें। मीटिंग में सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने जानकारी देते हुए कहा कि वादी भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का वाफिर स्टॉक दस्तियाब है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीम सिंह तोती ने श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में भगवती नगर यात्री निवास में एक मीटिंग के दौरान यात्रा के इंतजाम की तैयारियों का जायजा लिया। डिविजनल कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों की जानिब से जारी तैयारियों और तरक्याती कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी, जिनका मकसद यात्रियों को भगवती नगर यात्री निवास में आरामदह और सहूलत बख्श क्याम फराहम करना है, जहां से वो बालतल और पहलगाम बेस कैंपों के लिए रवाना होंगे। इधर महकमे दी तरक्की और पंचायती राज महकमे के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने बालतल और पहलगाम रास्तों पर प्री फैब्रिकेटेड बैतुल खुला और गुसल खानों की तनसीब, अफराद कुवत की तैनाती, वेस्ट मैनेजमेंट के इकदाम का भी जायजा लिया। उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर से लगन और खिदमत के जज्बे के साथ अपने फराइज अंजाम देने पर जोर दिया। वल्ली म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट श्रीनगर के इश्तराक से नागहानी आफात से निमटने की तैयारियों और लोगों के तहफ़ से मुतलिक बेदारी पैदा करने के लिए खसूसी तरबियत का इनेकाद किया। इस मौके पर अथॉरिटी के CEO डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती ने इस तरह के तरबियती प्रोग्रामों की अहमियत को उजागर किया। क्राइम ब्रांच जम्मू कश्मीर के इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने खुशीपुरा HMT श्रीनगर में आरसी के गपले के एक

0: अराजी के घपले के एक मामले में मुबैना तौर मुलविस दो कसूरवारों को गिरफ्तार किया है। महराजुद्दीन खांडे और शब्बीर अहमद खांडे नामी इन दो मुलजिमों और उस वक्त के पटवारी के खिलाफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू ने महकमे माल के सीजन अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए रेवेन्यू उमूर और खिदमात की फराहमी में पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर डिजिटाइजेशन के अमल को तेज करने और तफवीज करदा अहदाफ की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात कम से कम दर्जे हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप लाइव मॉर्निंग शो समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह, अपने मेज़बान रूफ अली और मेरे साथ नाजिमा रशीद। जी नाजिमा
2: जी, और हमारे सुनने वाले दोस्त इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हम कब उन्हें अपडेट करें। हालांकि हमारी यही कोशिश रहती है कि पल पल की जानकारी आप तक पहुँचाते रहें। हम मौसम से ही शुरू करेंगे और इस वक्त पे जो है 24 डिग्री सेल्सियस लाइव टेम्परेचर बना हुआ है शहर श्रीनगर का। 28 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा और कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड की जाने की तवक्का है शहर श्रीनगर की। और 36 डिग्री सेल्सियस ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 26 डिग्री सेल्सियस जो है जम्मू में रिकॉर्ड किया जा सकता है। और महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई हम तक पहुंची है उसके मुताबिक आज मौसम खुश्क ही बना रहेगा, खुश्क और खुशगवार, लेकिन सपहर में हो सकता है कि हल्की सी बूंदाबांदी भी हो। जी, ये मौसम का हाल अहवाल जो हमने अपने सुनने वाले दोस्तों तक पहुंचाया। और आप बेहतर जानते हैं कि इस वक्त पे जो मार्केट है ज़रा फ्लक्चुएट हो रहा है और काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है इस वक्त पे जो ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ है उसकी वजह से। अपडेट करते रहे अपने सुनने वाले दोस्तों को, तो बताते हैं उन्हें सेंसेक्स के क्या कुछ हालचाल है। 74,267 सेंसेक्स यानी कि नीचे है। निफ्टी जो है 23,382.60। गोल्ड का भी इस वक्त पे जो है बेयरिश ट्रेंड ही बना हुआ है। 1,54,019 रुपीज़, यानी कि इसमें हमने देखा कि खासी कमी भी वाक़ा हुई है लगभग 1,600 रुपए की। सिल्वर भी इस वक्त पे बेयरिश में ही है 2,65,826। और क्रूड ऑयल जो है बुलिश है 475 रुपीज से, जो कि इसका टोटल बन रहा है 8,756।
1: बिल्कुल, आज 2 जून है। बाजार ये कैलेंडर का एक आम सा दिन लगता है, लेकिन अगर हम तारीख के पत्ते पलटें तो मालूम होता है कि आज का दिन इंसानी तहजीब, राबितों और ख़ास तौर पर इस मीडियम के लिए एक संग मील है जिसके ज़रिए इस वक्त हमारी आवाज़ सामीन के कानों तक पहुंच रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेडियो और वायरलेस टेक्नोलॉजी की। आज ही के दिन यानी 2 जून 1896 को दुनिया का पहला वायरलेस पेटेंट फाइल किया गया था। जी, आपको ले चलते हैं 19वीं सदी के आखिरी अशरे में, जहाँ इटली के एक शहर में 22 साल नौजवान अपने घर की जो है अटेरी में तारों, बैटरियों और अजीब गरीब आलात के साथ दिन रात तजुर्बात में मसरूफ था। इस नौजवान का नाम था मार्कोनी। इस दौर में दुनिया तारों के जरिए पैगाम भेजने वाली जो है वाली टेलीग्राफ से वाकिफ हो चुकी थी, लेकिन मार्कोनी का ख्वाब कुछ और था। वो सोचता था कि अगर कुदरत ने हमें ये फजा दी है तो हम पैगाम भेजने के लिए लोहे और तांबे की तारों के मोहताज क्यों रहें। क्या ये मुमकिन नहीं कि आवाज़ या सिग्नल हवा के दोष पर सफर करें। लोग इससे यानी मार्कोनी को लोग दीवाना समझते थे। जी, और फिर मार्कोनी ने अंतक मेहनत के बाद अपने घर के बगीचे में बगैर तार के सिग्नल भेजने का कामयाब तजुर्बा किया।
2: जी, बहुत शुक्रिया रूफ साहब इस जानकारी के लिए। और बताना चाहेंगे अपने सुनने वाले दोस्तों को कि ये हमारे लिए भी बहुत एक खुशकिस्मती की बात होती है कि हम भी यहाँ पे एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। आज सुबह से रूफ साहब मुझे बता रहे हैं कि मुझे मार्कोनी के बारे में बताना है, आपको भी और सुनने वाले दोस्तों को भी, और मैं बहुत दिलचस्पी लेके ये सुन रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: क्योंकि बल्कि ये जो ईजाद थी जिसने आगे चलकर मौजूद रेडियो की शक्ल इख्तियार की, इसी ईजाद की

0: दौलत, आज हम जो माइक्रोफोन पर बोल रहे हैं और आप अपने सामीन जो है अपने घरों में, गाड़ियों में या मोबाइल फ़ोन पर जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, स्मार्टफोन जो है और सैटेलाइट जो भी है, टीवी, ये सब इसी 2 जून 1896 के दिन जो है बीज बोए गए थे, इसी का फल आज जो है हम देख रहे हैं।
1: इसीलिए हम कहते हैं कि हम अपने सुनने वाले दोस्तों तक पहुँचते हैं इस माइक्रोफोन के जरिए, उनके घरों तक, उनके दिलों तक।
0: जी, और हम आपको ये बता दें कि इस ट्रांसमिशन में जो कंट्रोल रूम में हमारा साथ दे रहे हैं, जावेद अहमद लोन और मंजूर अहमद नजर।

तो इस सिलसिले में डॉक्टर सतीश अमल बोजान पेशेस करान मुनीर अहमद मीर अम्ब्रो उस तय शमीमा देवन हट कलाम बोजो सोस कलामे प्रोफेसर नसीम शफाई। समीन हमारे प्रोग्राम के बारे में एक इतला समाप्त करें। प्रोग्राम रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारे की रिकॉर्डिंग आज 2 जून को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक होगी। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है एलर्जी असबाब और इलाज। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मदद किया है नामवर मौलिज डॉक्टर ताहा कुरैशी को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिज से मौजू की मुनासिबत से कोई सवाल पूछना चाहते

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम चुप्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तम नश शब्दान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: प्रोग्राम बोजान सूफी सदा ये प्रोग्राम छु प्रेत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम।

हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है बराह रास्त ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के स्टूडियो से। मैं हूं आपके होस्ट नाजिमा, आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये वक्त है आप तक कुछ खास पहुंचाने का। बेहतर जानते हैं कि 10:30 से लेकर ठीक 11:30 तक हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे मेहमान से, जो कि बात करते हैं किसी मौजू पे। और आज का इंतखाब जो है, आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद है स्टूडियो में, तशरीफ फरमा है। थोड़ा सा तजस्सुस बरकरार रखते हुए एक से ट्रैक से आगाज करेंगे, ये ट्रैक सुनेंगे, ट्रैक के उस पर बताएंगे आपको कि आज हमारे साथ कौन है और क्या कुछ खास बात होगी।

जी दोस्तों, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये पैरासा ट्रैक आप सुन रहे हैं और ये ट्रैक आप सुनेंगे जरूर, लेकिन आपसे ही दरख्वास्त है इस तरह कि आप हमारे साथ बने हुए हैं।

बने रहिएगा, क्योंकि इस ट्रैक के उस पार जो हम आपकी मुलाकात आज के खास मेहमान से कराएंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल आबिदा परवीन और राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक।

0: फिर एक मरतबा इस्तकबाल अमीर खुसरो का प्यारा सा कलाम आपने अभी अभी सुना, उम्मीद करते हैं आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आपका तजस्सुस खत्म किए देते हैं। आज हमारे साथ जो शो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जुबैर रशीद साहब हैं, जो कि एक कार्डियक सर्जन हैं, अमराज कल्ब, दिल के मर्ज बहुत ज्यादा है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, आज हमने इसी हवाले से बात करनी है। तो इतना ही मैं आपका तारुफ दे सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अपने सुनने वालों को अपनी आवाज में अपनी जबान में मुख्तसर सा एक तारुफ दें अपना।
1: जी शुक्रिया जी, सारे लिसनर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: मेरा नाम डॉक्टर जुबैर रशीद है और मैं हार्ट के अमराज का डॉक्टर हूँ। अगर मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है हार्ट का सर्जन।
0: जी।
1: तो मैं हार्ट का ऑपरेशन करता हूँ, चाहे वो बड़ों का हो, चाहे वो बच्चों का हो। तो आप, जैसे आपको पता ही होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट के अमराज कॉमन हो गए हैं।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों में हो, बड़ों में हो, यंग, कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें जिनको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो।
0: बिल्कुल।
1: तो इसी में मैंने स्पेशलाइजेशन की है और इंशाल्लाह मैं कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, जिनको भी कोई हार्ट की दिक्कत होती है या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनका मैं इलाज करता हूँ, पर्टिकुलरली ऑपरेशन।
0: बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर हम आपके काम की बात करें, जब मैं अभी आपसे बात कर रही थी तो आपने थोड़ा सा, आप अगर खुलासा करें इस बात का जो मैं अंदाजा लगा पाई, अशेत कार्डियोलॉजिस्ट आसान तिम गए आख ये ऐसे हार्टी के मर्ज छान, लेकिन तुझे सर्जरी करान और आप बच्चों को भी देखते हैं, आप बड़ों को भी देखते हैं। तो अभी आपने खुद जिक्र किया इस बात का कि विंकेनस से रुझान छू, विंकेनस चॉइस पूछमुत किया अत मज आओ जरा हुरियर, हमने देखा कि केसेस में खासा इजाफा हुआ। एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में, आप एक तजुर्बाकार हैं, डॉक्टर हैं, आपकी नज़र में ये जो मामलात हैं इनमें अचानक से ऐसा इजाफा हुआ या फिर ये इजाफा हो चुका था लेकिन अब जाके जो है रिपोर्ट ज़्यादा हो रहा है या इसकी तरफ लोगों की तवज्जो ज़्यादा इस वक्त पर मरकूज हुई है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। और एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है लेकिन इसके बाद
1: देखिए, इसमें जो इजाफा तो बिल्कुल है, इसमें इजाफा जो हार्ट के अमराज है, चाहे बच्चों में हो, चाहे बड़ों में हो, मेल्स फीमेल्स हर किसी में हो।

0: हो रहा है, बट ये बहुत सालों से चलता आ रहा है।
1: ठीक
0: इसका जो मेन जो रीज़न है, इसके जो मेन वजूहात हैं, उसमें से एक है कि जो हम चेंजिंग लाइफस्टाइल हो गया है हमारा, चाहे वो हमारे खाने के लिहाज से हो, चाहे वो हमारे चलने फिरने के लिहाज से हो, चाहे वो हमारे किसी भी एक्टिविटी या किसी भी काम के लिहाज से हो। जैसे अब हम अभी अब देखते हैं कि हम बहुत सिडेंट्री हो गए।
1: जी
0: सिडेंट्री
1: जी
0: मतलब कि हम जैसे पहले बच्चे थे, जब हमारी जनरेशन जब थी, हम बच्चे थे, हमारे पास मोबाइल नहीं था, हमारे
1: बिल्कुल
0: पास ऐसे कोई आलात
1: आलात
0: नहीं
1: नहीं
0: थे,
1: थे।
0: गैजेट्स नहीं थे जिनसे हम अपना टाइम स्पेंड करते थे। और हमारे पास बस यही था कि हम आउटडोर गेम्स खेलते
1: जैसे
0: थे।
1: खो खो
0: बिल्कुल,
1: गेंदा
0: खो खो
1: जी
0: इस गिंदन, बाकी हम बैट बैट बॉल ऐसे आसन
1: बिल्कुल
0: ऐसे
1: सही
0: मोबाइल असन स्पाई। तो यम ये वार वार ये मोबाइल इंट्रोड्यूस गो लाइफ मज। तो यमे गई वजूहत अख इवन यंग लड़के तो कोरि आसन या बड़ या फीमेल्स आसन, तिम गई अथ मज मुबतला। तो यम गई हार्ट च प्रॉब्लम्स।
1: अच्छा यानी तो शुरू कि लाइफ स्टाइल गो
0: लाइफ
1: सो
0: स्टाइल
1: चेंज
0: मेन चेंजिंग अत। तो अथ लाइफ स्टाइलस मज पतन मतलब सोन खेन चन तु
1: सही
0: सू गो चेंज। इत
1: बिल्कुल
0: एडल्ट्रेशन आज फूड एडल्ट्रेशन, यहाँ तक कि एयर इज़ पल्यूटेड, वाटर इज़ पल्यूटेड, सिमिलरली फूड इज़ आल्सो पल्यूटेड। तो यम त गई बाकी बाकी अमराज त गई यम सी हार्ट तो गो इन्वॉल्व, तो बाकी चीज़ त गई सानिस जिस्मस मज इन्वॉल्व अम सी।
1: जी अम सी अतन जो सवाल मेरे जहनस मज गुक सवाल ये कि वे अगर अो चो कह खराब खेवान जंक फूड खाते हैं बाकी चीज इस्तेमाल करा या मोबाइल फोन इस्तेमाल करा, चले हम तो मानते हैं कि यम तब्दीली आई अस मज, लेकिन तुझ पान फरमान कि लक्ट शुन मज तम चीज आज यूता, चलो हम तो इतने बड़े हैं, हमने कुछ साल गुजारे हैं इस दुनिया में, अस वुच वारिया के, अस कोर वारिया के, मगर तुम चुन आसा यम चीज करमित के तात मुतलिक वन तो कि तिमन मज क्या वजह छु। और साथ में एक कश्मीर में हम लोगों के यहाँ पे दपान कल्चर बहुत है, कैसे वो उनके पचो सो दपान दपान करित वारिया फहलान, ये तो उस मज ये तो वनान कि कोविड पते गई यम शायद वैक्सीनेशन छ रीजन या बे क्या वजह, कोविड पते वच अस हार्ट अटैक्स ते और बिलखसूस यम यंगस्टर्स तिमन मज आई तेजी, अत मुतलिक क्या चु तुहुन ख्याल?
0: ये अख पर्टिकुलर अख इस कोविड इंसिडेंट गो यह अख मेजर इंसिडेंट इन द डिकेड और इस हेको वन यह अख मेजर इंसिडेंट इन द सेंचुरी।
1: अहन
0: तो अम पॉसिबिलिटी कि अम हेकन मतलब तम चेंजेस हेकन ये मतलब हार्ट चन अमराजन मज तम ज्याद गमत या आन कम गमित, तो मगर ये अख रीजन। दोयम रीजन बच्चे सन यंग जनरेशन राइट नाउ इन टीन्स जमन वन तो तिमन मज पर्टिकुलरली खेन चेनस अलाव अस गई मतलब बाकी सबस्टेंस अब्यूज वन अत चीजस सानी लैंग्वेज वन सबस्टेंस अब्यूज। तो अगर अस वन मतलब क्रूड लैंग्वेज मज वनो वनो ड्रग्स करन
1: नशस कुन गई
0: नशस कुन गई बाकी चीजन कुन गई, बे नशे चुन खाली सिगरेट योत के नशे चुन बस दवही योत चुन के नशे चु बाकी चीज ते आसन इंजेक्शन छ वन या कुन ते चीजुक केह ते आदत लारुन बे सु कंटिन्यू करुन तो पत तमुक बे आदी बनुन तो बे कंटिन्यू करुन सु छु नशा आसन, चाहे सु कुन ते को आसन, चाहे खन चन आसन। आजकल छ बच खवन जंक फूड सु छ अख नशा, ये तिमन तिमन तिमन छ मतलब मान करन के खमहाव ये पच तिमन बे तो बे अथ मान करन, ये छ अख विश साइकिल बनन, छ ना विश साइकिल बनन, एम सु छ मन सोरी ऑर्गन इफेक्ट गसन। तो हार्ट छ सेंटर अख ऑर्गन सिस्टम उस एम पे छ सोरी ब्लड सप्लाई एमी पे सोरसी गसन बॉडी मज, चाहे सो लिवर ऐसिन, चाहे स्टमक ऐसिन, चाहे किडनीज ऐसिन, चाहे ब्रेन ऐसिन। तो पर्टिकुलरली यमन तिश इफेक्ट गसन सु छ हार्टस ते पे इफेक्ट गसन। सो बचन मज तो टीन एजन मज बे यंग यम जनरेशन छ ऐसे तिमन मज गई यम चीज ज्यादा। सो दिस वाज द रीजन।
1: बिल्कुल ठीक। अच्छा अस अत मजीद यहां कि ये अस लक लक शुर् स्ट्रेस तवान आज अस वुमुत कि एग्जाम छ टेंशन आसान या वालदैन की तरफ से टॉन्ट्स आपको मिलते हैं, कंपैरिजन्स बहुत होता है, यम टेंशन तम तज एड ऑन ग।

0: अच्छा अन पतवंत ऐसे तो फरमो बिल्कुल बजा वन होता है कि कहावत छे कि अगर आप किसी आदत को वक्त पे ना बदलें तो मजबूरी बन जाती है, अक विश साइकिल बना वच ऐसे वुचमत कि यम नौ जायद से बच्चे चासा यम नए नए शुर छे जवान तिमन मज ते छे वार यम मज हार्ट के मसल विंकेनस इस वुचान इस तात क्या वजह छे आसा इच कि मोजल कंसीव छे करा टाइम पर तुस नवर रतन हिन सो अक वक्त छे आसा तात मज छे कि बस तो हिके असित यम से ते मामले ते हकन से
1: यस बिल्कुल यत कि मैं वो मे सुपर स्पेशलाइजेशन इन पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी बच्चन हूँ हार्ट ऑपरेशन चुस बकार तो ये बूझित गैसु ताई थोड़ा सा हैरानी के 500 बच्चे छ पर डे डायग्नोस गछन इंडियास मज विद कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज तिमन छ आसन कह नत का हार्टस अमराज 500 बच्चन पर डे पंचशत बच्चे पर डे इन इंडिया ओनली तो बेमा सो इंसिडेंट यह आज ब्रो जरूरी कत वह सो बे इनक्रीज ग तो अत मल्टी फैक्टोरियल कॉजेज वजूहत अतम कि प्रेगनेंसी मे नंबर अख एंटी नेटल केयर वातन कह माजन
0: ठीक ठीक
1: मदर्स न्यूली कंसीव्ड मदर्स तिमन योतान तिमन डिलीवरी तिमन पई तिम बच्चे क्युथ तिमन ऑर्गन क्युथ तम खर कर फीटल हार्ट इको
0: ओके
1: फीटल हार्ट फीटल इको कर हार्टस तम सर हार्टस मह माजि हंदिस शिकमस मजे
0: ठीक
1: सो एंटी नेटल केयर लैकिंग तमें पत सान माजन यम न्यूली कंसीव्ड मदर्स तिमन अवेयरनेस आसन क्या कि कुस ड्रग खोन कलस दोद मे वो लाइफ स्टाइल गई चेंज तो इथे कि मतलब यंग कंसीव्ड मदर्स तिमन तसान यह पाई कि कमे ड्रग्स क्या ग अमित मह फीटल चेंजस ग एनामलीज ग बच्चस नुकसान वातन ऑर्गनन मज भन्नस मज चाहे सो हार्ट चाहे नड़ जंग चाहे लिवर कह सो इमन छन ये पाई आसन के दैट इज अनअवेयरनेस अनएजुकेशन तो ये चु अख मेन रीजन ब्याक बनन बे कम साथ क्या चु करून कित कच स्क्रीनिंग करन कित कच सो यस प्रेगनेंसी हुन ये दौर छ आसन माज खतर ये चु बड़ क्रिटिकल स्टेज आसन
0: बिल्कुल
1: तो मगर अच चु आसन ख्याल ते थाउन तमी हिसाब यस न आजकल तूथ थान क्या बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस क्या कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरिया सारी सिटी मज रोजन क्या बाकी छ गामन मज गुठन मज बाकी तिमन छ तूथ एक्सेस हेल्थ केयरस कह तो यम चीज बड़े अत मज फैक्टर करन यम यल नवजात बच्चे तिमन हार्ट प्रॉब्लम आसन पल ये तिमन फिक्र तरन या डायग्नोस ग तिमन डॉक्टर्स नश नवान तम सात डायग्नोस ग तम पिमन पत् सो ट्रीटमेंट पेवन करून चाहे सो पत् एक्सटेंड ग पत् क्या ग दुम सवाल
0: बिल्कुल ये कर तिम खवातीन मुतलिक जन एक्सपेक्ट आसन कर तिम कम ख्याल थवन इससे पहले कि हम एक नगमे पे जाए एक सवाल है मेरे जहन में जो कि शायद मुझे लगता है इसी में कवर होना चाहिए हमने कुछ सालों में पिछले कुछ सालों में ये देखा कि जो हमारे भाई बहने जिम ज्यादा करते हैं जिम जाते हैं उनमें भी खासा एक इजाफा देखा गया हमने ऐसे भी बहुत से वीडियोस देखे कि जिम करा कर गो कार्डियक अरेस्ट तो क्या तशा बस तात्मस क्या वजह तिम चीके यूज कर या कुछ ऐसा मामला हो सकता
1: है बिल्कुल बिल्कुल ये भी हो सकता है क्या हर क्या काम करें प्रॉपर सुपरविजनस अंदर बेचु तिमन गोडनत पनुन चेकअप करना उन का ते हेकिन सुदी इत कन कि बच्चे बच्चे तमिस वनो सो वन मे फिफ्थस खसन योतान ना फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कर क्रॉस तो हेक ना फिफ्थस वह सान यूथन तंकस गुमत यीतः वन मतलब इदार ज्याद गई जिम ज्याद गई तीतः गई यम इंसिडेंट त्याद गोडनेथ यूत कह यीत वन इंसिडेंट त गए ज्याद तो वह रिपोर्ट्स तुम्हें तमी हिसाब मगर यस पर्टिकुलरली अचानक डेथ्स गमन अंडरलाइंग डेफिनेटली कह नत क्या हार्ट प्रॉब्लम अकिस हेल्दी हार्टस गह अचानक हार्ट अटैक कह या अचानक करन परसीव या समझन ठीक अचानक बट ڈیفنیٹلی یہ انڈر لائنگ کیا ہے. اسی لیے سکریننگ امپورٹنٹ، سکریننگ چاہے سو لاکٹ ٲسِن چاہے بوڑھ

0: बात होगी जो हमसे छूट गई, जो आप कहना चाहें।
1: अल्लाह के फजल करम से मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा टॉपिक्स कर, इस मेजर मेजर टॉपिक्स का ना ये आज प्रेजेंट डेस में कंसर्निंग, तो लिसनर वारिया नॉलेज गेन गमस, तो मगर ये वनु तहित ये वन मे ते, सो टेक होम मैसेज ये कि नेवर इग्नोर, नजर अंदाज में करो कहीं, टेक टाइमली कंसल्टेशन तो टेक टाइमली ट्रीटमेंट, यह मतलब मेन आज अमुक डिस्कशन मकसद द्राव सह द्राव यह कि इग्नोर करूँ कहीं पिन सेहत सारी खत इम्पॉर्टेंट, पिन हेल्थ पिन सेहत पिन बचन सेहत थाउन टॉप प्रायोरिटी, बाकी सारी लिस्टस मज बन कहीं इग्नोर करूँ कह, ट्रीटमेंट टाइमली नीन, तो पर्टिकुलरली पन्निस पर्टिकुलर डॉक्टर्स निश गु, मतलब गो कि हार्ट का अमराज वोल ग हार्ट किस डॉक्टर्स निश, लंग्सन अमराज वोल ग लंग्स कें डॉक्टर निश, जॉइंट कें हुन ग जॉइंटस निश, तो तथ कत क्या कि माशाल्लाह तो अल्लाह ताला सिंद फजल करम सशीर मज वारिया काबिल तो वारिया टैलेंटेड डॉक्टर्स तो बे हर कुन स्पेशलिटी हिंद, बस अस पान पान अवेयर करूँ अत मुतलिक कुस कमुक तो कित कित पजे करूँ।
0: बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब आप बात कर रहे थे तो जहन में एक सवाल मेरे आया लास्ट में, वो ये था कि ये ईद के मामला खुदा न खास्ता अत चीज वारिया खोजा कि यह खर्च अत पे वारिया यहाँ, आप जाती तौर पर बहुत काम करते हैं तथ मुतलिक वन तो थोड़ा कि यह खर्च अत क्या मामला हे
1: बोड बार टॉपिक खर्च तो मे बसान टोटली अनटच टॉपिक डिस्कस पाई इन शॉर्ट वन इन कशीर नबर इंश्योरेंस सिस्टम,
0: अहन
1: इंश्योरेंस सिस्टम अस मे नबर ट्रेनिंग कर पुन हेड वन मे ट्रे मेंटर उस मैं सह वन ये कह मरीज हॉस्पिटल मज एडमिट तम मिडल क्लास या अपर क्लास ये सो हॉस्पिटल बिल बिल पे कर बिलो पॉवर्टी लाइन, सो फाइनेंस इम्पॉर्टेंट रोल कर अदा हेल्थ केयरस मज राइट नाउ इन कश्मीर, तो इसलिए अम खतर छु ये बड़ बड़ अख नौजुक टॉपिक तो बेश ये अनरिलेटेड विंकेस केस केस सेहतस मुतलिक कथ करन अछुन सेहतस छुन कॉम्प्रोमाइज गडनत है सेहतस मज हकोन इस कॉम्प्रोमाइज करित के अलबत यस फाइनेंशियल बर्डन छु तम खतर छु मेन पर्सनल रिकमेंडेशन छु हेल्थ इंश्योरेंस गुस आसुन
0: सवाल सिर्फ मतलब आज टॉपिक हार्टिक अमराज तथ मुतलिक यो क्या मज़ अ चीज कि खुदा नखास्त कह मामलों ग अक नजर आम खबर ग मतलब ये क्या बसा यह बस रिलायबल ये इलाज कर क्या वजह तह नश तो अत क्या है हाल
1: बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल इतने वन कि पेरेंट्स बच्चे सानी हवाल कर सम सवाल कर तमन
0: भरोसा
1: ये भरोस सान लकन सान कशीर कन लकन कर पे डॉक्टरन पे अफकोर्स ये वारिया टैलेंटेड डॉक्टर्स वारिया असल काबिल डॉक्टर तो तम हेकन कह ट्रीटमेंट कर तम खतर मे बसान पर्सनली नबर ग हार्ट बड़ बड़ ऑपरेशन कर बचन हिंद हार्ट बड़ बड़ ऑपरेशन कर नबर तर अमरीका मज तर दिल्ली तर तो बाकी ट्रीटमेंट तो हेकि ये आराम सान ग मे मे राय कि पन कशीर इंशाल्लाह तो पन डॉक्टर तम हर कुन जाए पे ट्रेनिंग करित आमित हर कह हर पन्निस पन्निस स्पेशलिटी हुंद माहिर
0: तो दर्द सान से के साल छे काम कर सको इवन के अल्लाह ताला पर तवक्कुल पन डॉक्टर पर भरोसा तो पन से तो ख्याल था नजर अंदाज न करो। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक घंटा हमारे साथ यहाँ पे गुजारा और जितना मुमकिन हो सका उतनी आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत शुक्रिया, हमें बहुत अच्छा लगा और हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे सुनने वाले दोस्त भी जो है इस्तेफादा जरूर लेंगे आज के प्रोग्राम से, आपका बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के डॉक्टर साहब डॉक्टर जुबैर रशीद साहब जो कि माहिर अमराज़े क़ल्ब हैं।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। हमारा अगला ऐलान सुनिए।

0: मैं हमेशा कहती हूँ, हम जिस स्तर से यहाँ तक पहुँचे हैं उसको भूलना नहीं चाहिए। आज बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े पोस्ट में हम रहे हैं, अपना अतीत को तो याद करते हैं, खुद के जैसा दूसरे इस चीज को ना झेले, इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।
1: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के 4 मुख्य न्यायाधीश

0: श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। केंद्र सरकार ने कल उच्च न्यायालय के चार मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठ अधिवक्ता मोहना को सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत करने की मंजूरी दी थी। सोशल मीडिया पोस्ट में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद इनको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के अधिकांश बिंदुओं पर सहमति बन गई है। अब समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीकी दल बातचीत के लिए 4 जून तक दिल्ली में है। भारत की ओर से वाणिज्य विभाग में अपर सचिव दर्पण जैन मुख्य वार्ताकार हैं और अमरीका का नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत के खिलाफ म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। दोनों नेताओं के बीच कल नई दिल्ली में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत का समर्थन दोहराया। प्रधानमंत्री ने म्यांमार से पूर्वोत्तर में संचालित आतंकी गुटों का भी मुद्दा उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने बताया कि म्यांमार के राष्ट्रपति ने भरोसा दिलाया कि भारत के सुरक्षा हितों के खिलाफ म्यांमार की धरती का इस्तेमाल नहीं होगा।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
0: गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। इससे पहले 180 दिन की अवधि समाप्त होने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका ₹100 और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न ₹25 का भुगतान करना होगा। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu is addressing the tribal beneficiaries of the Ministry of Tribal Affairs flagship scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan. We now go over live to the President's address.
3: कुछ ना करे क्या, कैसे करे, कैसे आगे जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में आपको नैतिकता के साथ ही नहीं, नैतिकता को कभी भूलना नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जनजातीय समाज के हमारे पूर्वजों ने अपनी संस्कृति और अस्मिता की रक्षा के लिए अनेक संघर्ष किए हैं और बलिदान भी दिए हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा तो केवल ना है, लेकिन ऐसे बहुत सारे बिरसा मुंडा ये देश के लिए, ये मट्टी के लिए, मिट्टी के लिए, लेकिन उनका इतिहास में नाम नहीं है। बलिदान दिए हैं, ये प्रसन्नता का विषय है कि जनजातीय कार्य मंत्री

बात करें हमारे प्रोग्राम के हवाले से। प्रोग्राम हेलो रेडियो क्लिनिक के ताज़ा शुमारे की रिकॉर्डिंग आज यानी मंगलवार 2 जून को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक होगी। इस बार प्रोग्राम में जिस मौजू का इंतखाब किया गया है वो है एलर्जी अजबाब और इलाज। मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम करने के लिए हमने मधु किया है नामावर मौलिज डॉक्टर ताहा कुरैशी को। अगर आप हमारे मेहमान मौलिज से मौजू की मनासबत से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो राबिता करें फ़ोन नंबर 01942480364 पर। रिकॉर्डिंग का वक्त रहेगा आज यानी मंगलवार 2 जून को दिन के 3 बजे से 4 बजे तक। यह थी हमारे प्रोग्रामों से मुतालिक एक इतला।

0: आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे, आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वे 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले उर्दू और उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में 100 रोज पर मुश्तमिल नशा मुक्त अभियान शदुमत के साथ जारी है। सिविल और पुलिस इंतजामिया की जानिब से अवामी बेदारी प्रोग्रामों के इनेकाद का सिलसिला जारी है, जबकि मुनशियात फरोशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाइयां की जा रही है। इंतजामिया ने इस अभियान को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अजम किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस दौरान रवा महीने की 5 तारीख को गांधरबल में मुनशियात मुखालिफ पदयात्रा का अहतमाम किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली जाने वाली इस पदयात्रा में सिविल सोसाइटी मेम्बरान, ताजरों, मजहबी स्कॉलरों और आम शहरियों के अलावा जिंदगी के दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत मुतवक्का है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने जिला

0: दौरान की एक मीटिंग तलब करके पदयात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुनशियात के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करें। सऊदी अरब में फरीज हज अदा करने के बाद जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात अहमद कुरैशी ने कहा कि सफर महमूद से आने वाले जम्मू कश्मीर के हुजाज किराम की वापसी के सिलसिले में तमाम तैयारियां और इंतजाम मुकम्मल हैं।
1: हमारी जो फ्लाइट है, पहले कुछ दिन एक एक फ्लाइट रहेगी, उसके बाद दो फ्लाइटें या तीन फ्लाइटें होंगी और ये सिलसिला 17 जून तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। तो हुजाज किराम को जो उनके रिलेटिव्स होंगे वो एयरपोर्ट पे ही रिसीव करेंगे। तकरीबन 12:30 के करीब पहली फ्लाइट इंशाल्लाह लैंड करेगी श्रीनगर एयरपोर्ट। जो हुजाज किराम का सामान है उसका ज्यादातर हिस्सा 30 kg जो है वो बाई रोड आएगा, यानी तीसरे या चौथे दिन वो श्रीनगर हज हाउस पहुँचेगा।
0: वज़ीर-आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुजाज किराम की सऊदी अरब से वापसी के दौरान उनका सामान साथ ही लाने के अमल में आ रही दुशारियों का मामला शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर किंजारापुराम मोहन नायडू के साथ उठाया है। वज़ीर-आला ने हुजाज किराम का सामान उसी परवाज में श्रीनगर में पहुंचाने की जरूरत उजागर की है जिसमें ये हुजाज खुद श्रीनगर तक सफर करने वाले हों। इस बारे में उमर अब्दुल्ला ने शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर को एक मकतूब लिखा है। लद्दाख के मेंबर पार्लियामेंट हाजी मोहम्मद हनीफा ने श्रीनगर में वज़ीर-आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। उनके हमरा लद्दाख में काम कर रहे मुलाजमीन के नुमाइंदों का एक वफद और करगिल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के कई अरकान भी थे। उन्होंने वज़ीर-आला को तालीमी शोबे नीज मुलाजमीन को दरपेश मामलात से आगाह किया। इस दौरान एमएलए रियासी कुलदीप राज दुबे ने आज श्रीनगर में वज़ीर-आला के साथ मुलाकात की। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के अहतमाम से आज आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और नामवर कलमकार डॉक्टर सतीश विमल के साथ मुलाकात की एक नशस्त मुनाकिद हो रही है। इस प्रोग्राम में जिंदगी के तबके हर फिक्र से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात की शिरकत मुतवक्का है। मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं। मरकजी सरकार ने इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने सरकारी महकमों की इमारत और दीगर सरकारी तनसीबात की छतों पर सोलर रूफ टॉप नस्ब करने के अमल में सूरत लाने की हिदायत दी। उन्होंने श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इस सिलसिले में अब तक की हसूलियाबियों का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने साइंस व टेक्नोलॉजी और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली आज सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ ले रहे हैं। अदालत उज़्मा के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत उन्हें अपने ओहदे का हलफ दिलाएंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर किए गए जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा और सीनियर वकील वेंकिता सुब्रमणी मोहना भी आज अपने ओहदे का हलफ ले रहे हैं। अब रेल से मुतल्लिक ये खबर। नॉर्दर्न रेलवे के जम्मू डिवीजन ने मई महीने के दौरान बगैर टिकट सफर करने वाले मुसाफिरों के खिलाफ 12,693 मामला दर्ज किए और कसूरवारों से 66,165 रुपये का जुर्माना वसूल किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: आदाब। یہ آکاشوانی سری نگر کشن خبرن ہند بلٹن ہس بہ سارا اختر۔ جموں کشمیر کن سارنی ضلع من ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیان زور شور سان جاری۔ سول تو پولیس انتظامیہ کے طرف عوامی بیدیری پروگرام منعقد کر سلسلے جاری یل زن نشہ آور چیزن ہند کاروبار کرن وال خلاف سخت کاروائی کر انتظامیہ یہ ابھیان پنس انجام تام وات اراد کورمت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن یہ پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
2: ات دوران یمہ رتن پونچمہ تاریخ گاندربل منشیات مخالف پدیاترا ہند اہتمام کرنے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز کڑنے یعنی واجن ات پدیاترا مز سول

राष्ट्रपति पॉल माशातेले से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में अवसरों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने आपसी साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री माशातेले की सराहना की। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि भारत और दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के

0: मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने इबोला वायरस से निपटने के लिए अफ्रीका को चिकित्सा सहायता की 43 टन की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस खेप में निदान, निगरानी उपकरण और दवाएं शामिल हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि इससे अफ्रीकी संघ के सदस्य देशों को इबोला वायरस से निपटने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्रालय ने सलाह दी है कि ऐसे व्यक्ति जो पिछले 21 दिन में इबोला प्रभावित देश से यात्रा करके आए हैं, उन्हें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई दें तो वे स्वयं को लोगों से अलग कर लें। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को तुरंत सूचित करें। नागरिक हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। गृह मंत्रालय ने आवर्जन और विदेशी संशोधन नियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। इसमें आवर्जन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण और समय सीमा से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस संशोधन के अंतर्गत भारत आने के बाद 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी पंजीकरण कराया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। रिलायंस कम्युनिकेशंस ग्रुप के पूर्व प्रबंध निदेशक अमिताभ झुंझुनवाला को सीबीआई ने करोड़ों रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला भारतीय स्टेट बैंक से लिए गए 1200 करोड़ रुपए के सावधि ऋण, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिए गए 500 करोड़ रुपए के लेटर ऑफ क्रेडिट और सिंडिकेट बैंक से लिए गए 350 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा के कथित दुरुपयोग से संबंधित है। एजेंसी ने पहले ही 16 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक वर्ष में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद में 53 गर्भवती महिलाओं की कथित मृत्यु के संबंध में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। एक मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये 6 जून तक खुला रहेगा। CBSE ने कहा है कि यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की प्रति प्राप्त कर ली है। छात्रों को प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का भुगतान करना होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 81 अंक गिरकर 74,186 पर, जबकि निफ्टी 44 अंक लुढ़ककर 23,338 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship scheme in New Delhi today, the President said true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally. She highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities.
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ने रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: The Ministry of Home Affairs has notified the Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026, introducing key changes to registration timelines and the appeals mechanism under the Immigration and Foreigners Rules 2025. The amendment allows registration to be completed at any time before the expiry of a

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार। बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जहाँ पेड़ और पानी साथ हों वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी ऐसा ही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहाँ जीवन में भी खुशहाली आ जाती है।
3: बहुत बहुत सुंदर संदेश आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों में हमें संदेश भेजा।

0: वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ सरगुजा से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिवा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा।
1: बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नैना जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा।
0: अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। बड़ी सुंदर प्रतिक्रिया भेजी है, आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, एक सप्ताह में उमंग कार्यक्रम हमें इतनी अधिक जानकारी से समृद्ध कर देता है कि कार्यक्रम की समीक्षा में आपसे किस अंक की चर्चा करें और किस अंक को छोड़ें ये दुविधा हो जाती है, क्योंकि उमंग का प्रत्येक अंक अपनी खासियत लिए होता है।
0: आपने आगे लिखा है, हम हर एक अंक को नियमित रूप से सुनते हैं। 27 अप्रैल सोमवार को भारत की प्रथम महिला पायलट सरला ठकराल के प्रेरक व्यक्तित्व की नाट्य प्रस्तुति सुनी और जान सके कि उनके ससुर श्री के एस शर्मा जी का कितना बड़ा योगदान उनको पायलट बनाने की मुहिम में रहा। आपने आगे लिखा है,
1: 28 अप्रैल को उमंग कार्यक्रम में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा के अंतर्गत गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था पर सरल शब्दों में पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई। 30 अप्रैल को नालंदा विश्वविद्यालय और 1 मई को तक्षशिला विश्वविद्यालय पर दुर्लभ संग्रहणीय जानकारी मिली। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक धन्यवाद और आभार।
0: तो कृष्ण कुमार गुप्ता जी, आपको भी हमारा आभार इस प्रोत्साहन से भरे संदेश के लिए। हम आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं की सचमुच सराहना करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा जी का।
1: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी।
0: आप सभी श्रोताओं को संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रस्तुत है हमारी रोचक जानकारी से भरी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी। आप सबका स्वागत है श्रृंखला में। श्रोताओं, पिछले कई हफ्तों से हम कर रहे हैं भूगोल यात्रा।
1: हमने रोचक चर्चा की समुद्रों की, वर्षा वनों की और मैंग्रोव वनों की। तो अजीत जी, आज हम अपनी भूगोल की यात्रा में उमंग कार्यक्रम के माध्यम से कहाँ चल रहे हैं?
0: विमलेश जी, आज ही नहीं, इस पूरे सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
1: शीत मरुस्थल? ये कैसी बात हुई अजीत जी, हमने तो अक्सर सुना है कि मरुस्थल गर्म होते हैं और वहाँ रेती रेत होती है।
0: जी विमलेश जी, दरअसल होता यह है कि जब भी हम मरुस्थल सोचते हैं ना, तो अक्सर हमें रेत के टीले और गर्मी याद आती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन तथ्य कुछ और है।
1: जी,
0: दरअसल मरुस्थल की पहचान गर्मी और रेत से नहीं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि कहा जाए तो कम वर्षा से होती है।
1: जी, तो आज हम किस शीत मरुस्थल की बात करेंगे
0: बताइए।
1: मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है अंटार्कटिका।
0: जी वो तो है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। ये दुनिया के सबसे अद्भुत स्थानों में से भी एक है। इसके बारे में जानना ऐसा है मानो किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानना।
0: जी विमलेश जी, श्रोताओं, यहाँ सालाना 50 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसका क्षेत्रफल 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 1.42 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ लगातार हिमपात होता रहता है।
1: जी श्रोताओं, इसे पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। यहाँ का सबसे कम तापमान लगभग -90 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। जरा सोचिए, ऐसी ठंड के यहाँ सांस लेना भी एक चुनौती है। ऐसी ठंड है इस जगह पर कि यहाँ के वाहनों के और अन्य मशीनों के इंजनों को भी हमेशा चालू रखा जाता है, क्योंकि इंजन यदि बंद कर दिया गया तो ईंधन मात्र 3 सेकंड में ही जम जाएगा।
0: और श्रोताओं, साथ ही साथ इनकी बैटरीज भी काम करना बंद कर देंगी।
1: जी,
0: आपको बता दें कि यहाँ के लिए वाहन विशेष रूप से बनाए जाते हैं।
1: यहाँ की दो और बेहद रोचक बातें। पहली ये कि यहाँ के कुछ इलाकों में साल भर अक्सर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी गति लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज कि इंसान भी खड़ा नहीं हो सकता।
0: तो ये तो हुई पहली रोचक बात। अब आइए करते हैं दूसरी रोचक बात, क्या है?
1: दूसरी रोचक बात ये है कि यहाँ कई ऐसी घाटियां हैं जहाँ बर्फ बिल्कुल नहीं पड़ती। ये ड्राई वैलीज कहलाती हैं। वैज्ञानिक इसे प्रकृति का अनोखा करिश्मा मानते हैं कि जहाँ पर्वत पर चारों ओर बर्फ पड़ रही है, उन्हीं पर्वतों की घाटियों में भला बर्फ क्यों नहीं पड़ती।
0: विमलेश जी, हमारा उमंग प्रसारण शैक्षिक है।
1: जी,
0: तो जरा बच्चों की भी बात कर लें। एक प्रश्न है मेरा कि क्या अंटार्कटिका के शीत मरुस्थल में बच्चे स्कूल जाते हैं?
1: अजीत जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर है, यहाँ भी बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ कोई स्थायी जनसंख्या तो नहीं है, सिर्फ कुछ शोध केंद्र हैं जहाँ शोधकर्ता वैज्ञानिक और अनुसंधान केंद्र के कर्मचारियों और कुछ सैनिक अपने बच्चों के साथ रहते हैं। यहाँ के कुछ क्षेत्रों में विशेष स्कूल चलाए जाते हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं।
0: विमलेश जी, आपने कहा कि यहाँ अनुसंधान केंद्र है।
1: जी।

0: हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक यहाँ किस प्रकार का अनुसंधान करते हैं।
1: जी जी, यहाँ अनुसंधान के मुख्य विषय हैं जलवायु, शीत मरुस्थल के जीव और अंतरिक्ष इत्यादि।
0: जी
1: श्रोताओं, ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि शीत मरुस्थलों में भारतीय वैज्ञानिकों के दल ने भी 9 जनवरी 1982 को कदम रखा। भारत के अंटार्कटिक अभियान को ऑपरेशन गंगोत्री भी कहते हैं। बाद में यहाँ भारत द्वारा दक्षिण गंगोत्री के नाम से शोध केंद्र की स्थापना हुई।
0: तो अब विमलेश जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे,
1: जी
0: हमारे श्रोताओं की ओर से है ये। मेरा प्रश्न है कि अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं?
1: अजीत जी, यहाँ पाए जाने वाले जीवों में मुख्य हैं पेंगुइन, जो शानदार तैराक भी होते हैं, ध्रुवीय भालू, सील, व्हेल और कई समुद्री पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, जो यहाँ के कठोर वातावरण में भी जीवन को बनाए रखते हैं।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच तो यह है कि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, जीवन अपना रास्ता बना ही लेता है।
1: जी
0: यही तो जीवन की खूबसूरती है। तो
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। प्रश्न है,
0: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में भारतीय शोध केंद्र का नाम बताइए।
0: प्रश्न का उत्तर भेजने के लिए आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे ईमेल के पते पर भी हमें संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप NCERT की ध्वनि पाठ्य पुस्तकों को सुनना चाहते हैं तो आप इन्हें दीक्षा और NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
0: तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है लुई पाश्चर।
1: इस कार्यक्रम में महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उनकी उन खोजों के बारे में बताया गया है जिनके कारण खाद्य सुरक्षा और जीवाणुओं से होने वाले विभिन्न रोगों के प्रति चिकित्सा विज्ञान की अवधारणा में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था, इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अवेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज

0: एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेंबर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
0: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
2: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
0: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
3: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
4: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
3: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
4: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
3: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
5: चलो
6: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
2: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो चलो
7: ठहरो, लोहा गर्म हो रहा है।
5: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
2: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
2: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने

0: पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
1: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
1: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
2: लुई पाश्चर
3: सर,
2: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
3: कहिए सर।
2: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
3: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
2: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
1: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
1: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
1: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया, जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
0: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
1: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
0: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
1: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
0: तो फिर उन्होंने क्या किया?
1: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को

0: पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। दो सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
1: अरे आजा आजा आजा
2: हाँ,
1: इंजेक्शन लगा दूं?
2: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
3: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
2: अच्छा लाओ दिखाओ। हाँ अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
2: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
2: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
2: हाँ चार्ल्स।
3: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर, सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
2: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
2: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
2: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
5: मेरा अच्छा, बेटा।
2: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
3: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
3: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
3: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
0: इतना सब होने के बाद

0: वजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
1: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना,
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
1: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लुई पाश्चर और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो मुझे यानी अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: आप समाप्त कर रहे थे एनसीईआरटी द्वारा तैयार करता स्पॉन्सर्ड तालीमी प्रोग्राम उमंग। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।
7: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नेश होगा। खबरों का जरा सा इंतजार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबायली मुस्तफेदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इक्तसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निज़ाम में अहम तब्दीलियां की गई हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का हलफ दिलाया है। जवाबी पर्चों से मुतालिक इतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जाँच से मुतालिक CBSE के पोर्टल पर 6 जून तक का कामकाज जारी रहेगा। राजस्थान, गुजरात, मगरबी मध्य प्रदेश, ओडिशा और साहिली आंध्र प्रदेश में आज गरज चमक के साथ छींटा पड़ने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और खवातीन क्रिकेट में भारत और मेज़बान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात टॉन्टन में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाइख्तियार बनाने का एक ताकतवर वसीला है, क्योंकि ये लोगों को खुद कफील, बाशऊर और बासलाहियत बनाती है। आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप के कबायली मुस्तफेदीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि हकीकी तरक्की तभी हो सकती है जब

0: दर्द, दस्त वगैरह जैसी अलामत पाई जाती हैं तो वो खुद को अलग थलग कर ले और इसकी इत्तला मकामी सेहत हुकाम को दे। वजारत ने शहरियों से यह भी कहा है कि वो जानकारी, रहनुमाई और मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जनूबी अफ्रीका के नायब सदर पॉल मैशटाइल से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस मीटिंग के दौरान उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, MSMEs, डिजिटल और बुनियादी ढांचों के शोबों में मौकों के बारे में तबादला ख्याल किया। डॉक्टर शंकर ने दोनों मुल्कों के दरमियान तवील मुद्दती साझेदारी को मजीद मुस्तहकम करने से मुतालिक जनाब पॉल मैशटाइल के अजम की सताइश की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडरों ने इस बात से भी इत्तेफाक किया कि भारत और जनूबी अफ्रीका को बैन अलाक्वामी सतहों पर मिलकर काम करना चाहिए। भारत ने बीमारियों पर काबू पाने और उनकी रोकथाम के अफ्रीकी मरकजों को तिब्बी इमदाद की दूसरी खेप रवाना की है ताकि अफ्रीका में हिफ्जान सेहत में मदद दी जा सके और इबोला की रोकथाम की कोशिशों को मुस्तहकम बनाया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये खेप हिफाजती मास्क, तशखीस और करीबी नज़र रखने से मुतालिक आलात, दवाओं और तगजियाती मुतबादिल पर मुश्तमिल है। म्यांमार के सदर ओ मिन ऑंग लाइंग भारत के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर आज मुंबई पहुंचे। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने छत्रपति शिवाजी महाराज बैन अलाक्वामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल शोबे के वजीर जय कुमार रावल भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। खवातीन क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात इंग्लैंड में टॉन्टन के मकाम पर खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। भारत ने पहला मैच चेम्सफोर्ड में 38 रन से जबकि इंग्लैंड ने दूसरा मैच ब्रिस्टल में 26 रन से जीता था। हॉकी में जापान में काका मेगाहारा के मकाम पर 18 साल तक की उम्र के एशिया कप में पूल ए के अपने तीसरे मैच में भारत ने कोरिया को 1-4 से हरा दिया। भारतीय टीम के कप्तान केतन कुशवाहा ने खेल के 3rd और 36th मिनट में 2 किए। और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में स्कॉलरशिप स्कीमों के कबाइली मुस्तफिदीन से खिताब किया। उन्होंने सही मानों में तरक्की के लिए समाज के सभी तबकों की समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की पर जोर दिया। हुकूमत ने इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतालिक 2026 के तरमीमी जाब्तों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन जाब्तों के तहत रजिस्ट्रेशन के औकात और अपील से मुतालिक निज़ाम में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों को ओहदे का हलफ दिलाया है। जवाबी पर्चों से मुतालिक एतराजात की तस्दीक और इनकी दोबारा जांच से मुतालिक CBSE के पोर्टल पर 6 जून तक कामकाज जारी रहेगा। राजस्थान, गुजरात और मगरबी मध्य प्रदेश में और खवातीन क्रिकेट में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 बैन अलाक्वामी मैच आज रात टॉन्टन में खेला जाएगा। खबरें खत्म हुई।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu addresses tribal beneficiaries of scholarship schemes at Rashtrapati Bhavan, emphasizes social, economic and educational progress of all sections of society for true development. Government notifies Immigration and Foreigners Amendment Rules 2026 with key changes in registration timelines and the appeals mechanism. Chief Justice of India Justice Suryakant administers oath of office to 5 new judges of the Supreme Court. Orange alert issued for thunder squall conditions in Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh today. And in women's cricket, 3rd and final T20 international between India and hosts England to be played in Taunton tonight. President Draupadi Murmu has said that education is a powerful means of empowerment as it enables individuals to become self-reliant, aware and capable. Addressing the tribal beneficiaries of scholarship schemes in New Delhi today, the president said, true development can only be achieved when all sections of society progress socially, economically and educationally.
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की

0: प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपने जोड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: The president highlighted that the government scholarship schemes have transformed the lives of tribals by enabling access to higher education and new opportunities. President Murmu emphasized that India has no shortage of talent and stressed on the need to identify, nurture and provide the right platform for it to flourish.
0: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये

समीन आपको बताते चले, फिल्मी नग में आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए आखिर पे साधना सरगम को सुनते हैं, यह फिल्म दिल का क्या कसूर।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नकमे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।

फौजी भाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए इस नगमे से, जिसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। हसरत जयपुरी का लिखा नगमा है शंकर जयकिशन की मौसिकी में।

जी दोस्तों, प्रोग्राम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म प्रेम रोग से, आवाज़ सुरेश वाडकर की।

जी दोस्तों, आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में, यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का अगला नगमा सुनता है फिल्म पत्थर के शरम से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की। इस नगमे को तहरीर किया है मजरू सुल्तानपुरी ने और शुरू में डाला है लक्ष्मीकांत पहरलाल ने।

0: जी दोस्तों, फिल्मी नगमे जारी हैं। पहले वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
3: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
2: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
3: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
2: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
3: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
2: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
3: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
2: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
3: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
2: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
4: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं उनको बताते चलिए, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन। इसके अलावा आप हमें DTH या AIR लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रोग्राम का अगला नगमा हमने लिया है फिल्म दोस्ताना से। आवाज़ हैं किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आखिर पे अब आइए लता मंगेशकर को सुनता है। यह है फिल्म राजकुमार।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सफर के 3:50 हो रहे हैं। आइए अब उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सफर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं सईद मुशाहिद हुसैन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने समाज के सभी तबकों को बाइख्तियार बनाने में तालीम की अहमियत को किया उजागर। जम्मू कश्मीर को नशे की लानत से पाक करने के लिए हर सतह पर बराबर कोशिशें जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम और पद यात्राओं की कर रहे हैं क्यादत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तरक्याती अमल को दवाम बख्शने नीज लोगों की राहत रसानी का दोहराया आज़म। और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले हुज्जाज किराम का पहला काफिला श्रीनगर वारिद। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम आवाम के मुख्तलिफ तबकों को बाइख्तियार बनाने का एक अहम जरिया है, क्योंकि तालीम के जरिए से ही अफराद खुद इनसार और बेदार होने के साथ साथ सलाहियत साज भी बन जाते हैं। नई दिल्ली में आज स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफिदीन से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि सही तरक्की का मकसद तभी हासिल किया जा सकता है जब समाज के सभी तबके समाजी इकतसादी और तालीमी एतबार से तरक्की करें। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कॉलरशिप स्कीमों की बदौलत कबायली तबके के मैयार हयात में मुस्बत तब्दीली आई है।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता था। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जज साहिबान को ओहदे का हलफ दिलाया। इन जज साहिबान में जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और सीनियर एडवोकेट वी मोहन्ना शामिल है। जम्मू कश्मीर को नशे की लानत से पाक करने के लिए जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मंशियात मुखालिफ सरगर्मियां शदोमत से जारी है। एक तरफ मंशियात से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ ड्रग स्मगलरों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए भी कार्रवाइयां जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रखे हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर को इस बिद्दत से छुटकारा दिलाने के लिए पुरअज़म हैं। अभियान की शुरुआत के मौके पर उन्होंने मंशियात के खिलाफ एक वाज पैगाम में कहा,
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस।

0: कार्ड, आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा। और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: समाजी सतह पर मंशियात के खिलाफ दरकार इकदाम के बारे में वादी के एक गुलकार एजाज अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नौजवानों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अपने फ्यूचर, अपने घर बार को बचाना चाहते हो, अपने मोहल्ले की इज्जत की लाज रखना चाहते हो, तो कम से कम इस लानत से दूर रहो, क्योंकि ये जो बला है, आदमी को लगता है कि मैं ड्रग पी रहा हूं या खा रहा हूं, मगर दरअसल ये ड्रग उस आदमी को ही खा रहा है। इसको लगता है कि मैंने एक दाम किया, मैं परी हूं, मैं जनरल हूं, मगर ये सब धोखा है। जवानी भी खत्म, पैसा भी खत्म और सबसे बसा है कि घर बार खत्म हो जाता है। इसलिए कि ये एक ऐसी बला है कि इसका जितना भी चाहे बच्चों को दूर रहना चाहिए।
1: इस दौरान रवां महीने की 5 तारीख को गांधरबल में मंशियात मुखालिफ पद यात्रा का अहतमाम किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली जाने वाली इस पद यात्रा में सिविल सोसाइटी मेंबरान, ताजरों, मजहबी स्कॉलरों और आम शहरियों के अलावा जिंदगी के दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत मुतवक्का है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने जिला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके पद यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मंशियात के खिलाफ अपना रद्दअमल जाहिर करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तेलंगाना के स्टेटहुड दिन के मौके पर तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने दुआ की कि ये रियासत आने वाले वक्त में तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलों को छुए। उन्होंने वहां के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासी हलके के MLA कुलदीप राज दुबे ने आज श्रीनगर में वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की और अपने हलके के तरक्याती मामलात और लोगों के मसाइल उनकी नोटिस में लाए। वज़ीर-ए-आला ने उन्हें गौर से सुना और यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मामला तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती अमल को दवाम बख्शने नीज लोगों की राहत रसानी के लिए वादाबंद है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले हुजाज किराम की सऊदी अरब से वापसी का सिलसिला आज से शुरू हुआ और आज 144 हुजाज पर मुश्तमिल काफिला एक परवाज़ के जरिए से श्रीनगर हवाई अड्डे पर पहुंचा। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने इन हिजाज का इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के CEO डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि कल भी एक परवाज़ के जरिए से 145 हुजाज श्रीनगर पहुँच रहे हैं। इंतजामिया ने हुजाज की वापसी के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल किए हैं। वाज़ह रहे कि हज कमेटी के जरिए इस साल लगभग 4,600 हुजाज ने हज का फरीजा अंजाम दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। एम्बुलेंस गाड़ी को तिबी निगदाश्त के शोबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। वक्त की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किया जाए। नीज़ एम्बुलेंस गाड़ियों को हर तरह की जदीद तबी सहूलियात से लैस किया जाए। इस ताल्लुक से कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रोफेसर नज़ीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: ज़रूरी है एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए। जब भी एम्बुलेंस चले, जहां से भी चले, चाहे वह साइन कर बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जब रोड्स बनते हैं तो उस रोड पर एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक VIP मूवमेंट होती है, उनको जगह हर जगह देते हैं, इसी तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह जगह देना चाहिए, कहीं ट्रैफिक जामों में फंसना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मुझे लग रहा है लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत इजी बनाई जाए।
1: मरकज में NDA हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं। मरकजी सरकार ने इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह व बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिबी निगदाश्त की मयारी सहूलियत हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक शहरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
4: मेरा नाम सईद तनवीरिया, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के निलसर कंडी का रहने वाला हूं। हमें ये कहना था कि NDA सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का, जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा, खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं, उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगियां बची है, जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था मुमकिन है वो न बच सकती, लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आई दा पहाड़ी प्रोग्राम केन के मैं हाँ तुस्ता मेज़बान जहांगीर अहमद खान अपने तमाम सुनने वाले को प्यार खलूस तज़ीम नाल अस्सलाम वालेकुम अर्ज करदा ता अज दी इस महफिल भी तुसा सारे दा खैर मकदम करदा। सामीन उम्मीद करदा कि तुसे सारे बखरवाफियत हो सो और हमेशा नालों अज भी अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम बड़े शौक नाल सुन रहे हो सो। सामीन रब दी बनाई दी इस कायनात बिच इंसान को अशरफुल मखलूकात दा दर्जा हासिल है और इंसान को बेशुमार खसलतां भी अता कीती दीन। सामीन इंसान दी असल खसलतां बिच मुझ सारी चीज़ें दीन, मसलन सच्चाई, दयानतदारी, वफादारी, खुश इखलाकी, हमदर्दी और वक्त दी पाबंदी वगैरह। सामीन हर शख्स बिच सारी सिफात नहीं हो सकतियां, फिर भी जड़ी खूबी या अच्छाई इंसान बिच पाई गिंदी है इसको इसी ना नाल लोग याद कर दिन। मसलन वफा करने वाले को वफादार, लोका नल नरमी और मोहब्बत नल पेश आने वाले को खुश इखलाक आखदिन। इसी तरह रुपए पैसे को सोच समझ कर ज़रूरत के मुताबिक खर्च करने वाले को किफ़ायत शार आखदिन। सामीन अपने रुपए पैसे की बचत करना एक असल आदत है और ज़्यादातर लोगों बिच ये आदत पाई गिंदी है। सामीन रुपए पैसे की बचत के फायदों तो हर कोई बाखूबी वाकिफ है, फिर भी जे लोगों का घाटा नहीं जड़े बेवजह अपने रुपए पैसों को फजूल खर्च कर दें। फजूल खर्ची की आदत उन्हां लोगों बिच ज़्यादा होंदी है जिड़े दुयां अगै ठाठ बाट नाल पेश हिंदन। इजे लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की नज़रों बिच अपनी अजमत

0: खर्च करना चाहिए। इसी वास्ते बुजुर्गों का आखना है कि चादर दहक के ही पैर फैलने चाहिए। सामिन कुछ लोग बचत करने वालों को बखील या कंजूस आखते हैं। बचत करना असल आदत है जबकि बखील या कंजूस होना मंदी आदत है। बखीली एक ऐब है। बखील इंसान खर्च करने तो डरता है। बखील इंसान को समाज में हकारत की नज़र नाल देखता है। बचत करने वाला जरूरी कमत है खर्च करने तो नहीं डरता मगर फजूल अखराजात तय परहेज करता है। सामिन फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भरा है और जड़े लोग फजूल खर्ची नहीं करते उन्हें को रब पसंद करता है। तो सामिन प्रोग्राम बिच अगर पेश है तो वास्ते कलाम शायर तो कलाम शायर सिलसिले के तहत सुनते हैं निदा काजमी को उनका कलाम।
1: तो सारे की नज़र एक गज़ल कर रही हूँ, मतला अर्ज़ है। रोंदे तोंदे जारा दिखे लखा दिखे तकदीरां वाले, रोंदे तोंदे जारा दिखे लखा दिखे तकदीरां वाले, बिच मेलां दे दिखे भिखारी राजुलदे दिखे जागीरां वाले। ओ यूसुफ दा हुसन भी दिखिया दिखिया सबर याकूब दा भी, ओ यूसुफ दा हुसन भी दिखिया दिखिया सबर याकूब दा भी, जो सबर हुसन नू बदल छुड़न दिखे उजे तस्वीरां वाले। ओ मिठे मिठे बोल सुनावन कोल फंडी ता आ बैठे, ओ मिठे मिठे बोल सुनावन कोल फंडी ता आ बैठे, चुप चपीते जड़े दुनिया लुट्टन दिखे उजे तदबीरां वाले। ओ दुखा नालू डुलदी अख जद अखा नाल आ टकरी, ओ दुखा नालू डुलदी अख जद अखा नाल आ टकरी, जड़े अस्ते अस्ते दिल चीर छोड़न दिखे उजे कई तीरां वाले। ओ खैबर बिच जद तलवार चली जबरील दा नारा आन लगा, ओ खैबर बिच जद तलवार चली जबरील दा नारा आन लगा, जो जिमी जमन अला छोड़न दिखे उजे शमशीरां वाले। ना डारी वेले ओ नाल असे ना दम्मे वेले जड़े दिखे कदे, ना डारी वेले ओ नाल असे ना दम्मे वेले जड़े दिखे कदे, जड़े उड़दे पंछी कैद करन दिखे उजे जंजीरां वाले। जान छिड़कते दिखे लोकी कोल कमांदे भी दिख छोड़े, जान छिड़कते दिखे लोकी कोल कमांदे भी दिख छोड़े, जो नींदरा सार त्यारे फेरन दिखे उजे अमशीरां वाले, रोंदे तोंदे जारा दिखे लखा दिखे तकदीरां वाले। तो सारे की नज़र एक गज़ल करने जा रही हाँ। गज़ल का मतला कुछ इस तरह नाल आ। उस दुखियारी का दुखड़ा कैनका कस कौन सुनावा, उस दुखियारी का दुखड़ा कैनका कस कौन सुनावा, कस को उसका मुर्शद आखा कस को शाह बनावा। आ गच्छा जे एक वारी तो खुशियां दे पजलावा, आ गच्छा जे एक वारी तो खुशियां दे पजलावा, रल मिल सारे दुख बंडा तो ईदा कट्ठे मनावा। सज गेंदी सी चौगी माड़ी बस गेंदा सी बेड़ा, सज गेंदी सी चौगी माड़ी बस गेंदा सी बेड़ा, एक वारी तू मुर्शद मुड़ा चुल्ली अग जलावा। ओ सी आंदा बस्ती लांदा लांदा सी ओ बारा, ओ सी आंदा बस्ती लांदा लांदा सी ओ बारा, कुथू आना ओ खुशियां वापस ओ मेला कुथा सजावा। नी पुलदी ओ बोली तूड़ी नी पुलदा ओ आसा, नी पुलदी ओ बोली तूड़ी नी पुलदा ओ आसा, नी पुलदा तू चन्ना मुको कस कस तू मैं छुपावा। ओ आखरी कड़ियां फजर दे वेले पेरा तू कैन मथे, ओ आखरी कड़ियां फजर दे वेले पेरा तू कैन मथे, रज्जी ना मैं दिख दिख तुगो नजरा को था टकावा। आखरी शेर, ओ टके भी मैं दिखाइया ओ बाग भी अजा खाली हैं, ओ टके भी मैं दिखाइया ओ बाग भी अजा खाली हैं, दो जगता तूने दिसता दस आसा कस्तियां लावा, उस दुखियारी दा दुखड़ा कैनका कस कौन सुनावा। दुई गज़ल सारिया दी नज़र करने जा रही हाँ। गज़ल दा मतला अर्जा, ओलिया ओलिया छुपते लुकते उन अखियां बिच ओ चा दिसी, ओलिया ओलिया छुपते लुकते उन अखियां बिच ओ चा दिसी, जिड़ी कैंजुल सी उन्हां देसा तोड़े अज जिंदे मुगो ओ रा दिसी, बिच परदेसा जद रुलियां आका आर बुए जड डुलियां आका, बिच परदेसा जद रुलियां आका आर बुए जड डुलियां आका, तुड़कीते ओ फैसले चन्ना मुगो उस वेले दी दुआ दिसी, उन देसा जद जाके बसियां आर वेले जद खुल के असियां, उन देसा जद जाके बसियां आर वेले जद खुल के असियां, बिन

0: सभी ना पहाड़ी प्रोग्राम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4:20 हो रहे हैं। समाप्त करें पहाड़ी खबरें।
1: आदाब। ए आकाशवाणी द श्रीनगर स्टेशन 4:20 हो गए। रेहाना अजीज को खबरनामा सुनो। पहले खास खास खबरों पर एक नज़र। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुन समाज दया सारिया तबकियां को बाख्तियार बढ़ाए वास्ते तालीम दी अहमियत को कीता उजागर। जम्मू कश्मीर को नशे दी लानत को पाक करने वास्ते हर सतह पर हर तरह दया कोशिशां जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्रामा और पदयात्रा दी कर रहे क्यादत। वसीरे आला उमर अब्दुल्ला सुन तरक्याती अमल को दुआम बख्शे और लोगों की राहत रसानी दा दोहराया अजम। और जम्मू कश्मीर नाल तालक रखे वाले आजीज साहिबान दा पहला काफिला श्रीनगर पहुंच गया। हुण पेशन खबरां तफसील नाल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सुन आख्या कि तालीम आवाम दे मुख्तलिफ तबकियां को बाख्तियार बढ़ाए दा एक अहम जरिया, क्योंकि तालीम के जरिए ही लोग खुद इनहसार और बेदार होए दे नाल नाल सलाहियत सास भी बन सकते हैं। नवी दिल्ली बिच आज स्कॉलरशिप स्कीम दे कबायली मुस्तफेदीन को खिताब करदे होया सदर जमहूरिया सुन आख्या कि सही तरक्की दा मकसद ताई हासिल कीता जुल सकता जद समाज दे सारिया तबकियां को इक्तसादी और तालीमी एतबार नाल तरक्की मिल सकसी। उन्होंने सुना कि सरकार की तरफों शुरू की गई स्कॉलरशिप स्कीम की वजह नाल ही कबायली तबके के मियारी जिंदगी बिच बांधी तब्दीली आई है।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्याकांत सुन आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नवे जज साहिबान को अहदे दा हलफ दवा लिया। इन्होंने जज साहिबान बिच जस्टिस शील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजू सचदेवा, जस्टिस अरुण पिल्लई और सीनियर एडवोकेट वी मोहाना शामिल हैं। जम्मू कश्मीर को नशे की लानत को पाक करने वास्ते जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मनशियात मुखालफ सरगर्मियां शादोमद नाल जारी हैं। एक ही तरफों मनशियात के बारे बेदारी प्रोग्रामा का इनकाद भी जारी है और दूई तरफों ड्रग्स समगलरों को कैफरे किरदार धोनी बचाए वास्ते भी कार्रवाइया चल रही। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मनशियात मुखालफ कार्रवाइयों पर नज़र रखते हैं और जम्मू कश्मीर को इस विद्युत कुल छुटकारा दवाले वास्ते पुरअजम हैं। अभियान की शुरुआत के मौके पर उन्होंने मनशियात के खिलाफ एक वाजिया पैगाम बिच इस तरह आख्या।
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
1: समाजी सतह तक मनशियात के खिलाफ बकार इकदाम के बारे में वादी के गुलकार एजाज अहमद खान सुन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर नाल गल्लां करदे होया कुछ इस तरह आख्या।
4: नौजवानों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अपने फ्यूचर अपने घर बार को बचाना चाहता हूँ अपने

0: की इज्जत की लाज रखना चाहते हो तो कम से कम इस लानत से दूर रहो, क्योंकि ये जो बला है आदमी को लगता है कि मैं ड्रग पी रहा हूँ या खा रहा हूँ, मगर दरअसल ये ड्रग उस आदमी को ही खा रहा है। इसको लगता है कि मैंने एक दाम किया, मैं परी हूं, मैं जनरल, मगर ये सब धोखा है। जवानी भी खत्म, पैसा भी खत्म, और सबसे बसा है कि घर बार खत्म हो जाता है। इसलिए कि ये एक ऐसी बला है कि इससे जितना भी चाहे बच्चों को दूर रहना चाहिए।
1: इसी दौरान इस महीने की 5 तारीख को गांधरबल बिच मनशियात मुखालिफ पद यात्रा का अहतमाम किए जुल रहा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत बिच घड़े गच्छे वाली इस पद यात्रा बिच सिविल सोसाइटी मैंबर, ताजर, मजहबी स्कालर और आम शहरियों के अलावा जिंदगी के बाकी तबकों नाल तालक रखे वाले नफरों की शिरकत की उम्मीद है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतन किशोर सुन जिला अफसर की एक मीटिंग सदी और पद यात्रा वास्ते किए जुल रहे इंतजाम का जायजा किया। उन्होंने सुन लोगों को अपील की कि इस बिच बद बद का ऐसा कहन और मनशियात के खिलाफ अपना रद्दअमल जाहिर कर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन तेलंगाना के स्टेटहुड के त्याड़े के मौके पर तेलंगाना के लोगों को मुबारकबाद दी। अपने पैगाम में उन्होंने सुन दुआ की कि रियासत आए वाले वक्त में तरक्की और खुशहाली दी नवीं मंजिलों तोड़ी पहुंच सी। उन्होंने सुन उतों के लोगों वास्ते नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। रियासती हल्के के MLA कुलदीप राज दोबे सुन अज श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला नाल मुलाकात की और अपने हल्के के तरक्याती मामलों और लोगों दिया मुश्किलों और मसलों उनको उनकी नोटिस में आंदा। वजीर आला सुन उन्हों को गौर नाल सुनिया और यकीन दुआ लिख के चाहे गया सारे मामलों को तरजीह बुनियादों ताल किए गए। वजीर आला सुन मजीद आख्या कि मौजूदा हुकूमत तरक्याती अमल को दुआम बख्शे और लोगों की राहत रसानी वास्ते वादा बनदा। जम्मू कश्मीर नाल तालक रखे वाले हाजी साहिबान दे सऊदी अरब तो वापसी का सिलसिला अज तो शुरू होया और अज 144 हाजी साहिबान उपर मुश्तमिल एक काफिला उडारी के जरिए श्रीनगर हवाई अड्डे तक पहुंचा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके मशीर नासिर असलमानी सुन इन्हों हजाज ग्राम का इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी के CEO डॉक्टर शजात अहमद कुरैशी सुन आकाश शवानी न्यूज श्रीनगर नाल गल्लां करते हुए आख्या कि कल भी एक परवाज के जरिए 145 हाजी साहिबान श्रीनगर पहुंच रहे। इंतजामिया सुन उजाज किराम की वापसी के सिलसिले में तमाम इंतजाम पूरे किए गए। वाजिया रवे कि आज कमेटी के जरिए इस साल लगभग 46,000 उजाज किराम का हज का फरीजा अंजाम दिता। एक खबर तुसी आकाशवाणी श्रीनगर तो सुन रहे हो। खबर तुसी आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH उपर भी सुन सकते हो। एम्बूलेंस गड्डियां को तिबी निगहदाश्त के शोबे बिच लका दी आडी दी हैसीयत हासिल है। वक्त की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर बिच एम्बूलेंस दा रेडोवर कायम किए गच्छा और एम्बूलेंस गड्डियां को हर तरह की नवी सहूलत नाल लैस किए जुला। इस तालक नाल कैंसर सोसाइटी आफ कश्मीर श्रीनगर के मेडिकल सुपरिनटेंडेंट और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रोफेसर नज़ीर अहमद खान सुन आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल्लां करदे होया इस तरह आख्या।
2: जरूरी है, एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए, जब भी एम्बुलेंस चले जहां से भी चले, चाहे वो साइनगर बजाए या ना बजाए, उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है, उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है, तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है, नहीं जगह देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए, जब रोड बनते हैं तो उस रोड पे एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक VIP मूवमेंट होती है, उनको जगह हर जगह देते हैं, तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह जगह देना चाहिए, कहीं ट्रैफिक जामों में फंसना नहीं चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मुझे लग रहा है लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत इजी बनाई जाए।
1: मरकज बिच NDA हुकूमत के 12 साल पूरे हो गए। मरकजी सरकार सुन इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत बिच आम लोगों की फलाह व बहबूद वास्ते कई स्कीम शुरू की, जिन्हां विच आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क विच बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम को फायदा हासिल कर तबी निगहदाश्त दियां सहूलतां हासिल कर रहे। इस बारे विच एक शहरी सुना आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर नाल गल्लां करदे होया इस तरह आख्या।
3: میرا نام سید تنویر گیلانی ہے، میں ڈسٹرکٹ بارہمولہ کے نلسر کنڈی کا رہنے والا ہوں۔ ہمیں یہ کہنا تھا کہ این ڈی اے سرکار کا ہمیں تہ دل سے شکر گزار ہونا چاہیے، خاص کر مودی صاحب کا، جس نے ہمارے لیے اتنا کچھ سوچا، خاص کر غریب طبقے کا، جو بلو پیرامیٹری کے لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں مودی صاحب نے بہت کچھ اچھا سوچا ہے۔ جیسے کہ ان میں سے ایک سکیم آتی ہے گولڈن کارڈ، گولڈن کارڈ سے ایسے کئی زندگیاں بچی ہے جن کے پاس گولڈن کارڈ نہ تھا، ممکن ہے وہ نہ بچ سکتی، لیکن جب سے گولڈن کارڈ آیا ہے مودی صاحب نے جو لانچ کیا تھا، اس سے کئی زندگیاں بچی ہے، اور ہم مودی صاحب کا اس

0: ये तहे दिल से शुक्रगुजार है, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है।
1: चीफ सैक्रटरी अटल डुल्लु श्रीनगर में आज कौमी आयुष्मान मिशन के तहत जे एंड के आयुष सोसायटी की गवर्निंग बाडी की एक मीटिंग के दौरान मिशन के सालाना मनसूबे का जायजा कहन का इसको मंजूर किया। चीफ सैक्रटरी सुन जम्मू कश्मीर को मुल्क का एक बेहतरीन वेलनेस टूरिज्म मकाम दुआले वास्ते हर तरह के इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिता। जम्मू कश्मीर अकैडमी आफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज के एहतमाम अज आकाशवाणी श्रीनगर के आडिटोरियम में आकाशवाणी श्रीनगर के सबका प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और नामवर कलमकार डॉक्टर सतीश विमल नाल मुलाकात की। एक नशस्त मुनक्कद हुई जिस विच पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कलमकार और अदीब प्रोफेसर शफी शोक, आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह गुरबिंदर सिंह, कल्चरल अकैडमी के एडिशनल सैकटरी अदील सलीम के अलावा कई बाकी अहम शख्सियात और जिंदगी दिया मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र नाल तलक रखे वाले लोगों सुन शिरकत की। ए आसा खबरनामा 5:50 पर गोजरी खबर नशर होसन असंको दियो इजाजत। खुदा हाफिज।
2: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय समाप्त करें आज का पंजाबी प्रोग्राम।

0: मात पिता हम बारक
1: बारक
0: तेरे,
1: तेरे
0: तुमरी कृपा में सूद गने रे,
1: सूगनेरे
0: कोई ना जाने तुमरा
1: तुमरा।
0: अंत, ऊचे ते ऊचा भगवान। ये चीज़ा जड़िया हैं, अगर असी धर्म की विद्या वेखीए तो साढ़े तो ये गलतियां नहीं होनगियां,
1: जी
0: क्योंकि समाज जड़ा साड़ा देखो देखी नाल खराब हो गया है, जिस करके साढ़े समाज में ये बितां आ बड़िया हैं,
1: बिल्कुल
0: जिस करके असी इस समाज में ऐसे बंदे हैं जिहड़े समाज में कोशिश करते हैं सुधारने की, सुधार आवे समाज नूं, किते किते समाज सुधार भी हो गया,
1: जी
0: किते धार्मिक जिहड़ियां साड़ियां स्कूल या मिशनरी कॉलेज ने
1: जी जी
0: या
1: जी
0: गुरमत विद्यालय कॉलेज ने
1: बिल्कुल
0: या बाकी कॉलेज ने, वो इतनी मेहनत अनथक मेहनत कर रहे ने ते कि साढ़े समाज के बच्चे सोहने एजुकेशन, सोहनिया तैलीमां, सोहनिया कुर्सियां, सोहने आफिसर, सोहने डॉक्टर, सोहने इंजीनियर बनन, ताकि साड़ी समाज का सुधार हो सके।
1: बिल्कुल कमल नैन सिंह जी, अज तुसी साडे प्रोग्राम दे विच आए हो ते हुण इस वेले तुहानू ते साडे श्रोतियां नू असी सुणांदे हां ये प्यारा जिहा गीत।

अस्सलाम वालेकुम सामीन, अज को गोजरी प्रोग्राम लेके हम थारी खिदमत में हाजिर हाँ। उम्मीद करा कि तुम बिल्कुल खैर आफियत नाल वेंगा और अपनो मनपसंद गोजरी प्रोग्राम सुनता वेंगा। सामीन, रेडियो कश्मीर श्रीनगर साल 1948 में कायम हुआ। मौजूदा जनरल पोस्ट ऑफिस दशहर कश्मीर पार्क के नज़दीक एक इमारत में नशरियात शुरू की। बाद में मौजूदा असल इमारत जीरो ब्रिज ते नवाए सुबू कम्पलैक्स कोल बनाई गई। इस इमारत को समय की बुनियाद 2 जून 1962 में जम्मू कश्मीर का उस वक्त का वज़ीर आज़म बख्शी गुलाम अहमद ने रखी। रेडियो नशरियात माजी में समाजी ते तालीमी बेदारी को वाहिद जरियो रही हैं ते आज 21वीं सदी में भी इसका रोल ना भुलाया नहीं जा सकतो। रेडियो की आम आदमी तक पहुँचना देखता इसना टीवी ते सारा ज़राए अबलाग को बड़ो पाई भी क्यों जाए। रेडियो ने इतना साला में रियासत की पल पल बदलती माशरती जिंदगी ना महसूस की है। कई यादगार तारीखी वाक्यात ना सदाबंद सूरत में महफूज रखे हुआ है। रेडियो पैगाम रसानी तफरी के नाल नाल जम्मू कश्मीर की तहजीब व सकाफत को तर्जुमान ते अलमबरदार है। रेडियो के जरिए अपनी गल दूजा तक पहुँचाने वास्ते इत हर शोबा जिंदगी ना ताल्लुक रखने वाला तशरीफ लियाता रहे, जिनमें सियासतदान, समाजी कारकुन, अफसर शाही, आलम, दानश्वर, शायर, अदीब, फनकार, जमींदार ते आम आदमी भी शामिल हैं। बरसगीर की तकसीम के नाल ही हर कौम ते बरादरी ने अपना अदबी सरमाया ते तहजीब व सकाफत ना तकसीम का नुकसान ते बचाण वास्ते इसकी साम संभाल वास्ते कोशिश शुरू की। समीन गल आगे और भी होंगी। प्रोग्राम का शुरू में पेश है यू नगमो।

जी सामीन, तब नगमो सुन रहा था, गल हो रही थी आल इंडिया रेडियो श्रीनगर की। सामीन, बरसगीर की तकसीम के नाल ही हर कौम ते बरादरी ने अपना अदबी सरमायो ते तहजीब सकाफत का तकसीम को नुकसान ते बचाण वास्ते इसकी साम संभाल वास्ते कोशिश शुरू की। गोजरी जबान भी तकसीम का दर्द में पली है। गोजरी का वे कलमकार मुकर्रर ते रहबर जा गोजरी की मजबूत बुनियाद रखने बारे अजा सिर जोड़न में ही था कि मुल्क तकसीम होने ना खिंड पोट हो गयो। फिर भी हिम्मत निहारी, जित बना के उस पार रहने वाला ने जबान की लाज रखी। इत रियासत का इस सामा गोजरी को बूटो त्याड़ा ते त्याड़ा जवान होतो गयो और नवा फुल डोडा कटतो रहो, नाल नाल कोम्फरो होतो गयो। इसना कोम्फरो बनाने में नशरियाती इदारा का रोल ना किसी भी जमाने में भुलायो नहीं जा सकतो। 20वीं सदी ना सुजाग रुतकी सदी भी क्यों जाए। इस सदी में दुनिया की हर गुठ में बसने वाला ने अपनी विरासत नाल जुड़िया वर्षा की टूण लोड शुरू की ते इसना साम संभाल के रखने वाले संजीदगी ना काम शुरू कियो। अजमत रफ्ता की बहाली ने साम संभाल के सफर में रेडियो ने अहम रोल अदा कियो। रेडियो की टेप्स लाइब्रेरी ते सीडी लाइब्रेरी इसको सबूत हैं। इन लाइब्रेरियां में अहम शख्सियात नाल बैठक, इंटरव्यू ते शहरी ते अदबी तखलीकात सदाबंद वो सूरत में मौजूद हैं। समीन, आगे पेश है नगमों।

जी शामीन, तम नगमो सुन रहा था। शामीन, रेडियो कोल जो तारीखी रिकॉर्ड है वो किसी दूजा इदारा या जरिया का मुकाबला में ज़्यादा काबिल एतबार है, क्योंकि सारो रिकॉर्ड सदाबंद सूरत में है। जो कुछ किसी मेज़बान ने रिकॉर्ड करायो वो इसकी ज़बान ते अदा किया व लफ्ज़ा में मिनो अन मौजूद है, जो तहकीक का तालब इलम वास्ते मुझ मददगार है। मरहूम कैसर कलंदर आल इंडिया रेडियो में डिप्टी डायरेक्टर जनरल का अहदा पर रह के रिटायर हुआ है। वे पहला रेडियो कश्मीर श्रीनगर में रहे हैं। इस जमाना में इनका हाथ का लिखा हुआ प्रोग्राम रजिस्टर के मुताबिक ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर को गोजरी प्रोग्राम 16 अप्रैल 1969 ना शुरू हुआ। शुरू में 3 मिनट को प्रोग्राम था, बाद में गोजरी वास्ते 1 घंटा को नशरियाती वक्त मिलियो, जिसमें 50 मिनट प्रोग्राम ते 10 मिनट को गोजरी खबरों को बुलेटिन शामिल है। जी सामीन, आगे नगमो सुन लिया।

सामीन तम नगमा सुन रहा था गोजी प्रोग्राम ते गोजी नसर ने मौसीकी की तरक्की वास्ते खास काम किया है। शुरुआत में प्रोग्राम चलाने वास्ते पहला तो कुछ भी मौजूद नहीं था, फिर कहानीकारा अदीबा शायर मकाला नगारा ते फनकारा ने दावत दी लिखण वास्ते। गोजी में लिखण ते अपनी ही जबान में रिकॉर्ड करने को रुझान पैदा हुआ। लोग फरमाशी प्रोग्राम में अपनों ना ते अपनी पसंद को

नसीम पुंछी को इंटरव्यू, इकबाल अजीम चौधरी को इंटरव्यू, मोहम्मद शफी खटाना को इंटरव्यू, डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी का दो इंटरव्यू मौजूद हैं। इसके अलावा जड़ी शख्सियात इस वक्त हयात हैं उनका भी मुझ सारा इंटरव्यू हमारे को मौजूद हैं। मौसीकी माँ अज तक जितना भी फनकारा ने बाजाबता स्टूडियो माँ गीत नगमा रिकॉर्ड कराया हैं वे सारा मौजूद हैं। इन माँ मोहम्मद हुसैन मिरासी, गुलाम हुसैन मिरासी, अब्दुल मजीद जिंदादिल, बेगम जान, मोहम्मद जमान सैलानी, करतार चंद, कैलाश मेहरा, सुरेंद्र कौर, सीमा शर्मा, उपमा शर्मा, उषा सेठ, किशन समेलपुरी, महेंद्रजीत सिंघू, जगजीत सिंह जरवी, मोहम्मद इकबाल मलंगामी, शबनम अख्तर, शकीला तबसम, बशीर अहमद मस्ताना, तिलेक है नवी पीढ़ी की परवीन चौधरी, रजिया अशरफ, मोहम्मद रफ़ी वगैरह का गाया हुआ गीत मौजूद है। रेडियो दरों समाजी बेदारी को इस सिलसिलो बराबर जारी है। रेडियो के नाल नाल गोजरी जबान अदब की तरक्की ते समाज सुधार माँ दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर की गोजरी नशरियात को बड़ो अहम रोल है। दूरदर्शन को हफ्तावार कारवां प्रोग्राम नाजरीन की पहली पसंद है। ख़ास तौर पर सलामुद्दीन बजार साहब ते गुलाबुद्दीन तायर साहब की सरपरस्ती माँ इस प्रोग्राम में खासी तब्दील आई। नवा नवा शायर अदीब ते फनकार इस प्लेटफार्म ते मुतारफ हुआ। कई बड़ी शख्सियात ना मधु की योगी और सामीन के होता बराह रास्त नशस्त टेलीकास्ट होती रही हैं। इसके अलावा दूरदर्शन ने कई गुजर इलाका में जा के सकाफती प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और बाद में आके टेलीकास्ट हुआ। इस तरह मौसीकी की कई महफिल ते मुशायरा हुआ है। आम आदमी का मसाइल ते मुख्तलिफ मौजूआत पर प्रोग्राम होतो रहो है। दूरदर्शन की गोजरी नशरियात पर एक अलग ते प्रोग्राम करण की ज़रूरत है। सामीन आगे नगमो पेश है।

तुम नगमो सुन रहा था। इस नगमा के नाले आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुकर नायो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेज़बान शबीराम पुसवाल ना दियो इजाज़त। अच्छा जी, रब राखो।

0: समीन आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। 5:50 हो रहे हैं। अब गोजरी खबरों का बुलेटिन नाश्र होगा।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामो ले गए शाजिया चौधरी आजर। पहला एम खबरों की सुर्खी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने समाज का सारा तबका ना बा अख्तियार बनाने में तालीम की अहमियत का बारा में दस्यो। जम्मू कश्मीर नशा की लानत ते पाक करने वास्ते हर सतह पर कोशिश जारी। एल जी मनोज सिन्हा मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम और पद यात्रा की कर रहे हैं क्यादत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने तरक्याती अमल ना दुआम बख्शन ते लोगों ना राहत पहुंचाने को दोहरायो अजम। ते जम्मू कश्मीर ना तल्लुक रखन आला हाजियों को पहलो काफरो श्रीनगर पहुंचो। तफसील नाल खबर सुनो। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने क्यों है कि तालीम लोगों का मुख्तलिफ तबका ना बा अख्तियार बनाने को एक एम जरियो है, क्योंकि तालीम के जरिए ही लोग खुद मुख्तियार और बेदार होने के नाल नाल सलाहित साज भी बन जाएं। नई दिल्ली में आज स्कॉलरशिप स्कीम ते कबायली फायदों चाहन आला के नाल गल करता हुआ सदर जमहूरिया ने क्यों कि सही तरक्की को मकसद ता ही हासिल किया जा सके जब समाज का सारा तबका समाजी इकतसादी और तालीमी एतबार नाल तरक्की करें। उन्होंने क्यों कि सरकार की तरफ शुरू की गई स्कॉलरशिप स्कीम की बदौलत कबायली तबका का म्यारी जिंदगी में बेहतर तब्दीली आएगी।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: जम्मू कश्मीर ना नशा की लानत ते पाक करन वास्ते जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान के तहत मंशियात मुखालिफ सरगर्मी शदोमत नाल जारी है। एक तरफ मंशियात ते मुतलिक बेदारी प्रोग्राम को इनकाद कियो जा रहे हो और दूजी तरफ ड्रग स्मगलर करन आला न उनका अंजाम तक पहुंचाने वास्ते भी कार्रवाई जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर पर मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों पर नजर रखने लगा और वे जम्मू कश्मीर ना इस बिद्दत ते छुटकारो दुआने वास्ते पूरा जमे। अभियान की शुरुआत का मौका पर उन्होंने मंशियात के खिलाफ एक वाजे पैगाम क्यों
3: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारम्भ किया जाएगा।
1: समाजी सतह पर मंशियात के खिलाफ दरकार इकदामात का वारामा वादी का एक गुलकार एजाज अहमद खान ने आकाशवाणी श्रीनगर न्यूज के नाल गल करता हुआ क्यों
4: नौजवानों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर अपने फ्यूचर अपने घर बार को बचाना चाहते हो, अपने मोहल्ले की इज्जत की लाज रखना चाहते हो तो कम से कम इस लानत से दूर रहो, क्योंकि ये जो बला है आदमी को लगता है कि मैं ड्रग पी रहा हूं या खा रहा हूं, मगर दरअसल ये ड्रग उस आदमी को ही खा रहा है। इसको लगता है कि मैंने एक दाम किया, मैं परी हूं, मैं जनरल हूं, मगर ये सब धोखा है। जवानी भी खत्म, पैसा भी खत्म और सबसे मसला है कि घर बार खत्म हो जाता है। इसलिए कि ये एक ऐसी बला है कि इसका जितना भी चाहे बच्चों को दूर रहना चाहिए।
1: इस दौरान इस महीना की 5 ना गांधरबल में मंशियात मुखालिफ पद यात्रा को एहतमाम कियो जा रहे है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में कडी जाने आली इस पद यात्रा में सिविल सोसाइटी मेंबर, ताजर, मजहबी स्कॉलर और आम शहरियों के अलावा जिंदगी का दूजा तबका नाल तल्लुक रखन आला अफराद की शिरकत मुतवक्का है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतन किशोर ने जिला अफसरों की एक मीटिंग बुला गए पद यात्रा वास्ते किया जा रहे इंतजाम को जायजो लियो। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे इस बढ़ चढ़ गई सोली और मंशियात के खिलाफ

0: अपनो रद्दे अमल जाहिर करें। रियासी हलका का एमएलए कुलदीप राज दुबे ने आज श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के नाल मुलाकात की और अपना हलका का तरक्याती मामला और लोगों का मसला उनकी नोटिस में आणया। वजीर आला ने उन्हें गौर नार सुने और यकीन दुआयो कि चाया गया तमाम मामला तरजी बुनियादा पर हल किया जाएगा। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वजीर आला उमर अब्दुल्ला के नाम एक मकतूब मां कियो है कि जम्मू कश्मीर इस वक्त तारीख का एक नाजुक मरहलाते गुजर रहे हो है और वक्त की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर का सारा लीडर पार्टी वाबस्तगियां ते दूर हो गए इतफाक राय पैदा करके जम्मू कश्मीर का दरपेश चैलेंजर ना एक हो गए मरकजी सरकार के नाल चावे। उन्होंने कहो कि अगर लद्दाख का लीडर यूटी का मसला ना चाह गए मरकजी सरकार ते हल करवा सके तो जम्मू कश्मीर का लीडर इसको क्यों नहीं कर सकता। महबूबा मुफ्ती ने इस तरह का मकतूब कानून साज असेंबली में हिजब इख्तलाफ का लीडर सुनील शर्मा और प्रदेश कांग्रेस का सदर तारिक अहमद करा के ना भी लिखा और उन माँ भी इन लीडर न क्यों कि वे जम्मू कश्मीर को मामलों सही तनाजर में मरकजी सरकार के नार चाहें ताकि इन लोगों की तवक्को के मुताबिक वक्त पर हल कियो जा सके। जम्मू कश्मीर नाल तल्लुक रखने वाला हाजियों की सऊदी अरब ते वापसी को सिलसिलो आज ते शुरू होयो और आज 144 हाजियों पर मुश्तमिल काफलो एक परवाज के जरिए श्रीनगर हवाई अड्डा पर पहुंचो। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनका मशीर नासिर असलम वानी ने इन हाजियों को इस्तकबाल कियो। उन्होंने हाजियों के नाल गल करता वहां सफरी हज के दौरान उनका तजुर्बात और कावारा में जानकारी हासिल की। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी का सीईओ डॉक्टर शुजात अहमद कुरेशी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता क्यों कि कल भी एक प्रवास के जरिए 145 हाजी श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इंतजामिया ने हाजियों की वापसी का सिलसिला में तमाम इंतजाम मुकम्मल किया। वाजे रहे कि हज कमेटी के जरिए इस साल लगभग 4,600 हाजियों ने हज को फर्ज अंजाम दितो। ये खबर तम आकाशवाणी श्रीनगर ते सुन रहे हैं। खबर तम आकाशवाणी का मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एयर और डीटीएच पर भी सुन सकें। मरकज में एनडीए हुकूमत का 12 साल मुकम्मल होया है। मरकजी सरकार ने इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में आम लोगों की फलाह बहबूद वास्ते कई स्कीम शुरू की हैं जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरा मुल्क में बड़ा पैमाना पर लोग इस स्कीम ते फायदों चागे सेहत की मियारी सहूलत हासिल कर रहे हैं। इस बारा में एक शहरी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हूं क्यों।
1: मेरा नाम सईद तनवीरानी है। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के निलसर कंडी का रहने वाला हूं। हमें ये कहना था कि एनडीए सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का, जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगी बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था मुमकिन है वो न बच सकती, लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था उससे कई जिंदगी बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार है, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है।
0: एम्बुलेंस गड्डी ना सेहत का शोभा में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। वक्त की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में एम्बुलेंस कॉरिडोर कायम किया जाए तो एम्बुलेंस गड्डिया ना हर तरह की जदीद तिबी सहूलियतें लेस की जाए। इस ताल्लुक नाल कैंसर सोसाइटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर का मेडिकल सुपर इंटेंडेंट और कंसल्टेंट डॉक्टर प्रोफेसर नजीर अहमद खान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हुआ क्यों।
2: जरूरी है, एक तो लोगों में बेदारी होना चाहिए, जब भी एम्बुलेंस चले जहां से भी चले चाहे वो साइन कर बजाए या ना बजाए उसको जगह देनी चाहिए, क्योंकि कभी खाली एम्बुलेंस भी जाती है उसको पेशेंट कहीं से कहीं लाना होता है तो कभी लोग सोचते हैं कि शायद इसमें इमरजेंसी नहीं है नहीं जगह देते हैं, तो उसके लिए एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों के ध्यान में आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर इसको गवर्नमेंट भी एक ऐसी पॉलिसी बनाए जब रोड बनते हैं तो उस रोड पे एक लाइन होनी चाहिए, जिस तरह से एक वीआईपी मूवमेंट होती है उनको जगह हर जगह देते हैं तरह से एक एम्बुलेंस को भी हर जगह देना चाहिए, कहीं ट्रैफिक जामों में फंसना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, मुझे लग रहा है लोगों को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि एम्बुलेंस की मूवमेंट बहुत इजी बनाई जाए।
0: जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का एहतमाम नाल आज आकाशवाणी श्रीनगर का ऑडिटोरियम में आकाशवाणी श्रीनगर का साबिक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव और नामवर कलमकार डॉक्टर सतीश विमल के नाल मुलाकात की एक निशिस्त हुई जिसमें पद्मश्री अवार्ड याफ्ता कलमकार और अदीब प्रोफेसर शफी शोक, आकाशवाणी श्रीनगर का सरबरा गुरविंदर सिंह, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का मेम्बर डॉक्टर गुलाम नबी हलीम, कल्चर अकाडमी का एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम के अलावा कई दूजी अहम शख्सियात और जिंदगी का मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र नाल ताल्लुक रखने आला लोगों ने शिरकत की। ملک کا مختلف حصہ میں شدید گرمی پی لگی، اس دوران

0: भारतीय महकमा मौसमियात ने मुल्क में इस साल जून ते सितंबर के दौरान मामूल ते घट बदल होने की पेशनगोई की है। इं जम्मू कश्मीर खास तौर पर जम्मू खिता का अक्सर जिला में भी गर्मी की शिद्दत रोज बरोज बढ़ रही है। बढ़ती गर्मी के पेश नज़र लोगों ने कई एहतियाती तदबीर पर अमल करने की जरूरत है ताकि वे इसका मुजर असरात बच सकें। चीफ सेक्रेटरी अटल जिलू ने श्रीनगर में आज कौमी आयुष्मान मिशन के तहत जे एंड के आयुष सोसाइटी का गवर्निंग बॉडी की एक मीटिंग के दौरान मिशन का सालाना मंसूबा को जायजो ले गए, इसने मंजूर किया। इसके नाल ही गोजरी खबर खत्म हुई। आकाशवाणी श्रीनगर तू खबरों को अगलो बुलेटिन 6:05 पर कश्मीरी में नशर हुआगो। दियो इजाजत, रब रखो।
1: आकाशवाणी श्रीनगर, अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी खबरों का बुलेटिन नशर होगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% सीमांकन हो चुका है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
2: भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। ये वार्ता ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, दवा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर केंद्रित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन आज मुंबई पहुंचे। आज शाम लोकभवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। ये मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिन के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेव और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ लेन देन का रिकॉर्ड बनाया है।

0: इस उपलब्धि पर वित्तीय सेवा विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए धन्यवाद दिया। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश कादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव वाला वो FM 71.5 में खारसन पेट समय शुभ जित 5 मिनट सपित पेश खदमत प्रोग्राम गमी बाइन हिंद खतरा।

यह आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव वाला वो एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट समय शबजित 5 मिनट सपित पेश खुदमत प्रोग्राम गमी बाइन हिंद खतरा।

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم.

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समय को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं, हुजाज की वापसी का सिलसिला आज से शुरू हुआ। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कहरंगेज जारबारी और आंधिया, एक शख्स हलाक। जम्मू पुंछ शाहरा पर तेज रफ्तार गाड़ियां खतरे का मुजिब। और अनंतनाग जिले में आबपाशी सहूलियात गैर तसल्ली बख्श। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे?
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
8: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
7: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यहाँ। विटामिन ए छो सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
7: मगर यह है सठा द्रोग।
8: हाँ ना ना, सुई कमत मज मुशुक टेस्ट सुई बेहतर पोषण दिवान।
9: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंद प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पानो बाजरस में दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर राब्ता।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: अरे माँ देखो एक्सीडेंट।
12: रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
13: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
12: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
13: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
12: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
13: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
12: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
13: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
12: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा। हमें बस इंसानियत दिखानी है।
13: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
12: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सऊदी अरब से वापस आने वाले हुज्जाज किराम के पहले काफिले का श्रीनगर के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। पहली हज परवाज 144 आजमीन हज को लेकर श्रीनगर के एयरपोर्ट पर पहुंची, जिनमें 74 मर्द और 70 खवातीन शामिल थी। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने हुज्जाज किराम को मुबारकबाद पेश की और उनके फरीजा हज की कामयाब अदायगी पर खुशी का इजहार

किया। हुजैर से बातचीत के दौरान उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उनकी दुआएं और रूहानी तजुर्बात जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में अमन, खुशहाली और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बाइस खैर साबित होंगे। उन्होंने हुजाज किराम से सऊदी अरब में कयाम के दौरान फराहम की जाने वाली सहूलियात और वापसी के इंतजाम के बारे में भी दरियाफ्त किया और उनके लिए सेहत, खुशी और बरकतों भरी जिंदगी की दुआ की। समय आज फिर एक बार वादी के मुख्तलिफ इलाकों में भारी जालाबारी हुई और तेज आंधियां चली, जिसके नतीजे में मेवे बागात, धान की पनीरी और सब्जियों की फसल को खासा नुकसान पहुंचा, जबकि आंधियों के बायस दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचने की इतलात हैं। मौसूला इतलात के मुताबिक आज सपहर वादी के जिन इलाकों में मुसलसल 8-10

0: ली पांपुर गनिमन कंगन लंगेट राजवार लोलाब रामहाल खाग वयाम टंगबर्ग और पहलगाम के कुछ इलाके शामिल हैं। बताया जाता है कि जालाबारी इस कदर शदीद थी कि काश्तकार सीनाकूबी करते हुए नजर आए। वाजिर है कि पिछले 3 हफ्तों से वादी के मुतअद्दिद इलाकों में जालाबारी के बायस मेवे की फसल को गहरा नुकसान पहुंचा है, जबकि धान की पनीरी और सब्जी की फसल भी नुकसान ज्यादा हुई है। इधर अनंतनाग जिले के गांजीवाड़ा इलाके में आज तेज आंधी चलने के दौरान एक बड़ा दरख्त गिरने से एक शख्स जानबहक हुआ और उसकी तहलिया जख्मी हो गई। मुतवफी की शनाख्त मोहम्मद रफीक कजवाल के तौर पर हुई है, जबकि उसकी अहलिया जीएमसी अनंतनाग में जेर इलाज है। इतिलात के मुताबिक गांजीवाड़ा में सड़क के किनारे मौजूद एक दरख्त तेज हवाओं के बायस जड़ से उखड़कर गिर पड़ा, जिससे लाल चौक से जीएमसी अनंतनाग तक की सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त भी मुतासिर हुई। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर ने आज की जालाबारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। शहरबीन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत बिल्कुल बेहिस बैठी है और मालिकाने बागात की राहत रसाने के लिए बिल्कुल कोई इकदाम नहीं कर रही है। अगर जब तक कई बार इस्तदा की गई कि जालाबारी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए, लेकिन हुकूमत संजीदा इकदाम करने में गुरेज कर रही है।
1: सारे पिछले कई दिनों से लगातार हर दिन शाम 3 बजे 4 बजे के बाद हर इलाके में जालाबारी हो रही है, और ऐसी जालाबारी जो आज तक हमने नहीं देखी है। कयामत खैर जालाबारी हर डिस्ट्रिक्ट में रोजाना हो रही है। आज की बात अगर मैं अर्ज करूंगा, सलर इस्लामाबाद लीजिए, बड़गाम के बहुत सारे देहात लीजिए, हमारे गांधरबल के लार इलाका है, कंगन इलाका है, बांडीपोरा का इलाका है, और जनाब अली कश्मीर के हर एक इलाका इस वक्त इसे मुतासर हुआ है। ऐसी जालाबारी हुई है कि हम वहाँ कयामत बापा हो गई। फ्रूट ग्रोवर्स का ये साल भर की कमाई का के दिन है, भी चेरी हमारी हार्वेस्टिंग हो रही है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान एक तो चेरी को हो रहा है और हमारे एप्पल आर्चर्ड्स को हो रहा है, चाहे उसमें नाशपाती भी आती है बाकी इलाकों में। ये जबरदस्त पिछले कई दिनों से लगातार हर दिन शाम के वक्त या दोपहर के वक्त ऐसी जालाबारी हो रही है जो आज तक हमने नहीं देखी है। एक एक दाने का करीबन हमें कई दिन का 50 ग्राम वजन है, किसने का 100 ग्राम है वजन है, और 10 से 15 मिनट लगातार ये मुसलसल कई दिनों से जारी रही है। तो इस वजह से हमने पहले से गवर्नमेंट से इस्तदा की थी कि ये फ्रूट ग्रोवर्स यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें हमारा है, बैकबोन है इकोनॉमी कश्मीर की, इसके लिए यहाँ जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसके लिए हमें कुछ न कुछ इकदाम गवर्नमेंट उठाने चाहिए थे। हम मरकज की गवर्नमेंट से भी मिले, हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर मरकज में उससे भी मिले, यहाँ की गवर्नमेंट से भी मिले, मगर आज तक से भी वो सिर्फ बातें ही करते रहे, इसकी तरह कोई तवज्जो नहीं दी। वेदर बेस कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है, कोई कंपनसेशन का कोई ऐलान नहीं किया गया है, और किसी किस्म की कोई फ्रूट ग्रोवर्स या इस ट्रेड से ताल्लुक वाले भारत को कोई इमदाद नहीं दी गई है। सिर्फ जवानी जमा खर्च हुई है, हुकूमत गहरी नींद में सो गई है, और ये हमारा ये सेक्टर जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है बुरी तरह से मुतासर हुआ इस जालाबारी से। ये हमने बहुत पहले से कई सालों से अब गवर्नमेंट से इस्तदा कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से कश्मीर भी मुतासर हुआ है, या आंधी भी ऐसी आती है कि हमारे दरख्त उखड़ जाते हैं, या हमारी ऐसी जालाबारी जो हमने आज तक कभी नहीं देखी है, कभी हमारी रात के वक्त भी जालाबारी हो रही है। अभी हमारे चेरी का फसल है, हमारे फ्रूट का, आने वाले जो हमारे अर्ली वराइटीज है उनमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। ऐसी हमारे क्वालिटी फ्रूट जो शुपियान इलाके, पुलवामा इलाके में, कुलगाम इलाके में, हमारे हंदवाड़ा के इलाके में, हमारे रफियाबाद के इलाके में, या क्रीरी बेल्ट हमारा जो है वागुरा है, ये शेखपुरा है, टंगमर का बहुत बड़ा इलाका इसके मुतासर हुआ है। इसमें हमने गवर्नमेंट से इस्तदा की थी कि कंपनसेशन के लिए कोई इकदाम करें, कोई कंपनसेशन दे जिससे कोई राहत मिलेगी फ्रूट ग्रोवर्स को। इसमें हमने एक भी गवर्नमेंट से ये इस्तदा की कि ये जो नेट आता है एंटी हेल स्टॉर्म, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए लोगों को, हमारे फ्रूट ग्रोवर्स, ताकि हम ये प्रोटेक्ट करेंगे कि ये अगर दोबारा हल हेल स्टॉर्म हुआ, अभी हमारा सीजन चालू रहेगा, नवंबर तक पता नहीं तब तक कितनी बार जालाबारी हुई और हमारा कितना नुकसान होगा। तो इसकी तरफ भी गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी, न कोई कंपनसेशन का ऐलान किया, न कोई क्रॉप इंश्योरेंस या हेल्थ बेस्ड इंश्योरेंस कोई स्कीम का ऐलान किया गया।
0: अभी 2 हफ्ते पहले हमारे वजीर ज़राअत ने ऐलान किया था कि अगले 1.5-2 माह के अंदर जम्मू कश्मीर में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू की जाएगी, तो क्या आपको अब की बार कोई उम्मीद नजर आती है या नहीं?
1: हमें उम्मीद नजर दो महीने के बाद यहाँ हमारा सीजन तो एंड होगा ना, उसके बाद हमें ये इंश्योरेंस कवर किसके लिए आएगा, किस काम आएगा। तो हमने गवर्नमेंट से बहुत पहले कई सालों से, इस साल भी पिछले सालों से भी इस तरह की थी, या यहाँ कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे

0: हाँ अक्सर बेशतर इलाकों में जालाबारी होती है, फ्लूड को और उसका नुकसान हो रहा है। हम हजारों लोगों बल्कि लाखों लोगों को रोजगार फराहम करते हैं। इसके साथ हमारा हर एक फर्द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाबस्ता है इस फ्रूट हॉर्टिकल्चर सेक्टर की वजह से। हमारी बात की चाहे कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो या और कोई सेक्टर, इसी की बदौलत वो भी चलते हैं। जब हमारे फ्रूट गोल उसके 10 पैसे ज्यादा, वो अपने जेब में नहीं रखता है, वो बाजार में निकलता है और उसमें कुछ ना कुछ खर्च कर लेता है। जब यही इंडस्ट्री यही सेक्टर बैठ जाएगा तो हुकूमत को फौरी तौर इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, मगर अभी तक हमने नहीं देखा कोई हुकूमत का बस वादे कर रहे हैं और कोई अमली इकदाम अभी तक नहीं उठाया है।
1: जालाबारी से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाए, बात कर रहे थे कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर। इधर पीडीपी के सीनियर लीडर मंजूर अहमद वानी ने खाग तहसील के पोषकर दालवाश, नागबल, सरिश और दीगर कई देहात में आज की जालाबारी से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नुकसान की भरपाई के लिए हंगामी इकदाम किए जाएं। वरिष्ठ जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद यासीन पोसवाल ने आज पांपूर, त्राल और वादी के दीगर कई इलाकों में हुई जालाबारी पर तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को माकूल मुआवजा दिया जाए। इसी दौरान दिवर इंद्रबुग के लोहारपति इलाके से खबर मिली है कि वहां आज तेज आंधियां चलने से एक रिहायशी मकान की छत उड़ गई। बताया जाता है कि मुनीर अहमद लोहार नामी शख्स के मकान की छत तेज हवाओं की जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अब एक और खबर, श्री अमरनाथ जी यात्रा इस साल 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक जारी रहेगी। यात्रा के लिए जून के पहले हफ्ते यानी रवां हफ्ते से ही हिफाजती दस्तों की वादी आमद का सिलसिला शुरू हो रहा है। उधर यात्रा के लिए मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर्स मसलन मरकबानों, पालकी वालों, छोटे दुकानदारों और ऐसे दीगर अशखास की रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है और अभी शद्दमत से जारी है। इसी दौरान आज लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह ने सोनमर्ग का दौरा करके वहां सर्विस प्रोवाइडर्स में RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स की तकसीम शुरू की। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे रहीम रिजवान ने जब इनसे रजिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ पहलुओं की तफासील मालूम की तो उन्होंने जवाबन कहा,
2: देखिए श्री अमरनाथ की यात्रा को किस तरह से हम स्मूथ कर सकें, उनका जो भी पिलग्रिम यहाँ आते हैं उनको किस तरह से सहूलियत प्रोवाइड कर सकें, सर्विस प्रोवाइड कर सकें, तो उसमें लेबर डिपार्टमेंट को एक टास्क दिया गया है कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, चाहे वो पोनी वालाज हैं, पिट्ठू वालाज हैं, गांधी वालाज हैं, पालकी वालाज हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करी जाए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको एक RFID कार्ड जो है वो दिया जाए ताकि जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो भी रहे और जो लोग काम करते हैं यहाँ पर उनको भी ये सुविधा प्रदान की जा सके। उसी सिलसिले में हमें जैसे ही हदायत हुई थी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से तो हमने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था और पुलिस वेरिफिकेशन क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स की पुलिस वेरिफिकेशन, तो हमने अथॉरिटीज को लिख दिया था पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। अब आप देख रहे हो कि बहुत देर से हमारे ये कैंप्स एस्टेब्लिश हुए हैं और सभी कैंप्स में हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो तैनात हैं अपनी मशीनरी के साथ। जो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिस जिसकी वेरिफिकेशन हमारे पास आ रही है पुलिस वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन देखकर हमारे जो लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जैसे आपने आज बताया आज हम डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के जितने भी हमारी कैंपिंग साइट्स हैं जहाँ पे हमारे कैंप्स बेसिकली जो लगे हुए हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, वहां हमने विजिट किया और देखा कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो रही है और RFID कार्ड भी हमारे कैंप्स में आ चुके हैं और RFID भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप यूटी की बात करो तो हमने ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में जम्मू से लेकर के यहाँ तक सभी जगह पे हमने कैंप्स रखे हैं, चाहे वो हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के ऑफिस हों या वो पॉकेट्स हों जहाँ पर हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स रहते हैं या काम करते हैं। जैसे सोनामर्ग में आप देखते हो कि हमारे लोग बहुत सारे यहाँ पे वास्ता रहते हैं, पूरा साल भी वो काम करते हैं, तो हर जगह पे हमने कैंप्स एस्टेब्लिश किए हैं और हर जगह जो है रजिस्ट्रेशन हो रही है। तकरीबन 12-13 हजार आज की डेट में हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हमारा टारगेट है कि 25-26 हजार तक हमारी जो रजिस्ट्रेशन हो जाए इन मुख्तलिफ जो सर्विस प्रोवाइडर्स जिनका मैंने मेंशन किया है, ताकि जितने लोग हमारे पास आप जानते हैं आते हैं यहाँ श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए उनको हम सुविधा प्रदान कर सकें।
1: ये थे लेबर कमिश्नर चरणदीप सिंह जिन्होंने आज सोनमर्ग में श्री अमरनाथ जी यात्रा के सर्विस प्रोवाइडर्स में RFID कार्ड तकसीम करने का अमल शुरू किया।

0: शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
1: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: आप बिजनेस की तरक्की को
0: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की तरफ से मारूफ शायर, ब्रॉडकास्टर और तर्जुमाकार डॉक्टर सतीश विमल के साथ मीट द एमिनेंट राइटर के तहत आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक निशस्त का इनेकाद किया गया। इस मौके पर ऐवान सदारत में पद्मश्री प्रोफेसर शफी शौक, आकाशवाणी श्रीनगर के सरबरा गुरविंदर सिंह, कल्चर अकादमी के एडिशनल सेक्रेटरी इदील सलीम, अकादमी के एडिटर शोभा अंग्रेजी, आबिद अहमद और जाने माने अदीब डॉक्टर गुलाम नबी हलीम मौजूद थे। तकरीब के दौरान डॉक्टर सतीश विमल के अदबी सफर के मुख्तलिफ गोशों पर रोशनी डाली गई, जबकि सफे हाजरीन में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद थे। तकरीब की निजामत रशीद निजामी ने अंजाम दी। समन बड़गाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों की हालत खस्ता बताई जाती है, जिसके नतीजे में इन सड़कों पर रोजाना इन्हिसार करने वाली आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि जून का महीना शुरू हो चुका है, फिर भी महकमा आरएनबी या पीएमजीएसवाई की तरफ से सड़कों की मरम्मत और तजदीद का शायद ही कोई काम शुरू किया गया हो। इस सिलसिले में बड़गाम से यूनिस परे की इतला है कि जिले में दर्जनों ऐसी सड़कें मौजूद हैं जिनमें गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं और जिन पर चलने वाली गाड़ियां पूरे सफर के दौरान हिचकोले खाती रहती हैं। ताहम बार बार की गुजारिशात के बावजूद इन सड़कों की बिगड़ी संवारने के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा है। तफसीलात के साथ खुद यूनिस परे।
4: वादी के मुख्तलिफ जिलों में सड़कों की खस्ता हाली से लोगों का उबर मरोर दुश्वार बन गया है, जबकि सड़कों पर गिरे गड़े खोने के नतीजे में सड़कें खंडरात में तब्दील हो चुके, जिसके सबब राहगीरों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर को भी आवाजाही में परेशानियों का सामना है। वही वस्ती कश्मीर के बड़गाम जिले के मुतद्दिद इलाकों में सड़कों की हालत इंतहाई नागुफ्तर और खस्ता हाल है। सोईबुक वाडवन से राजवन बीरवा की सड़क तंग होने की वजह से हर रोज ट्रैफिक जाम के मनाजर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जिले के अंदरूनी रास्ता सड़कें मरम्मत न होने की वजह से खंडरात का मंजर पेश कर रही है। तफसीलात के मुताबिक सब डिवीजन बीरवा की कई सड़कें इंतहाई खस्ता हाल होने के बायस मकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार हो रही है। सरकार की जानिब से बार बार जबानी खर्ची करके आवाम को यकीन दहानी कराई जा रही है कि सड़कों की मरम्मत जल्दी अमल में लाई जाएगी, तम आज तक ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। इस जमन में हरदम मलपुरा देहात के लोगों के मुताबिक चेरहार से हरदम मलपुरा की सड़क की हालत इंतहाई खस्ताहाल हो चुकी है। बकौली लोग गुज़श्ता कई बरसों से ये सड़क वीरानी का मंजर पेश कर रही है, जबकि नक्स ड्रेनेज सिस्टम के बायस भी सड़क तबाह बर्बाद हो चुकी है। हरदम मलपुरा के लोगों ने मजीद कहा कि सड़क की खस्ताहाली मकामी लोगों के लिए बायस परेशानी बनी है, जिसके नतीजे में इस सड़क पर पैदल चलना दूर की बात है, गाड़ियां भी सफर के दौरान इसमें फंस जाती है। उधर 3 किलोमीटर बुनिट से सयहमा और राजवन से वातलपुरा की सड़क की हालत भी खराब हो चुकी है। बकौले वातलपुरा और बुनिट के लोग सड़कों की खस्ताहाली के सबब लोगों को उबर मरूर में दुश्वारियां पेश आ रही है, जबकि बारिशों की आया में सड़कों पर मौजूद गड़ों में बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सड़कों पर राहगीर इन गड़ों में चलते चलते गिर कर जख्मी हो जाते हैं, जबकि खंडरात नुमा सड़कों पर ट्रांसपोर्टर को भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर चाडोरा की सराई से गौसू सड़क और खानसाब इलाके के कांगरी पूरा से पकरपुरा सड़क की हालत भी बहुत खराब है। बकौलों की जांच सरकार सड़कों में वसत देने का मनसूबा बनाते हैं, वही हर साल सड़कों की तजदीद मरम्मत और मैग्नमाइजेशन के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। ताम मजकूरा सड़कों की हालत नागुफ्तर है, जिसकी वजह से लोगों को उबर मरूर में दिक्कतें पेश आ रही है। उधर हाजुरा से शिमनाक चाडोरा की सड़क की खस्ताहाली से मकामी आबादी जिनमें खुसूसन उम्र रशीदा अशकास और स्कूल जाने वाले तलबा को सख्त मुश्किल

0: कसम न करना पड़ रहा है। बकौल शिमला के लोग कि ये सड़क मुख्तलिफ गांव के साथ मुंसलिक है, लेकिन आरएनबी महकमा इस सड़क की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है और यहां तक कि बार बार आवाम की फरियाद के बाद भी महकमा आरएनबी खामोश तमाशाही बना हुआ है। इसी दौरान जिला के कई इलाकों के बेशतर सड़कें खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है, जिसके नतीजे में ट्रांसपोर्टरों, तालाब मरीज, बुजुर्ग अशखास और मुसाफिरों को जबरदस्त मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मागाम से बीरवा, एसकेपुरा से रक्षुना, चायरा से पटकानामा, खाग से पोष्कर, कांधामा से बामरादा, लूलीपुरा से कुलीपुरा, सोनपा से चकपुरा, राजीवन रणबुक, खान साहब के तालपुरा से रावलपुरा, क्रालपत्र से त्राजीखोल, चाडूरा डिवीजन के काजी मलपुरा, पकड़पुरा से यूसमर्ग, वतकुलू और त्रायरीपुरा व दीगर सड़कें खासतौर पर शामिल है, जहां लोगों को चलने फिरने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने शहरबीन को बताया कि जिला इंतजामिया बड़गाम को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत शुरू कराए ताकि लोगों की मुश्किल का इजाला हो सके।
1: बड़गाम जिले की खस्ताहाल सड़कें, यूनुस परे की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की इतला है कि आज गंदो के नजदीक एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 5 अफराद के जख्मी होने की इतला है। इन जख्मी अफराद को जीएमसी डोडा के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। उधर राजौरी से आरिफ कुरैशी का कहना है कि डोडा ठाठवी सड़क पर आज कई मकामात पर पस्सियां गिराई, जिसके नतीजे में वहां पर ट्रैफिक मुतासिर हुआ और इस सिलसिले में सड़क को बहाली के इकदाम किए जा रहे हैं। उड़ी से जफर इकबाल की इतला है कि आज घरकोट उड़ी में तेज आंधियां चलने के नतीजे में कुछ मकानों को नुकसान पहुंचा। समनवादी के मुख्तलिफ जिलों से शहरबीन को यह शिकायत तवातुर के साथ मौसूल हो रही है कि आबपाशी कोहलों और कनालों की तजदीद और मरम्मत के लिए कोई ठोस इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में काश्तकारों को मुनासिब आबपाशी सहूलियात दस्तियाब नहीं हो पा रही हैं। वाजिर है कि इरीगेशन महकमे के आला हुकाम ने यकीन दिलाया था कि मई के पहले हफ्ते में ही कोहलों और कनालों की बहाली का काम मुकम्मल होगा, ताहम अब जून भी शुरू हो चुका है लेकिन सूरत हाल में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। इधर अनंतनाग जिले से मौसूल इत्तिलात के मुताबिक महकमे देही तरक्की भी आबपाशी कोहलों और कनालों की सफाई और तजदीद यकीनी बनाने में नाकाम पाया जा रहा है। बताया जाता है कि नरेगा के तहत कोहलों और कनालों की मरम्मत और बहाली के लिए फंड्स दस्तियाब होने के बावजूद जाने क्यों काम अंजाम देने में लातुलैल बरता जा रहा है। एक रिपोर्ट के साथ एस तारिक।
2: जिला अनंतनाग के बिजबियारा ब्लॉक में मनरेगा के तहत फंड वागुजार होने के बावजूद आपाशी नहरों की सफाई और गाद निकासी न होने पर मुकामी लोगों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। वब्जन, कंडीपोरा, वागामा, मरामा, संगम, सदर, हालमोला, पंजपोरा, काठू, सिटीपोरा, शलगरी और गड़ी से समेत मुताबिक इलाकों के बाशिंदों का कहना है कि उन इलाकों से गुजरने वाली अहम आपाशी नहरों की गुज़श्ता साल की तरह इमसाल भी मुनासिब सफाई नहीं की गई। दादी नहर, महंद नहर, दरखन नहर और नवपोरा बिरवर नहर समेत कई अहम आबी गुजरगाहें हजारों एकड़ जमीन अराजी की आपाशी का बुनियादी जरिया है, ताहम गाद निकासी न होने की बायस इन नहरों में पानी की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जिससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्तकारों ने इल्जाम आयद किया है कि दही तरक्याती महकमा आरडीडी बिजबियारा अपने दायरे इख्तियार में आने वाली नहरों की देखभाल और सफाई के मामले में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ है, जिसके नतीजे में जरी सरगर्मियां मुतासिर हो रही है, खुसूसन ऐसे वक्त में जब खेती बाड़ी का अहम सीजन शुरू होने वाला है। मुतासिरा देहातों के लोगों ने ब्लॉक बिजबियारा में नहरों की सफाई के लिए वागुजार किए गए फंड्स की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। इनका कहना है कि फंड्स मुख्तस किए जाने के बावजूद बेशतर इलाकों में जमीनी सतह पर कोई काबिले जिक्र काम अंजाम नहीं दिया गया। अवाम ने मुतलका हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि मुबीना माली बेजाब्तगियों की तहकीकात अमल में लाई जाए और तमाम आपाशी नहरों की फौरी सफाई, गाद निकासी और बहाली को यकीनी बनाया जाए ताकि जरिए शोबे को मजीद नुकसान से बचाया जा सके।
1: अनंतनाग जिले में आपाशी सहूलियात नाकिस, इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक और मेंबर असेंबली पांपूर हसनैन मसूदी ने आज त्राल और पांपूर के इलाकों में होने वाली जारबारी

0: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
1: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
2: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: आज आई मेरी मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर में विटामिन ई तो विटामिन बी की कमी द्रामस।
5: तो क्या शक ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेल इस्तेमाल करान?
4: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
5: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदार में त्रावने यहाँ। विटामिन ए सानी इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान। दूध तो तेल छो बराबर मकदार में,
4: मगर यह है सठा द्रोग।
5: हाँ ना ना, सुई कीमत मज मुश्क टेस्ट सुई बेहतर पोषण दिवान।
6: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंद तो प्लस एफ निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस में दस्तियाब फोर्टिफाइड वसाइलन है जानकारी खतर करो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप कर।
7: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: अरे वहाँ देखो एक्सीडेंट, लिखना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
9: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
8: नहीं माँ, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत टीम आ गई है, एक गोल्डन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
9: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
8: माँ इतने कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
9: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
8: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हैरेसमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
9: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
8: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो। पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
9: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
8: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
10: آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 خبر نام ہیت چھس بہ محمد اکبر گوڈ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر صدر جمہوریہ وطلو سماجک سری طبقہ با اختیار بنانس مز تعلیم ہز اہمیت وزیر اعلیٰ دیو ترقی ہز عمل پوچھر دن تو لکن آسائش واتن کس عزمس پھر PDP صدرن سوز وزیر اعلیٰ حزب اختلاف کس لیڈرس تو پردیش کانگریس کس صدرس مکتوب پارٹی وابستگی طرف ترویت جموں کشمیر درپیش چیلنجن ہند متحد سپدت حل تلاش کرنچ دزک دعوت تو جموں کشمیر سے تعلق تھن وال حج صبن ہند گڈن قفل ووت آج سری نگر خبر پیش تفصیل سان

0: कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: इस दौरान रवा महीने की 5 तारीख को गांधरबल में मनीषत मुखालिफ पद यात्रा का अहतमाम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली जाने वाली इस पद यात्रा में सिविल सोसाइटी मेंबरान, ताजरों, मजहबी स्कॉलरों और आम शहरियों के अलावा जिंदगी के दीगर तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत मुतवक्के है। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर ने जिला अफसरान की एक मीटिंग तलब करके पद यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मनीषत के खिलाफ अपना रद्द अमल जाहिर करें। पुलिस की तरफ से आज गांधरबल जिले में 2 मनीषत फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि ओमपुरा बड़गाम में NDPS एक्ट के तहत करीब 20 लाख रुपए मालियत का एक मकान कुर्क किया गया। नशामुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलवामा जिले के कुछ इलाकों में वादी के मुतअद्दिद इलाकों में आज गैर कानूनी तौर से काश्त की गई खशखाश की फसल और भंग को तबाह किया गया। अनंतनाग जिले में पुलिस की तरफ से मनीषत मुखालिफ जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इस दौरान मैदनियात की गैर कानूनी निकासी में इस्तेमाल होने वाली 15 गाड़ियों को सीज किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान आला तनवीर सादिक ने कहा है कि NC अवामी मफादात पर कभी कोई समझौता नहीं कर सकती। श्रीनगर के बाशी दरवाज़ा मखदूम साहब में पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के इजलास के दौरान उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अवामी जमात है जो हर सतह पर लोगों के मसाइल हल करने और उनकी फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। प्रदेश बीजेपी के सदर और राज्यसभा के मेंबर सत शर्मा ने जम्मू में आज तंजीमी नवीयत की एक मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी मोदी सरकार के 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी बहबूदी को उजागर करेगी। पार्टी के तंजीमी अमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने चर्च लाइन श्रीनगर में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत जिला सतह के एक तरबियती कैंप की सदारत की। पार्टी के किसान मोर्चे की तरफ से मोदी सरकार के 12 साल के मौजू पर एक सेमिनार मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह बिलावारिया ने कहा कि मोदी सरकार के किसान दोस्त इकदाम से काश्तकारों की आमदनी में इजाफा हुआ है। पार्टी की स्टेट जनरल सेक्रेटरी संजीता डोगरा ने कच्ची छावनी जम्मू में ख्वातीन के मसाइल की समात का एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जिसमें मकामी ख्वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाही ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से अपील की है कि वह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कैदियों के मामलों का जायजा लें। एक बयान में उन्होंने मासूम अफराद की रिहाई यकीनी बनाने की अपील की है। वादी में आज बुलंद मर्तबत वली कामिल हजरत सैयद हमीद शाह बगदादी रहमतुल्लाह का उर्स अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जिला इंतजामिया श्रीनगर से अपील की है कि खलीफे सोम सैयद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के योम शहादत के सिलसिले में 4 जून को दरगाह हजरत बल में अकीदतमंदों के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 7 और 8 जून को मनाए जाने वाले हजरत मियाँ निज़ामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुनासिब इकदाम करने का मुतालबा किया है। मरकज़ में NDA हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं। मरकजी सरकार ने इस दौरान वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों के फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग इस स्कीम से इस्तेफादा करके तिबेह निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक शहरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: मेरा नाम सईद तनवीर गिलानिया, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के निलसर कंडी का रहने वाला हूं। हमें ये कहना था कि NDA सरकार का हमें तहे दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए, खासकर मोदी साहब का, जिसने हमारे लिए इतना कुछ सोचा। खासकर गरीब तबके का जो बिलो पॉवर्टी के लोग हैं, उन लोगों के बारे में मोदी साहब ने बहुत कुछ अच्छा सोचा है। जैसे कि उनमें से एक स्कीम आती है गोल्डन कार्ड से ऐसे कई जिंदगी बची है जिनके पास गोल्डन कार्ड ना था, मुमकिन है वो न बच सकती। लेकिन जब से गोल्डन कार्ड आया है और मोदी साहब ने जो लॉन्च किया था उससे कई जिंदगी बची है और हम मोदी साहब का इसलिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
1: जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले असाजा बिरादरी में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के ताल्लुक से काफी तशवीश पाई जा रही है। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने कहा है कि इस मरहले पर TET मुनक्किद करने से असाजा के मफादात को जख्म पहुंच सकती है। इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन शौकत अली बेग ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
3: प्रीवियसली जितने भी टीचर्स हमें जम्मू कश्मीर में रिक्रूट अपॉइंट हुए हैं वो बिल्कुल स्टैंडर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स के तहत अपॉइंट हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लिहाजा हमारा कंसर्न यहीं से शुरू होता है कि अगर हम स्टैंडर्ड तरीके से हमारा टीचर जो है जम्मू कश्मीर में है वो बिल्कुल जो तब से जो गवर्नमेंट थे यहाँ पे उनकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशन है उनके मुताबिक जो रिक्रूटमेंट हो गई है अपॉइंटमेंट हो गई टीचर्स की, तो उनको अब TET से क्यों गुजारा जा रहा है।

पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। समीन खारजा पॉलिसी किसी भी मुल्क के कौमी मफादात, सलामती और बैन अलाक्वामी ताल्लुकात की अकासी होती है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी अपने क़याम से लेकर आज तक मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के असरात से गुजरती रही है। मौजूदा दौर में आलमी सियासत तेज़ी से तब्दील हो रही है, नई मौशी और तस्वीर

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है और आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़। प्रोग्राम में बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। सामिन, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जो अपने वसी रकबे, कुदरती वसाइल, जोग्राफियाई अहमियत और सकाफती तनु की वजह से ख़ास अहमियत रखता है। इसके बावजूद बलूचिस्तान कई दहाइयों से मुख्तलिफ सियासी, मुआशी, समाजी और सिक्योरिटी मसाइल का सामना कर रहा है। ये मसाइल न सिर्फ सूबे की तरक्की को मुतासर कर रहे हैं बल्कि कौमी यकजहती और रियासती इस्तेकाम के हवाले से भी अहम सवालात पैदा कर रहे हैं। मौजूदा हालात में बलूचिस्तान के मसाइल और कौमी यकजहती का ताल्लुक पाकिस्तान के अहम तरीन कौमी मबाहिस में शामिल हैं। बलूचिस्तान को कुदरती वसाइल से मालामाल समझा जाता है मगर सूबे की एक बड़ी आबादी अब भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तालीम, सेहत, साफ पानी, सड़कों और रोजगार के मौके की कमी ने आवाम में एहसास महरूमी को बढ़ा दिया है। जब किसी इलाके के आवाम तरक्की के समरात से खुद को दूर महसूस करें तो अदम इत्मीनान और बेचैनी पैदा होना फितरी अम्र बन जाता है। मुआशी पसमानदगी बलूचिस्तान के अहम मसाइल में से एक है। अगरचे सूबा मैदनियात, गैस और दीगर कुदरती वसाइल से भरपूर है लेकिन मकामी आबादी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत और बेरोजगारी का शिकार है। महदूद सनती सरगर्मियों और मुआशी मौाक़े की कमी के बायस नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल के हवा

0: समीन आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम बाती की आवाज, यह आकाशवाणी श्रीनगर है।
1: वादी कश्मीर की खूबसूरत फिजाओं में एक नई सुबह, एक नई ताजगी, पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पेश कर रहा है एक जामिया लाइव शो पयामे सुबह,
1: जहां होंगी सेहत, साइंस और जिंदगी से जुड़ी मुफीद मालूमात,
2: और साथ ही खेल, सकाफत और अवामी मसाइल पर बामाने गुफ्तगु पयामे सुबह।
3: यारो वन बाजी यारो वन,
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी श्रीनगर से।
2: मीडियम वेव 268.81 और FM 103.5 MHz पर।
0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर। समीन समात करें डिजिटल इंडिया सिलसिले के तहत शोबे खबर का ये खुसूसी प्रोग्राम।
4: समय नादा, मैं आपका मेजबान तारिक रातर। वजीर अजम नरेंद्र मोदी की कयादत में एनडीए सरकार गुज़श्ता 12 साल से मुल्क के अवाम की खिदमत कर रही है। हुकूमत की जानिब से अवामी फलाह बहबूद के लिए मरकजी सरकार की बेशुमार स्कीमें और प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इस खसूसी प्रोग्राम सीरीज के आज के प्रोग्राम में हम डिजिटल इंडिया मौजू के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बातचीत करेंगे। आज जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम इस वसी मौजू पर बातचीत करेंगे, वो है बेंगलुरु में कायम एक बैन अलावी याफ्ता विजन डिजिटल इंडिया इंस्टीट्यूशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर हरिकृष्णा मारम जी। डॉक्टर मारम जी, यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर स्पेशल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
5: थैंक यू सर, नमस्कार।

यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर रात के 8:45 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार पेश होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा।

0: समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। CBSE ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर CBSE ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
2: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
3: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रॉड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगे। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्से रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वो अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी।
2: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
4: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
2: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट पर राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी, औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: हमेशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने स्वदेशी निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO, भारतीय वायुसेना, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की बढ़ती परिपक्वता को प्रदर्शित करते हैं और उन्नत हथियार प्रणालियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवर, अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनके नियुक्तियों को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमण करने वाली सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्यवाही शुरू की जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राय बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू की सेवानिवृत्ति के बाद शुक्रवार से पदभार ग्रहण करेंगी। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। NTA ने 3 मई को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा रद्द कर दी थी। पुनर्परीक्षा 21 जून को निर्धारित की गई है। प्रसार भारती के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेव्स OTT की नवंबर 2024 में शुरुआत के 2 वर्षों से भी कम समय में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि देश के सार्वजनिक डिजिटल मीडिया तंत्र के विकास में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और दुनिया भर के दर्शकों को विश्वसनीय, समावेशी और विविध सामग्री प्रदान करने वाले स्वदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तेजी से अपनाए जाने को दर्शाता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों पर एक विशेष रिपोर्ट।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार के लगातार प्रयासों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना के तहत इस वर्ष मार्च तक 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक ऋण लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं जिनमें से लगभग 17 लाख करोड़ रुपए महिलाओं को दिए गए। तमिलनाडु के तिरुपुर के रहने वाली वाणीश्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना ने उन्हें उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया।
3: इस योजना की सहायता से मैंने अपनी नई बुटीक शॉप खोली है और मैं ये गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ये शॉप बहुत अच्छी चल रही है। इसके साथ ही मैं अब अपने प्रतिष्ठान की 3 से 4 और शाखाओं का सफल संचालन करने में सक्षम हो गई हूँ।
2: 2-3 branches also. वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं

0: के नाम पर हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला की रहने वाली सरोज बाला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जनधन खाता खुलने के बाद अब सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचता है।
1: ये जीरो बैलेंस से खाता आराम से खुल जाता है, इसके लिए कोई राशि जमा नहीं करवानी पड़ती। जब कोरोना था, जब किसी के पास 1 रुपया भी नहीं होता था, उस समय लोगों को 1500 रुपया मोदी सरकार ने दिया। मोदी जी के 12 वर्ष का कार्यकाल बहुत अच्छा है, उन्होंने आम जनमानस को बहुत सुविधाएं दी हैं। इसमें एक हमारे को बीमा योजना मिली है, 2 लाख बीमा कवर मिलता है।
0: वहीं मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। यह पहल अब लगभग 6 लाख गांव तक पहुंच चुकी है और सरकार ने देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। सरकार की निरंतर नीतियों और योजनाओं के चलते महिलाएं आज आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने श्री राहुल सिंह का स्थान लिया है। सरकार ने श्री वरुण भारद्वाज को CBSE में सचिव के रूप में नियुक्त किया है। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिसमें 21 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमेरिका से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइलें भेजने का भी आग्रह किया। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत सेवारत 550 से अधिक भारतीय शांति रक्षकों ने संघर्षग्रस्त देश में नागरिकों की सुरक्षा और शांति स्थापना प्रयासों में उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया। इनमें 53 महिलाएं शामिल हैं। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए समिति का गठन किया। भारत ने नेपाल के साथ द्विपक्षीय मामलों के समाधान में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को नकारा। भारत ने वायु से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म ने 2 साल के भीतर ही 1 करोड़ यूजर्स का आंकड़ा पार किया। यूक्रेन में रूस के हमलों में 21 लोग मारे गए। और महिला क्रिकेट में भारत आज रात टॉन्टन में मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव अलावो FM 71.5 MHz पर समय रात 9 बजे कौशर मौसीकी पेश, आगाज मुझ पेश कलामी शाह कलंदर, पेश करन मोहम्मद शफी मलिक।

0: लगातार साइबर हमलों की वजह से रुकावट के बाद सीबीएसई पोर्टल जल्द ही लाइव कर दिया गया है। ताहम सीबीएसई ने यकीन दहानी कराई है कि वो तलबा की हर तरह से मदद को यकीनी बनाने के लिए लगातार चौकसी बरत रहा है। सीबीएसई ने मजीद कहा है कि तलबा के फीडबैक की बुनियाद पर प्लेटफॉर्म को मजीद बेहतर किया गया है और सेशन टाइम में भी इजाफा किया गया है ताकि कामकाज को ज़्यादा आसान तर्ज पर और बिला रुकावट तरीके से अंजाम दिया जा सके। सीबीएसई ने कहा है कि 12वीं जमात के जवाबी पर्चों की दोबारा जांच से मुतालिक उसका पोर्टल फिलहाल 8,000 से ज़्यादा सारिफिन की मदद कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में सीबीएसई ने बताया है कि 16,000 से ज़्यादा तलबा अब तक कामयाबी से अपने मंदरजात पेश कर चुके हैं। सीबीएसई का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा और ऑफलाइन दरख्वास्तें या मुद्दत गुजरने के बाद दरख्वास्तें कबूल नहीं की जाएंगी। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: इस दौरान सीनियर आईएएस अफसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब सीताराम वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी की खिदमात अंजाम दे रहे थे। उनकी तकरीरी राहुल सिंह की जगह हुई है, जिनका बतौर एडिशनल सेक्रेटरी ज़िरात और किसानों की बहबूद के महकमे में तबादला कर दिया गया है। हुकूमत ने वरुण भारद्वाज को भी सीबीएसई में सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। वो आला तालीम के महकमे में डायरेक्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तकरीरों से मुतालिक काबीना की कमेटी ने इन तकरीरात को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम बाख्तियार बनने का ताकतवर वसीला है जो लोगों को खुदकफील, बाखबर और बासलाहियत बनाती है। सदर जमहूरिया आज नई दिल्ली में स्कॉलरशिप स्कीम के कबायली मुस्तफदीन से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि हकीकी मानी में तरक्की तभी मुमकिन है जब माशरे के सभी तबकात समाजी, इकतसादी और तालीमी तरक्की करें।
2: युवा हमारे राष्ट्र की शक्ति, आशा और उज्जवल भविष्य की प्रतीक है। मेरी सभी युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के युवाओं से अनुरोध है कि उन्हें अपनी जड़ों और अपने लोगों को नहीं भूलना चाहिए। युवा शक्ति विरासत पर गर्व करते हुए आधुनिक शिक्षा और तकनीकों के बल पर आगे बढ़े तब तो सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा।
1: सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि हुकूमत की स्कॉलरशिप स्कीमों ने कबायलियों की ज़िंदगी में यकसर तब्दीली लाई है और उनके लिए आला तालीम और नए मौक़े तक रसाई मुमकिन हो पाई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा कि भारत में हुनर की कोई कमी नहीं है और उन्होंने उसे फ़रोग देने के लिए उसकी निशानदेही करने, परवान चढ़ाने और सही मकाम अता करने पर जोर दिया।
2: भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र के तहत भारत में खातिर खा तब्दीली लाई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में हम बात करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: गुज़श्ता 12 बरसों के दौरान भारत में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के सिमत में नुमाया तब्दीली हुई है, जो हुकूमत की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है। इन कोशिशों का मकसद ख़वातीन को सेहत, तालीम, रोज़गार के मौाक़े, माली शमूलियत और क़्यादत के शोबों तक रसाई को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो 2015 में शुरू की गई थी, ने लाखों ख़वातीन को अपना कारोबार शुरू करने और इसे उसत देने के लिए बग़ैर ज़मानत के कर्ज़ हासिल करने के काबिल बनाया है। इस स्कीम के तहत रवा माली साल मार्च तक 40 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज मुस्तफिदीन को फराहम किए गए हैं, जिनमें से 17 लाख करोड़ रुपए खवातीन को दिए गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और वुमनिया जैसे अहम प्रोग्रामों ने मुश्तरका तौर पर खवातीन की बैंककारी, बचत और कारोबारी प्लेटफार्म तक रसाई को मजबूत बनाया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स खोले जा चुके हैं, जिनमें से तकरीबन 33 करोड़ अकाउंट्स ख़वातीन के नाम है। दीपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
1: ये खबरें आकाशवाणी से न

0: की जा रही हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि भारत और नेपाल के दरमियान बाहमी ताल्लुकात में किसी तीसरे फरीक का कोई रोल नहीं है। वजारत खारजा में तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने नेपाल के वजीर आजम की भारत नेपाल सरहद से मुतालिक रायजनी और उसके बाद नेपाल की वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा बयान के जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरहद से मुतालिक मामलात के सभी पहलुओं से निमटने के लिए कायम शुदा बाहमी तरीक़ेकार मौजूद है। जनाब जायसवाल ने कहा कि हालांकि भारत नेपाल सरहद के तकरीबन 98% हिस्से की वाजह तौर पर हदबंदी हो चुकी है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है जिस पर काम होना है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: भारत ने जम्मू कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन मुश्तरका बयान में गैर ज़रूरी तस्करे को भी मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अटूट हिस्से हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के सिलसिले में जिनकी खुद कोई हैसियत ना हो उन्हें कोई बात कहने से गुरेज करना चाहिए। वेनेजुएला की कारगुजार सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ कल से भारत के 4 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि उनके हमरा खारजी उमूर, इक्तसादी व मालियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, मवासिलात व इत्तलात और नकल व हमल के महकमों के वज़रा भी होंगे। जनाब जायसवाल ने कहा कि मोहतरमा रोड्रिगेज़ अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दोतरफा बातचीत करेंगी। इस बातचीत में तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल, अद्वियात और काबिल तजदीद तवानाई जैसे शोबों में इश्तराक के इम्कान तलाश करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मरकज़ ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक ज़ाब्तों में तरमीमात को नोटिफाई कर दिया है। ये तरमीमात 180 दिन तक भारत आ रहे गैर मुल्की अफराद को मुल्क में अपने क़याम में तौसी की ख्वाहिश की सूरत में उन अफराद के वीज़े की मुदत ख़त्म होने से पहले रजिस्टर करने को मुमकिन बनाती हैं। वजारत दाखिला ने इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक तरमीमी ज़ाब्तों 2026 को नोटिफाई किया है, जिसमें इमिग्रेशन और गैर मुल्की अफराद से मुतालिक ज़वाबित 2025 के तहत रजिस्ट्रेशन की मुद्दत और अपील मैकेनिज्म में अहम तब्दीलियां मुतारिफ कराई गई हैं। ज़ाब्तों में पहली मरतबा ऑनलाइन अपील निज़ाम को जोड़ा गया है। किसी ऑर्डर से मुतासर कोई शख्स अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के कमिश्नर के पास ऑनलाइन अपील दाखिल कर सकता है। ऑर्डर मौसूल होने के 30 दिन के अंदर अपील दाखिल करना लाजमी होगा। कमिश्नर को 60 दिन के अंदर मुतल्लिका फरीकों को सुनना और मामले को हल करना होगा। भारत ने फिजा से ज़मीन पर वार करने वाले अंदरून मुल्क तैयार करदा रुद्रम 2 मिज़ाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फिजाइया की जानिब से सभी अहम निज़ाम की सलाहियत को कायम रखते हुए ये आजमाइशी तजुर्बा किया गया। वजारत दिफा ने कहा कि इन मिज़ाइल को पहले से तयशुदा निशाने की जानिब दागा गया। चांदीपुर में मरबूत टेस्ट रेंज पर नसबशुदा मुख्तलिफ आलात की जानिब से परवाज से मुतालिक डेटा में इस बात की तस्दीक की गई है कि इस आजमाइशी तजुर्बे के सभी मकासद हासिल कर लिए गए हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने DRDO, भारतीय फिजाइया, दिफा से मुतालिक सरकारी कंपनियों, शराकतदारों और सनतकारों को इस उसूलयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि इस कामयाब आजमाइशी तजुर्बे से अंदरून मुल्क तैयार करदा दिफाई टेक्नोलॉजियों की बढ़ती सलाहियत का इजहार होता है और जदीद हथियार निज़ाम के सिलसिले में आत्मनिर्भरता की जानिब ये अहम कदम है। प्रसार भारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव्स OTT ने नवंबर 2024 में अपने आगाज़ के बाद से 2 साल से भी कम वक्त के अंदर 1 करोड़ रजिस्टर्ड सारिफिन से तजावुज़ कर लिया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा है कि इस संगी मील से अंदरून मुल्क डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार किए जाने की अक्कासी होती है, जो नाज़रीन को काबिल भरोसा और मुख्तलिफ तरह का मवाद फराहम करता है। 1,40,00,000 से ज़्यादा डाउनलोड्स के साथ अब वेव्स OTT कंटेंट के सिलसिले में शराकत दारी को वसत देने, इलाकाई और तालीमी मवाद को मुस्तहकम करने और मार्च 2027 2 करोड़ रजिस्टर्ड यूज़र्स के निशाने को हासिल करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर 24,000 से ज़्यादा कंटेंट टाइटल्स, 15,000 घंटे से ज़्यादा कंटेंट, 140 से ज़्यादा लाइव TV चैनल्स और 200 से ज़्यादा रेडियो खिदमात दस्तियाब हैं। यकसां अदायगी के निज़ाम UPI ने पिछले महीने 23 अरब 20 करोड़ मालियत के माशी लेन देन का इंदराज किया है। مالیاتی خدمات کے محکمے

0: சங்கர்மால் வனசுத்தையே புக்ரம் போசான் அசுக் மோசோஸ் கோஷுர் அப்சானத்து மோஜுத்து தோர் ஷுர்காஸ் அஷ்ரஃப் ஜியா முஷ்தாக் அஹமத் முஷ்தாக் து ஷகீல் ரஹ்மான் பேஷ்கார் சதீஷ் விமல். ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, शब के 10 बजे है। समाप्त करें फिल्मी नगमों का फरमाइशी फोन प्रोग्राम। हेलो, आपकी फरमाइश।

0: हेलो, आपकी फरमाइश। वालेकुम अस्सलाम
1: जी, कैसे हो मैम?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप कौन बोल रहे हो और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैं मोहम्मद अफजल खान बात कर रहा हूँ, बीबी जुगो खान से।
0: मोहम्मद अफजल खान, आप कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे? घर में सब ठीक है?
0: अल्लाह का करम हमेशा बना रहे। अच्छा मोहम्मद अफजल जी, ये बताइए, ईद अच्छे से मनाई?
1: बिल्कुल, आपकी दुआ से बिल्कुल अच्छी तरीके से मनाई हमने ईद।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, और अल्लाह करे कि हम सब के नसीब में ऐसी खुशियों भरी बहुत सारी ईदें नसीब हो। ये बताइए आज क्या सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी आज मैं सुनना चाहूँगा ये उसके साथ जॉनी मुखर्जी की आवाज में गाना है।
0: कौन सा नगमा?
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: ये शहर है अमन का, आपके साथ और कौन सुनेगा?
1: पहले तो मेरे दो बेटे हमेशा की तरह साइम और उर्फी।
0: हाँ,
1: काफी मदद के बाद आपसे बात हो रही है, तो बेटा भी अल्लाह ने भेज दिया हमको।
0: चलिए बहुत बहुत मुबारक हो, सलामत रखे अल्लाह आपके सभी बच्चों को।
1: उस बेटे का नाम है आहिल खान।
0: आहिल खान
1: जी जी जी, तो मेरा दोस्त है यहाँ पे बैठा हुआ बिलाल अहमद और उसकी बेटी, और आप भी सुनेंगे हमारे साथ आज।
0: जरूर मोहम्मद अफजल साहब, आप हम सब मिलकर ये नगमा एंजॉय करते हैं, सुनिए।
1: आपको याद है तो 2016 में शायद आपसे बात हो रही थी आखिरी बार।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
2: ये

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: ठीक छो अजीजी?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। कम छो?
1: बस घनासान पेट मोहम्मद अब्दुल्ला नजार।
0: मोहम्मद अब्दुल्ला नजार। तु छो ठीक पट? आमीन आमीन। वन तो कुस फिल्म बात छो बोजुन आज?
1: अच्छा बोजुन सो रोते रोते हसना सीखो सो अंदा कानून बोजुन।
0: बिल्कुल जरूर वातनाओ तहताम तहसीद कुछ यहां बे बोजुन। हेलो समीन, ये कॉल जो है ड्रॉप हो गई, लेकिन हम इन्हें बिल्कुल भी नाराज नहीं करेंगे। आप जो है अंधा कानून से ये खूबसूरत सा नगमा अपने साथियों के साथ एंजॉय करें।

0: समीन आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। हेलो, आपकी फरमाइश। आपको बताना चाहे कि इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हर सोमवार को सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती है। फोन नंबर है 2480364-2480364 और ये प्रोग्राम आप हर मंगलवार को शब के 10 बजे समाप्त करते हैं। आप समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश अपनी रेडियो होस्ट रोहित मुश्ताक के साथ। हेलो आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: ठीक छो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह। तुम कम छो? कत पट छो?
1: गुलाम अहमद बट सर पटन गोश पुट पे।
0: गुलाम अहमद बट सर
1: हां नजा
0: क्या छो करन तुई?
1: एसएस करन फ्रूट सै बे दुकानदारी से करन पन्न से फ्रूट
0: फ्रूट सै बे दुकानदारी से
1: हां नजा बे दुकानदारी आज पाक लोड का आसान पेश सा मोहने के।
0: गुलाम अहमद सर अल्लाह ताला दीनो बरकत तुंदे साथ फसला सन तुंदे कारोबार अस अगर जन इस कात करो मौसम युजन वक्तन फवक्तन में किस खराब छु रोजान एम सी तन ते पे वारिया असर फसलस पेठन तो हम सब दो नुकसान के अल्लाह ताला करिन हर कंस पे रहम। वन तो आज कुछ फिल्म बात छु ते बोजुन
1: आज बोज हम सो मान गए उस बात छु मेरा एक सवाल है सवाल का जवाब दो
0: मान गए उस्ताद बिल्कुल तो ऐसे कुछ ही असान बोजुन
1: ड्राइवर अब्दुल मीर गुलाम नदी मीर गुलबर अहमद गनाई मोहम्मद मकबूल सन्नु गुलाम हसन डार सना वाला साइड अहमद लोन एजाज अहमद लोन।
0: बिल्कुल बोझना हो तो ही ये फिल्मी बात बल्कि तहसीद करन सर्न लिसनर्स ते तो तुहिन सती थी ये फिल्मी बात एंजॉय कॉल करने बापत तुहिन सेठा शुक्रिया।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: जी दीदी, मैं दूगो खान साहब से बिलाल अहमद बोल रहा हूँ।
0: बिलाल, कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्लाह का, आप ठीक हो दीदी?
0: अल्लाह का करम है। बताइए, कौन सा नगमा सुने?

0: जी गाना सुनना है
1: जरूर।
0: मोहित का नाम है अफसाना प्यार का।
1: अफसाना प्यार का
0: जी उसका है ना वो टिप टिप
1: टिप टिप बरसे।
0: हाँ वही
1: जी। और कौन सुनेगा आपके साथ?
0: दोस्त है,
1: नाम बताएं।
0: मेरा भाई अहमद वहीद अहमद और है मेरी बेटी।
1: हाँ
0: बस और है आप।
1: चलिए जरूर हम सब मिलकर ये नगमा एंजॉय करते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश
1: जी। मेरा नाम ठीक हो?
0: मैं ठीक हूँ, आप कौन बोल रहे?
1: मैं गौहर बात कर रहा हूँ।
0: गौहर
1: जी मैम,
0: गौहर जी कहाँ से बोल रहे?
1: जी मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ।
0: बताइए कौन से नगमे की फरमाइश करनी है?
1: मैडम ये सलमान खान की मूवी अभी हम दिल देखते हैं सनम
0: जी,
1: इसका एक नगमा है
0: जी,
1: चांद छुपा बादल में।
0: बहुत ही खूबसूरत सा नगमा है, कौन सुनना चाहेगा आपके साथ?
1: मेरे साथ है आमिर है,
0: हाँ,
1: और है राकिब।
0: आप क्या करते हैं?
1: जी हमारी यहाँ पर शोरूम है लाल चौक में।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, कारोबार में लगे हुए हैं आप, बहुत ही अच्छी बात है। गौहर आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपने सभी साथियों के साथ अपनी पसंद का ये नगमा।
1: ओके, थैंक यू।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: हेलो, आपकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, आप कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ। निगहत जान, आप कैसी हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ नहीं चाहिए मैम।
0: हमेशा इंशाल्लाह आप सबके साथ हैं। बताइए निगहत जान, आज प्रोग्राम में कौन सा नगमा सुनेंगे?
1: पहले तो ये बताऊँ, पहली बार आपसे बात हो रही है
0: जी
1: फरमाइशी प्रोग्राम में, खासतौर।
0: बिल्कुल सही,
1: मैंने पहली बार आपसे आज बात की है प्रोग्राम में।
0: बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी आपसे पहली बार इस प्रोग्राम की वसातत से बात करते हुए। निगहत जान, ईद अच्छे से मनाई?
1: खुदा का, आप बताए, आपने ईद अच्छे से मनाई?
0: बस मेरी बहन, शुक्र है अल्लाह ताला का कि ईद अच्छे से मनाई और घर वालों को भी राजी रखा, सबको राजी रखा, ऊपर वाले को भी राजी रखा, अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो है ईद अच्छे से मन गई।
1: मुझे एक बात अच्छी लगती है ईद के दिन,
0: जी
1: वो ये कि मुझे ईद ही मिलती है।
0: अरे वाह,
1: वो तो मुझे अच्छा लगता।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: लेना मुझे अच्छा लगता है, देना अच्छा नहीं लगता।
0: इतनी कंजूसी क्यों?
1: पता नहीं, मुझे लेना ही अच्छा लगता है।
0: चलिए कोई बात नहीं है। अब ये तो बताइए कि कमाई कितनी हुई इस ईद पे?
1: अभी तो फिलहाल 8,000 हुई।
0: अरे माशाल्लाह, चलिए चलिए हम दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आपको ज्यादा से ज्यादा मिले।
1: क्योंकि आज की ईद तो मैं यहाँ इंशाल्लाह मना रही हूँ अपने घर में। अगर अल्लाह ने चाहे तो इस साल जो आने वाली जो नेक्स्ट ईद होगी
0: जी,
1: वो अपने में ससुराल में मना।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हर बेटी का नसीब बुलंद करे, हर बेटी का मुकद्दर अच्छा रखे, इंशाल्लाह हमारी यही दुआ है। बताइए निगहत जान, आज क्या सुनना पसंद करेंगी आप?
1: फिल्म का लता जी की आवाज में खूबसूरत एक नगमा है, फिल्म का नाम है मैंने दिल तुझको दिया।
0: बहुत ही प्यारा नगमा है ना?
1: हाँ।
0: इसका कौन सा नगमा सुनेंगे?
1: वो है ना, वादा ना तोड़।
0: जी बिल्कुल सही,
1: आपको मैं बोल रही हूँ, वादा नहीं तोड़ना।
0: बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे।
1: मेरी फरमाइश पूरी होगी इसलिए।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आपके साथ और कौन सुनना पसंद करेगा?
1: रोहित मैम, पहले तो आप मेरे साथ सुनेंगी
0: जी।
1: और मेरी बड़ी बहन कौन सा
0: है?

0: इस वक्त ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो मेरे साथ ये नगमा जरूर इंजॉय करेंगे।
1: बिल्कुल सही, सभी इंशाल्लाह आपके साथ ये नगमा इंजॉय करेंगे। और वैसे भी बहुत ही खूबसूरत से नगमे की फरमाइश आपने की है।
0: जब भी मैं गाने की फरमाइश करती हूँ मुझे लगता है जी के ये गाने पसंद है ज्यादातर।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।

0: आपके साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने आज कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अनुचित संदर्भों को भी खारिज कर दिया है।
1: भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त वक्तव्य में किए गए ऐसे अवांछित संदर्भों को अस्वीकार करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग हैं, जिनका ऐसे मामलों पर कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपोकोसा माशातिले से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच घनिष्ठ मित्रता है और दोनों देश वैश्विक दक्षिण में प्रमुख स्थान रखते हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार की निरंतर वृद्धि का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों पक्षों को प्रौद्योगिकी

0: औषधीय, ऊर्जा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग करना चाहिए। इससे पहले उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने स्वदेश निर्मित वायु से सतह पर मार करने में सक्षम रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि परीक्षण के दौरान मिसाइल सटीकता के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंची। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय वायुसेना, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विकास और उत्पादन भागीदारों तथा संबंधित उद्योग हितधारकों के प्रयासों की सराहना की। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शील नागू, श्री चंद्रशेखर, संजीव सचदेवा और अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस योजना के अंतर्गत अब 100 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रति माह 7,500 श्रीलंकाई रुपए की सहायता दी जाएगी। यह सहायता उनकी पूरी डिग्री अवधि तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भीतरी कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is आकाशवाणी, the news read by RS Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education, CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12 board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission's S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE today officially activated online portal for verification of marks and re-evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. A Delhi court today extended the judicial custody of 5 accused in the NEET paper leak case till 15th of this month. Yesterday, 2 other accused were sent to 14 days of judicial custody. The CBI has arrested 13 accused in the case so far. Last month, the National Testing Agency cancelled the National Eligibility Cum Entrance Test held on 3rd May amid allegations of paper leak. A re-examination has been scheduled for 21st of this month. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal, days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of the border matter.
2: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcated segments of the boundary, which are currently being mapped jointly. We have established bilateral mechanisms to deal with all aspects of boundary matters. It should be clear to all concerned that there is no role for any third parties in a bilateral matter between India and Nepal.
1: Mr. Jaiswal said India also rejects the unwarranted references made in Pakistan.

0: discussion on 12 years of the Modi government, empowering farmers through welfare and farmer-centric policies. Participants are Shekhar Iyer, political analyst, and S.P. Singh, senior journalist. The moderator is Sonu Sood.
1: In the last 12 years of NDA government, Prime Minister Narendra Modi has continually stressed on farmers' welfare as one of the topmost priorities of the government. Agricultural production and agricultural exports have gone up steadily, and we have become a leading producer of food grains, millets, milk, coconut, spices, fruits, vegetables in the world. While ensuring food security for 140 crore Indians, the strong agricultural growth has made us an integral part of the global food value chain. In the last 12 years, the government has brought in path-breaking, targeted reforms for every stage of the agricultural cycle, optimizing productivity and ensuring transparent delivery of the benefits of government schemes through use of latest technology and digitization. To discuss the holistic government initiatives to maximize farmer welfare over the last 12 years and how it has given stability and momentum to our agriculture sector, we are joined today by two special guests, Mr. S.P. Singh and Mr. Shekhar Iyer. Mr. Singh, Mr. Iyer, a warm welcome to both of you at this special Akashvani series on completion of 12 years of NDA government.
2: Namaskar, thank you.
1: So, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह का हमने एक तेजी देखी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस तरह से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है, न सिर्फ फूड ग्रेन्स में, हॉर्टिकल्चर में, बाकी जो कृषि के एलाइड सेक्टर्स हैं, किस तरह से आप आंकते हैं सरकार का जो ये 12 वर्षों में अप्रोच रहा है कृषि क्षेत्र की तरफ, उसमें कौन सा ऐसा प्रमुख केंद्र बिंदु है जिससे आपको लगता है कि ये संभव हो पाया है?
3: देखिए, इस सरकार की जो अगर सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर अगर हम देखें तो खेती किसानी के मामले में और कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने की उन्नत दिशा में ले जाने में या किसानों की दशा और दिशा को सुधारने में अगर किसी ने अहम रोल अदा किया है तो इस सरकार के इस 12 साल

0: को एक माइलस्टोन के तौर पर देखा जा सकता है, एक अच्छा फेज कहा जा सकता है। सबसे पहला काम इस सरकार का अगर देखे तो सुधार के तौर पर कृषि सुधार की दिशा में कृषि मंत्रालय का नाम पहले बदला गया। इसका नाम कृषि मंत्रालय था, इसको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किया गया। इसका पर्पज सिर्फ यह था कि किसानों कृषि के साथ जो किसान से जुड़े हुए एलाइड सेक्टर है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, खेती और किसानी। दूसरा, किसान कृषि का की परिभाषा को सरकार ने बदला, वो उसके तरीके पहले था खेती और बाड़ी, लेकिन खेती के साथ देखते देखते बाड़ी कहीं गायब हो गई, विलुप्त सी हो गई। तो इस सरकार की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बाड़ी को आगे बढ़ाया, यानी खेती की परिभाषा को, कृषि की परिभाषा को बदला और उसके दायरे को बढ़ाकर उसमें उन सेक्टर्स को भी डाला जो चूक हो रही थी और या विलुप्त हो रहे थे, जैसे बागवानी का, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लस इसके अलावा डेयरी, पशुपालन और बी कीपिंग, मतलब खेती किसानी से जुड़े हुए जो उद्यम थे, सह उद्यम जिन्हें था, जो किसानों की जो आमदनी बढ़ाने की बात होती है, प्रधानमंत्री बार बार कहा करते हैं कि दोगुना करने की बात कही थी, मैं बार बार कहता हूं कि खेती के साथ अगर बाड़ी को जोड़ दिया जाए तो दोगुना नहीं, कई गुना की वृद्धि आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और सरकार का पूरा प्रयास था कि हम कैसे खेती के साथ बाड़ी को आगे बढ़ाएं, और बाड़ी के आगे बढ़ाने का एक नतीजा है कि आज हम दुनिया में खेती के साथ साथ हार्टिकल्चर में, फिशरी में, आज हम हार्टिकल्चर में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। कई ऐसे फ्रूट्स हैं, कई ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसमें हम दुनिया में नंबर एक उत्पादन करने वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह से हम चावल, चीनी, गेहूं और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको हम दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो चुके हैं। हम फिशरी के मामले में दुनिया के, चीन के बाद दूसरे नंबर के एक्सपोर्टर, जबकि हमारे यहाँ अभी जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए फिशरी का वो बहुत कम है। यानी इस सरकार का जो पूरा फोकस था खेती किसानी में लगे हुए किसानों के साथ, खेती तो वो करता था जिसके पास खेत होता था, लेकिन वो खेती में जो लोग लगे हुए थे जिनके पास जमीन नहीं थी, भूमिहीन किसान, वंचित वर्ग, गरीब वर्ग, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था कि उन्हें क्या मजदूरी मिल रही है, वो कैसे उनका खर्च चल रहा है, कैसे वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस सरकार ने सबसे बड़ा फोकस उनके साथ किया जो बाड़ी को जोड़ा, जिसमें जमीन की जरूरत नहीं होती है, दो पशु रख लीजिए, चार पशु रख लेता है गांव का भूमिहीन किसान, उससे उसका काम चल जाता है, उससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो अपने किसान के खेत पर खेती करता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और अपने पशुपालन है, भेड़ पालन है, मतलब ढेर सारी से पशुपालन से भी पैसे मिलते हैं। तो ऐसे सेक्टर खुल दे, बी कीपिंग है जिसमें कुछ नहीं लगता है, ऐसे ही फिशरी है, फिशरी में गांव के जितने भी तालाब थे, सोचिए मनरेगा के तहत इस सरकार ने कई लाख जीर्णोद्धार कराया तालाबों का, पुराने तालाबों का, और नए तालाब को तैयार करवाया, उसमें जब पानी भरा तो वो उन लोगों को दिया गया जिनके पास, जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास खेती नहीं थी, ऐसे, और जो लोग जिनको पानी से बहुत पुराना नाता था, ऐसे मछुआरों को जो ये काम दिया गया तो वहां पे मछली का उत्पादन होने लगा, ऐसे ही डेयरी का उत्पादन होने लगा। जब डेयरी का उत्पादन हुआ तो दूध कहाँ बेचेगा, वो एक बड़ी समस्या का पैदा होने से पहले ही सरकार ने सोच लिया था कि उनके लिए क्या करना है, तो उसने कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाया और एक नया कोऑपरेटिव मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय खड़ा कर दिया और उसकी चेन इतनी है कि गांव का हमें लगता नहीं कि कोई किसान बचा होगा या कोई गांव बचा होगा जिसमें पैक्स ना हो, जिसमें सहकारिता का आंदोलन न पहुंच गया हो और किसान उससे जुड़े ना हो। जी
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, मिस्टर सिंह हैज यू नो आउटलाइंड सो ब्यूटीफुली दैट व्हाट हैज बीन द बेसिक चेंज इन द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर। वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू द स्टेबिलिटी एंड द मोमेंटम दैट वी हैव सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इवन इन द डिफिकल्ट इयर्स ऑफ कोविड। द एग्रीकल्चर सेक्टर केप्ट ग्रोइंग। हाउ डू यू सी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू हैव बीन द यू नो मेजर एरियाज वेयर द गवर्नमेंट यू feel has you know hit the bullseye and which is why we are seeing this buoyancy in our agriculture sector?
2: You know, for over a decade, you know, government of India under Prime Minister Modi ji's direction, you know, has placed agriculture at the heart of a vision of a plan of Viksit Bharat. So when we are talking of Viksit Bharat, agriculture is at the core of it, and that is why over the last 10 years, you have seen several schemes that have been launched, several projects. They are so interconnected, which ensures there is latest research also plays a part, technology plays a part, and farmers are empowered to ensure productivity and also their livelihoods become sustainable.

0: And all the time, the goal has been to double the income of farmers. So whatever ideas you have seen in the last 10 years has been directed at that. And as recently, just a few days ago, we saw the Prime Minister giving a clarion call that India is the, if India's economy is going to reach the third largest economy, that India should be annadata for the entire world. See, that is a kind of concept, that is a kind of imaginative vision with which this government is approaching agriculture. Yes, our farmers have been handheld. Unko madad kiya gaya hai, unko haath pakad ke khade hone ke liye, jo bhi sadhan ki zarurat hai, wo sare cheeze bhi dete hue, bhavishya ko Bharat krishi kshetra mein, how it will go ahead and how it will become the provider for the entire world. That is behind it. So in this dream, you know, to see that the rural India transforms, you have seen that the government has taken into account all the new problems that are coming, like climate change, then ensuring market access and challenges in market access, the setting up of warehouses, setting up of cold storages, and also running green trains. You know, produce from one region is immediately transported to the large market. So today, if you are seeing Karnataka tomatoes being available in Delhi, Nasik onions are moving to Bombay and to South, that this whole thing, that entire India being one market, so that our farmers get a better price, has been is just one indication how things are moving. Apart from that, you have also seen there are several other things which this government has done, which is, you know, looking at direct income support. For instance, the PM Kisan, then there is a Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, you know, to provide a safety net for the crop loss against natural disasters. Because somewhere or other you have a cyclone or a flood or, you know, something or the other happens for which our farmer is not prepared. Then credit access, the Kisan credit card, you know, that is also a big thing to provide short-term and long-term credit. Apart from that, you have also seen in this budget, initiative has been where, you know, like a PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, so that, you know, it focuses on low productivity districts. Focus on that. Then also, the overall thing is, you know, mission for Atmanirbharta in pulses, which is the new area, the thrust area, to see that our dependence on import of pulses, that is dal vagara vagara, we don't have to depend. And lastly, I must add, the Prime Minister has also brought focus to natural farming. So that the future is natural farming. We can have chemical-free agriculture. And towards that goal, you are seeing a lot of steps being taken of late.
1: Yes. Mr. Singh, जैसा कि मिस्टर अय्यर ने कहा कि बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, अलग अलग जो स्टेज होती है एक एग्रीकल्चरल साइकिल की, अगर हम पहली जो स्टेज है इनपुट्स की उसकी बात करें, तो उसमें क्वालिटी इनपुट्स अफोर्डेबल रेट्स पर मुहैया कराना, इस पर जो प्रमुख कार्य किया गया है उसको अगर आप सटीक रूप में हमें बता सके।
2: खेती में इनपुट की लागत को घटाना और उसके उपज का उचित मूल्य दिलाना सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि किसानों को कैसे फायदा मिल सकता है। तभी फायदा होगा जब इनपुट कास्ट घटेगी और उनके उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा, यानी उचित मूल्य या लाभकारी मूल्य मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले दो हिस्सों में बांट के देखा जाए तो खेती के लिए जरूरी होती है मिट्टी, खाद, पानी, बीज और किसान, लेबर, ये और पैसा। तो इन सब चीजों का कैसे किया, मिट्टी की सबसे पहले सेहत जांची गई, सॉयल हेल्थ कार्ड के नाम पर देश के सारे किसानों के खेतों को जांचा गया, परखा गया कि उनके खेत में किस तत्व की कमी है। जो कम है वही चीज डाली जाए, क्योंकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का प्रयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। तो सबसे पहले मिट्टी की जांच कराई गई,
1: 25 करोड़ से ज्यादा सॉयल हेल्थ
2: लगभग सभी किसानों के करा दिया गया। उसका मकसद यह था कि हर 3 साल पर यह कराया जाता है, ताकि इससे ये पता चल सके कि मिट्टी में कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, उसी हिसाब की खाद डाली जाए। दूसरा काम किया खाद का, फर्टिलाइजर का। हमारे यहाँ याद होगा आपको कि 2014 से पहले फर्टिलाइजर को लेकर हर सीजन में हाय तौबा मचती थी, लेकिन 14 के बाद ये स्थिति नहीं रही। तो आखिर कहां से खाद की उपलब्धता कहां से आ गई, ये था कि जो हमारे यहाँ लीकेज हुआ करता था उसे सरकार ने रोका। नीम कोटेड यूरिया, यूरिया का उपयोग किसी और इंडस्ट्रियल उपयोग में कर लिया जाता था रॉ मटेरियल की तरह से, इसको रोकने के लिए उसमें नीम का तेल या नीम की खाद को मिला दिया गया, जिससे वो नीम लेपित यूरिया जब दी गई किसानों को तो वो किसी और उपयोग की नहीं, सिर्फ खेतों के ही उपयोग की थी। उससे 10 से 20 हजार करोड़ रुपया बचा। तीसरी जरूरत थी इनपुट था पानी, सिंचाई। सिंचाई के हिसाब से देखें तो पानी की हमारे यहाँ मैक्सिमम पानी जो नीचे जमीन से निकाला जाता है, पंप होता है या नहरों से जाता है, वो सिंचाई के तक

0: काम में आता है। लेकिन पानी की जितनी जरूरत है और जितनी खेती है उसमें बहुत डिफरेंस था, बहुत मुश्किल थी। और हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी थी सिंचाई की वो ठीक नहीं थी, वैज्ञानिक नहीं थी। तो इसके लिए सबसे पहले सूक्ष्म करके जो माइक्रो इरिगेशन को सरकार ने हैवी सब्सिडी के आधार पर हर किसान तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताकि इससे 30-70% तक पानी बचता है, जो फ्लडिंग के तौर पर हमारे यहाँ सिंचाई होती थी। फ्लडिंग सिस्टम से हट के वैज्ञानिकों ने बताया कि नहीं, ये सिस्टम नहीं, कम से कम पानी यानी बूंद से बूंद पानी या थोड़ा थोड़ा पानी भी चाहिए, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री हर भाषण में शुरुआती दौर में इस पर जोर दिया करते थे कि गन्ने की खेती भी इससे हो सकती है। चौथा था बीज, बेहतर सीड। अगर आप, बड़ी सिंपल सी कहावत है कि बोए बीज बबूल का, आम कहां से होए, तो जब आप बेहतर सीड अगर उपयोग नहीं, बीज नहीं उपयोग करते हैं, तो उससे बेहतर उत्पादकता की उम्मीद, यील्ड अच्छी नहीं होगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए बेहतर बीजों का उपयोग का, हमारे साइंटिस्ट, इतना बड़ा ICAR का, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का इतना बड़ा सिस्टम हमारे पास है, हमारे हर साल सैकड़ों बीज हर तरह के तैयार हो जाते हैं, आविष्कृत होते हैं, लेकिन वो खेतों के, किसानों के खेतों तक नहीं पहुंच पाते थे। उसको कैसे पहुंचाया जाए, इस सिस्टम को ठीक किया, और बीज पहुंचाने के लिए, और हमारे यहाँ बीज की जरूरत थी। कि अभी अय्यर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जलवायु का जो विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं और रोग, तो डिजीज से बचने के लिए, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन होगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे यहाँ बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ढेर सारे रोग फैलते हैं, ऐसे रोगों से प्रतिरोधी क्षमता वाले बीज तैयार किए गए। और जलवायु जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाए या बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए या बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पानी आ जाए, इन तीनों स्थितियों से बचने वाले ऐसे सीड तैयार किए गए जो उन फसलों पर इनका असर कम से कम हो या न्यूनतम हो। ये सबसे बड़ा काम किया इन्होंने इनपुट को घटाने का। उससे आगे बढ़ के इन्होंने किया बाजार को, कैसे बाजार इनको कैसे उपलब्ध कराया जाए, बेहतर बाजार। अब हर किसान तक बाजार को, लेकिन नहीं, इस डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान बना दिया इस सरकार ने। प्रधानमंत्री ने कहा ई मार्केटिंग, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, जिसको ई नाम के नाम से जाना गया, और इससे हर किसान अब जुड़ देता है अपने टेलीफोन से, अपने मोबाइल से, वो चाहे तो देश की हर मंडी से वो कनेक्ट होता है, उसे हमेशा पता चल सकता है कि किस मंडी में किस कमोडिटी का या किस उपज का क्या भाव चल रहा है, और अपनी मंडी के अपने व्यापारी से मोल भाव करने का उसे मौका मिल जाता है।
1: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाता है,
0: रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तीसरा सबसे बड़ी बात थी कि जोखिम, किसान कहा जाता था कि ऊपर वाले पर भगवान बरसेंगे तो बारिश होगी, खेती होगी, मतलब सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर था। नहीं, इस सरकार ने इसको तय किया कि नहीं, किसानों को किसी के भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। किसान को जोखिम फ्री किया गया, उसको एक ऐसा कवच दिया गया कि उसकी खेती अगर नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। बीमा योजना लाई गई, प्रधानमंत्री बीमा योजना इतना बढ़िया योजना है कि बहुत नॉमिनल, और जो प्रीमियम जमा होता है वो पैसा किसान नहीं देता, उसका बहुत छोटा सा 5% किसान देता है, बाकी और 2.5% से 5% बाकी सब सरकार के खाते से जाता है किसी भी कंपनी को, उसका फायदा मिला। तो जोखिम बच गया है, अच्छे सीड मिल गए, अच्छे इनपुट मिल गए, और अच्छा बाजार मिल गया। और सरकार ने, इसके अलावा सरकार ने अपनी ओर से एक कवच दिया कि आपका जो भी बाजार के मुकाबले बाजार में मूल्य आपकी उपज का कम मिलता है तो वो सरकार खरीदेगी। सरकार ने इस बात की, एक तरह से आज से नहीं, बहुत लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सरकार खरीदती है, लेकिन
1: तब से हम न्यूनतम समर्थन मूल्य,
0: न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। किसान इसको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है कि गाढ़े दिनों में सरकार हमारे साथ खड़ी रहती है। सरकार की पूरी कोशिश है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करेंगे, लेकिन कोशिश यह होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद न करनी पड़े, उसकी उपज का मूल्य बाजार में बेहतर मिले। यानी MSP का जो घोषित मूल्य है, अगर कोई किसी चीज का 2500 रुपए क्विंटल मूल्य है, अगर बाजार में 2700 या 3000 रुपया मिलता है, तो किसान 2700 या 3000 पर बेचेगा, 2500 पर सरकार को नहीं देगा। यही सरकार की पूरी कोशिश है कि बाजार में उसकी उपज उसके कहे दाम पर, मोल तोल के आधार पर बेहतर मूल्य उसको मिले। ये सरकार ने बहुत बेहतर,
1: बिल्कुल। सो जैसा आप कह रहे हैं कि इनपुट कॉस्ट और रिम्यूनरेटिव प्राइस दोनों पर ध्यान दिया गया है। मिस्टर अय्यर, व्हाट वुड यू से, यू नो, द आइडिया इज टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर्स एंड इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी फॉर द कंज्यूमर्स ऑल्सो, सो हाउ फार यू फील द फूड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द वैल्यू एडिशन मैकेनिज्म्स, दे हैव इमर्ज्ड एज द सेंट्रल पिलर ऑफ योर इंडियाज फार्म टू मार्केट स्ट्रेटेजी and have been successful?
2: See, the farmer needs correct inputs at the right time, at a right price. Right. And after that, at the time of harvest, he needs some financial help.

0: to, you know, take care of the expenditures. Then after the produce is, you know, harvested, he needs a market and a good price that will, I mean, that will take care of his cost as well as give him some reasonable profit to sustain his livelihood. So towards this end, what that he revised, keep into account the right, and as per the Swaminathan committee report, the effort has been to see that at least the cost is covered as per the recommendation to the great extent possible. At the same time, as Singh was saying, if the market offers a better price, the farmers have a choice to move on. And with this e-market, I mean, with the e-NAM, and along with that, you know, now the lot of attention is being given for storage facilities. See, the biggest problem is when the prices, you know, have not reached their optimum level, the farmer has a problem in disposing his produce. So therefore, he requires a good storage facilities. And we have seen in the last two budgets, and in fact, the last budget has set aside at least 1 lakh crore to particularly to take into account this particular problem. Because you need to see financial risk management. And what is needed today is a large-scale infrastructure investment to increase farm incomes and build these kind of facilities and connectivity. So this is very important. This is the thrust area. So the government has been encouraging also private-public partnership also in this region for having a chain of, you know, cold storage chains in everywhere. Because invariably when you hear stories of, you know, farmer in distress because, you know, the production, there is like, for instance, a crop like onion or a crop like cotton or even a crop like even tomatoes. See, what happens is suddenly there is a glut in the market and the prices fall. And there is no food processing industry which is developed to the full extent to take care of this. So the government thrust area is food production as well as necessary food processing industry that can take care of these vagaries, caused by nature or by otherwise, to see that the farmer doesn't lose out on getting the best price.
1: कमिंग टू यू मिस्टर सिंह, अभी आपने थोड़ी देर पहले कोऑपरेटिव मॉडल की बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनी इन 12 वर्षों में. इसका कृषि क्षेत्र को किस तरह फायदा हुआ है और जिस तरह का हम कोऑपरेशन मॉडल्स कृषि क्षेत्र में देख रहे हैं, डेयरी सेक्टर में या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनका क्या फायदा हो रहा है उसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज जो है या मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये किस तरह का भूमिका प्ले कर रही हैं?
2: देखिए, कोऑपरेटिव को लाने से पहले कोऑपरेटिव का एक डिपार्टमेंट हुआ करता था. इस सरकार के आने के साथ ही एक नया मंत्रालय बना, सहकारिता मंत्रालय. जिस तरह से उसका विस्तार हो रहा है, गांव शायद ही देश का कोई ऐसा गांव बचा हो जहां पर कोऑपरेटिव आंदोलन न पहुंचा हो. और किसान तो हमें लगता है किसान ऐसा होगा जो किसी न किसी तरह से कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा, चाहे उसे लोन लेना हो, क्रेडिट चाहिए होगा, दूसरा उसे सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, या शुगर का प्रोडक्शन हो, यानी किसी भी चीज से अगर जुड़ा किसान है तो वह कोऑपरेटिव से जुड़ा ही होगा. सरकार ने इसको कैसे जोर से दिया, आप समझिए कि डेयरी डिपार्टमेंट को, डेयरी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या है. दुनिया का आज की तारीख में हम 25% अकेले हमारा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया डेयरी में, और प्रोडक्शन वाइज हम दुनिया के नंबर एक प्रोडक्शन करने वाले देश बन चुके हैं. जरा सोचिए कि इतना बड़ा डेयरी सेक्टर में काम करने वाला भारत आखिर कैसे यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया. तो यह आंदोलन सिर्फ सहकारिता के बूते हुआ, सहकारिता के नाते हुआ, और ये पिछले 10-12 सालों में तो कई फोल्ड के, कई गुना के वृद्धि दर्ज कर रहा है. इसकी ग्रोथ बहुत तेज है. डेयरी सेक्टर में सबसे ज्यादा भूमिहीन किसान इसमें काम करते हैं. 2, 4, 5 पशु रख करके, दुधारू पशु रख लिया और दूध सवेरे उनका कलेक्शन सेंटर पे आज पहुंचा देते हैं और उनको पैसा मिल जाता है, हाथ के हाथ पैसा मिलता है. कोऑपरेटिव सेक्टर से खाद मिलती है, सारा इनपुट. अब समझिए कि हमें लगता है कि 60 से 70% किसान फर्टिलाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू कोऑपरेटिव ही जाता है, उनके पास पहुंचता है, और सब उधारी पर मिलता है, सब क्रेडिट पे मिलता है. किसान को जब सख्त जरूरत होती है फर्टिलाइजर की, सीड की, किसी भी इनपुट की, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू ही जाता है. और जब उसकी खेती हो जाती है, जब उसकी उपज तैयार होती है, जब वो मार्केट में बेच लेता है, यानी उपज को खरीदने का भी काम कोऑपरेटिव सेक्टर की एजेंसीज ही करती हैं. हर स्टेट की अपनी नोडल एजेंसीज हैं जो कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके लिए काम करती हैं. अब इसके बाद फिर वो पैसा जमा करते हैं. एक छोटा सा डेटा दूंगा आपको कि पिछले 14 के पहले हमें लगता है कि मुश्किलन 25 से 28 हजार रुपया, या मैक्सिमम मान लीजिए 30 हजार करोड़ कुल टोटल क्रेडिट रही होगी कोऑपरेटिव की ग्रामीण क्षेत्रों में. कोऑपरेटिव सेक्टर का एक कॉर्पोरेशन है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनसीडीसी बोलते हैं, उसका

0: की तारीख में जो डिसबर्समेंट है, इस साल का जो बजट है, जो उसका टारगेट है, वह 1.5 लाख करोड़ का है। जरा सोचिए, एक साल में का। सिर्फ एक वर्ष का 1.5 लाख करोड़। और पिछली सरकारों का, पिछली कितनी सरकारें नहीं, वो सिर्फ 25 और 30 हजार करोड़ पर टिकी रही।
1: तो ये एक आजादी भी मिल रही है छोटे और सीमांत किसानों को, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स हैं उनसे।
0: सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट लेंडर से उनका बचाव हो गया, सूदखोरों से उनको पैसा नहीं लेना पड़ता, अपनी पैक से ले सकते हैं या कोऑपरेटिव बैंक से ले सकते हैं। दूसरी बात कि सरकार ने सबको केसीसी दे रखा है। आपने जो कहा ना कि इस सूदखोरों से तो इनका छुटकारा ही हो गया, क्योंकि केसीसी आपके हर एक के हाथ में आ गया। हाँ, एक बात और कि जितने भी दूसरे एलाइड सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए संबद्ध जो क्षेत्र हैं, उन्हें किसान सरकार मानती ही नहीं थी, उनके उनके किसी परिभाषा में आते नहीं थे। आज जो पशुपालक हैं, डेयरी वाले हैं, जो दूध वाले हैं, या मछुआरे हैं, बी कीपिंग वाले हैं, बागवानी करने वाले हैं, इन सबको किसान मान लिया गया है। और किसान क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ किसान को नहीं, खेती करने वाले को नहीं, ये सेक्टर में काम करने वाले लोगों को भी केसीसी का लाभ मिलता है। यानी बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर उनको जितना उनकी डिमांड होती है उसको पैसा मिल जाता है। इसलिए उनकी स्थिति में बहुत भारी सुधार हुआ है।
1: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, कैन यू टेल अस दैट दिस गवर्नमेंट हैज ऑलवेज हैड एन इंक्लूसिव अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट इन एनी एंड एवरी सेक्टर। सो इफ यू टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शन, द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ऑफकोर्स यू मेंशन द पीएम किसान सम्मान निधि योजना, द वेरी वर्ड सम्मान इज गिविंग रिस्पेक्ट टू द फार्मर्स। देन द फसल बीमा योजना यू टॉक्ड अबाउट, किसान मानधन योजना इज गिविंग पेंशन फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एंड नियरली अबाउट 25 लाख फार्मर्स हैव एनरोल्ड। एंड ऑल्सो अनदर वेरी इंटरेस्टिंग lightning statistic is that 51% beneficiaries of PM Fasal Bima Yojana belong to the scheduled caste, scheduled tribe, OBC categories. And of course, you mentioned PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, which is going to benefit 1.7 crore farmers in most low productivity areas, the aspirational districts. So you feel that it is one of the intentions of the government is to take this prosperity to every farmer, be it in a remote area or be it from a backward area?
2: Absolutely, absolutely. You see, the overall philosophy of Prime Minister Modi has been that beech se lekar bazaar tak. And this is a broad concept, you know, from the seed to the market, the final produce. In that, whatever process is involved, including the economic condition of the farmer, the health of the farmer, and also use of modern technology. And do not forget, particularly irrigation. Now, in the last budget, they have got it for micro irrigation, where 5,000 crore has been set apart. Yes. See, apart from major irrigation projects, because the underlying philosophy is per drop, more crop. That is, for every drop that is being, you know, water that is, that the productivity must go up, which will require, you know, streamlining your canals, repair and maintenance of your canals, sub canals, and all these requires, you know, all the ministries of the government along with the state governments. They have to work hand in hand to ensure the benefit reaches everybody. You mentioned about the Dalit farmers, you mentioned about tribal farmers. They have a problem of their own, a very unique problem that is also being tackled in a different way, particularly, you know, the climatic conditions as well as the land condition. You know, there are places which are receiving rainfall throughout the year. There are places that do not receive rainfall at all. So you have already schemes to tackle that also. This particular approach we have seen is there is not one single aspect that is neglected. Yes. And our farmer knows that he has a confidence that this government, whatever problem comes, they will take care of it. And take, for instance, the role of technology. I want to make a special mention. Now, Drone Didi Yojana. Now, look at Drone Didi Yojana. This is to empower the women self-help groups in our villages. But that is also connected with agriculture productivity. Now, these Didi, Drone Didis are being trained to use the technology for, you know, pesticide, spreading the pesticide, spraying of pesticide, as well as finding out the condition of the crops. You know, we had the vast acreage under crop. What is the condition of the crop? So this kind of technology availability is also giving boost to the farmer, like the soil health card and other things. So the overall idea is, you know, there should be an integrated development.
1: Absolutely. So Mr. Singh, jaisa inhone kaha, Mr. Iyer ne, ki ek parikalpana hai ki hum jo vishwa hai, usko bhi export kare. Hum already exporter, major agriculture exporter ban gaye hain. 2014 se dekhe to 37% bade hain hamare agriculture exports. $51 billion ho gaye hain. Aur isme jo processed food एक्सपोर्ट्स है उनका शेयर भी बढ़कर 20% को पार कर गया है। सो एक शिफ्ट है टुवर्ड्स

0: हायर वैल्यू एडेड. सो एक प्रोग्रेसिव शिफ्ट दिखाई दे रहा है फूड प्रोसेसिंग की तरफ. फूड प्रोसेसिंग पर बहुत सरकार ने जो बल दिया है, PLI भी आया है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए. इसके बारे में आप हमें थोड़ी बता सकते हैं जो वैल्यू एडेड और फूड प्रोसेसिंग है, इस पर बल दिया जाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है?
1: फूड प्रोसेसिंग क्या है कि रॉ फूड आइटम्स यानी जो कृषि उपज है अगर उसको हम प्रोसेस्ड करके बेचते हैं, वैल्यू एडिशन कर देते हैं, तो उसका मूल्य बेहतर मिलेगा, किसान को फायदा होगा. हो क्या रहा है कि जैसे हमारे यहाँ जितना दूध पैदा होता है पूरे देश में, दुनिया का सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाला देश, जिसका मोर देन 60% कच्चा यूज होता है, जिसकी प्रोसेसिंग नहीं होती है, 30-40% ही दूध का अभी तक प्रोसेसिंग हो पाती है. अगर इस दूध की प्रोसेसिंग होने लगे तो बेहतर मूल्य किसानों को और बेहतर मूल्य मिल सकता है और कंज्यूमर्स को भी राहत मिलेगी. इसी तरह से अगर हम देखें हमारे यहाँ जो फिशरी है, फिशरी एक बड़ा सेक्टर है. अगर हम इसकी प्रोसेसिंग सेंटर खोल दें, प्रोसेसिंग में प्रोसेसिंग बेहतर होने लगे तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और डोमेस्टिक डिमांड जो पूरी होगी होगी और फिशरमैन को बेहतर मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा. तो हमारे देश में जितने भी अब तक फूड प्रोसेसिंग के वो बने सेंटर बनाए गए, मेगा फूड पार्क बनाए जाते हैं, कितने साल से हमें लगता है 201 साल से हम सुनते आ रहे हैं जब से ये मिनिस्ट्री बनी है, इस सेक्टर में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ जितनी संभावना है. यहाँ पर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, काम उस गति से नहीं हुआ है. इस सरकार का फोकस पूरा रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री का, कि किसानों की उपज का बेहतर मूल्य तब मिलेगा जब उसके उपज का प्रोसेसिंग होगी, प्रसंस्कृत के तौर पर जाएगा. कोई भी चीज टमाटर के तो टमाटर है, आलू है, एक सिंपल वे में अगर टमाटर जाता है तो किस साल के कुछ महीनों तक ही वो सप्लाई की जा सकती है. लीन पीरियड में उसके मूल्य बढ़ जाते हैं जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर्स पर. तो कंज्यूमर्स को भी प्रभावित ना होना पड़े, किसान को अच्छा मूल्य मिले साल भर, इसके लिए प्रोसेसिंग का होना बहुत जरूरी है. और जितने भी प्रोड्यूस हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उनके सारा प्रोसेसिंग सेंटर उसी जगह पे होना चाहिए जहां से वो पैदा होते हैं.
0: तो इस संदर्भ में मिस्टर सिंह, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत 1,185 प्रोजेक्ट्स मॉडर्न प्रोसेसिंग और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एस्टैब्लिश किए गए हैं नवंबर 2025 तक. और जो PLI जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए लाई गई है, जिसके अंतर्गत 169 एप्लीकेशंस को मंजूरी मिली है. और PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम भी है, जिसमें 4 लाख से अधिक एप्लीकेशंस के माध्यम से 1,70,000 से अधिक लोन्स को मंजूरी मिली है. सो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है और आपको लगता है कि इसमें, जैसा आप कह रहे हैं, कि स्कोप और भी ज्यादा है?
1: कोरोना के पीरियड में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी, और कही ही नहीं थी बल्कि उन्होंने घोषणा भी की थी कि 1,00,000 करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड का अनाउंसमेंट किया था, और उस फंड का पिछले अगले 5 सालों तक उसका उपयोग किया जाएगा. और अब समझिए कि 1,00,000 करोड़ का एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो ये जितना आपने बताया मत्स्य संपदा हो, चाहे फूड संपदा हो, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, सब उसका पार्ट हैं. और इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग के सेक्टर पर पूरा फोकस रहेगा. जब प्रोडक्शन बेहतर होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हो सकता है उसके खराब होने के चांस हो जाएंगे, तो उसको अगर प्रसंस्करण कर देते हैं तो वो हमारी चीज बच जाती है. और कम उत्पादन में बेहतर उपयोग करने का तरीका है प्रसंस्करण. प्रसंस्करण से कई फायदे होते हैं, जो किसान को फायदा, कंज्यूमर को फायदा, और उससे जो उस पूरी चेन बनती है उसमें लोगों को रोजी रोजगार मिलते हैं, इम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है.
0: मिस्टर अय्यर, कमिंग टू यू, एज वी मेंशन्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैव रीच्ड अ रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन हैज ऑल्सो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड इन द लेटेस्ट बजट. प्रमोशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, कोको, कैश्यू, सैंडलवुड इन कोस्टल रीजन्स एंड अगर ट्रीज इन नॉर्थ ईस्ट एंड आमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स इन हिली एरियाज, दीज हैव बीन डिफाइंड एज द फोकस एरियाज. सो यू थिंक यू नो दिस काइंड ऑफ वेरी फोकस्ड अप्रोच दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, लुकिंग एट द वेरी वास्ट एंड वेरीड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड यूजिंग द स्ट्रेंथ्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी?
2: No, you have raised a very, very important dimension to the government's priority. Particularly, yes. You talked of the need for to go in for high-value crops. You know, in fact, the Prime Minister, soon after the last budget, you know, he specifically addressed a webinar where he spoke about this and he appealed to the farmers to take care of this diverse climatic condition and focus on scaling up the harvest of these high-value crops. Yes. And some of the crops you mentioned. Because today, as the Prime Minister looks at the possibility of Indian farmers getting great access to world market, it is important for to take care of quality, to take care of branding and standards of our produce. This is very, very important. And for that, it

सुबुगाही पेश होगा सुबह 6:35 पर। लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह समाप्त करें सुबह 7:10 पर। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करेंगे साइका सलीम आर जहूर अहमद। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जोर द जहां ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 8:45 पर। मकामी अखबारात की सुर्खियां पेश होंगी सुबह 9:00। कश्मीरी मौसीकी पेश होगी सुबह 9:30। सूफी ख्यालात पर मबनी प्रोग्राम सूफी सदा रोज की तरह नश्र होगा सुबह 10:00। प्रोग्राम मारूफ सूफी शायर वाज़ महमूद से मुतलक है। तहरीर गुलाम नबी शाकिर, रावी रशीद निजामी। समीन कल मारूफ शायर वाज़ महमूद की बरसी है। इस मौके पर इन्हीं का कलाम पेश होगा। छकर त्रोप पेश होगी सुबह 11:30। फनकार हैं गुलाम नबी नमतहाली और साथी। दोपहर 2:30 कलाम वाज़ महमूद पेश करेंगे हबीबुल्ला डार वसन और साथी। और सपहर 4:30 मोहम्मद अब्दुल नजार और साथी कलाम वाज़ महमूद पेश करेंगे। बज़्म निस्वा रास्त होगी 12:40 पर। मेहमान हैं प्रोफेसर शबनम आरा। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम पेश होगा दिन में 1:10 पर। पहाड़ी प्रोग्राम सपहर 4:00 और गोजरी प्रोग्राम रोज की तरह नश्र होगा शाम 5:00। देहाती भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करेंगे शाम 6:10 पर। हालात हाजरा की जानकारी प्रोग्राम शहरबीन में मिलेगी शाम 7:00। रात 8:00 प्रोग्राम वादी की आवाज नश्र होगा। रात 8:30 पर जिला नामा नश्र होगा। कल का जिला नामा जिला कुपवारा से मुतलिक है। शब 10:00 गजलों का फरमाइशी

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

और इसी के साथ गीत मेरे मनमीत का ये सफर यहीं समाप्त होता है और इसी के साथ इजाजत दीजिए माधुरी को भी। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विदेश विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। विदेश मंत्री श्री

जयशंकर ने कल मेक्सिको के विदेश मंत्री रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज को विदेश मंत्री नियुक्त होने पर बधाई दी है। साथ ही दोनों नेताओं ने भारत और मेक्सिको के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने तथा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति भी व्यक्त की है। भारत ने श्रीलंका के जाफना विश्वविद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रियों के लिए अपनी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया है। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां वितरित की। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारिता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14 ओवर में 4 विकेट पर 122 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय समय अनुसार यह मैच रात 11 बजे शुरू हुआ। 3 मैचों की श्रृंखला फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर मैं हूं आपके साथ माधुरी। चंद तस्वीरें बुतां, चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामान निकला। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में जहां एक क्लिक पर संदेश पहुंच जाता है, वहां खत या पत्र की अहमियत को समझना और भी जरूरी हो गया है। तो आज निशिगंधा के बहाने करेंगे बात खतों की, या कह लीजिए खतूत की, पत्र की, या फिर लेटर्स की।

0: खत सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं होते, बल्कि वो दिल की गहराइयों से निकली भावनाओं का रूप है। वो समय की दीवारों को पार करते हुए रिश्तों को जोड़े रखते हैं। खत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें समय लगता है, और जब आप किसी को खत लिखते हैं ना, तो आप सोचते हैं, शब्दों को चुनते हैं, अपनी भावनाओं को सजाते हैं, पिरोते हैं, तो इस तरह किसी के दिल का हाल किसी के दिल तक पहुंचता है, वरना कौन जाने दिलों का हाल क्या है।
1: दिलों का न पूछो सनम आपका।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ और ये समय है जब हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए निशिगंधा और निशिगंधा पे आज चर्चा हो रही है, बात हो रही है खतों की। समझिए जरा कि जो खत लिखने की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया खुद में एक प्यार भरी तपस्या है। ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज की तरह तुरंत नहीं चला जाता ये, बल्कि ये इंतजार का एहसास देता है। जब वो खत प्राप्तकर्ता के पास पहुंचता है तो उसके हाथ में एक छोटा सा खजाना होता है जिसे बार बार पढ़ा जा सकता है, छुआ जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। समझिए कि आपका कोई जानने वाला बहुत दूर चला गया है, तो ये जो खतों का ताना बाना है ना, ये जुड़े रखता है और इसी जुड़ाव से वो दूर का व्यक्ति भी पास आ जाता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और ये सफर है निशिगंधा का, जहां आज हम बात कर रहे हैं पत्रों की, खतों की, लेटर्स की। और खतों के बारे में तो बहुत सारे अच्छे अच्छे शेर हुए हैं, एक दो मैं भी जरा अर्ज करना चाहूंगी। कोई पुराना खत, कुछ भूली बिसरी याद, जख्मों पर वो लम्हे मरहम होते हैं। कभी ये फिक्र कि वो याद क्यों करेंगे हमें, कभी ख्याल कि खत का जवाब आएगा, यानी कि कोई कहीं किसी खत का इंतजार कर रहा होता है।

बात खतों के चल रही थी और बात खत वाले शेरों पे पहुंच गई, और जब मैंने दो शेर सुनाए तो मुझे दो और याद आ गए, तो चलिए उन्हें भी आप तक पहुंचाने का काम कर ही देती हूं। और ये जो अगला शेर है ये इस तरह से है कि कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू, कैसे माने कि उन्हें भूल गया तू, उनके खत आज हमें तेरे सिरहाने से मिले। और एक और शेर है कि मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ मगर हर्फ शब्द, मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ मगर आज तक तेरे खतों से तेरी खुशबू न गई। और किसी दीवाने के इस बात को सुनकर मुझे उस दीवाने की याद आ गई। जी हाँ, अगला गीत आप सभी के लिए फिल्म हीर रांझा से है।

कागज पर उतरी स्याही दिल की जुबां बन जाती है, खत लिखा तो रिश्ता गहरा यादों का कारवां बन जाती है। खत वो पुल है जो दूरी को भी प्यार से जोड़ देती है। पुराने समय में खत ही समाचारों, प्रेम, दोस्ती और यहां तक कि युद्धों के फैसलों का माध्यम हुआ करते थे। स्वतंत्रता सेनानियों ने खतों के जरिए ही अपने संदेशे पहुंचाए। प्रेमियों ने अपनी बेचैनी अपने खतों के जरिए ही बयां की।

तो भाई ये चिट्ठी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ समाया होता है और जब जब वो आता है न जाने किसकी उम्मीद जागती है और न जाने किसकी उम्मीद टूट जाती है। आज के डिजिटल दौर में हर हाथ में मोबाइल है, आप व्हाट्सएप पर संदेश भेज देते हैं और चाहे तो कॉल करके सारी बात कर लेते हैं, सुन लेते हैं। कई बार जो बातें नहीं भी कहनी चाहिए वो भी हम कह डालते हैं, कोई सेंसर नहीं है यहाँ पे। लेकिन जब भी हम खत लिखते हैं तो बड़े एहसास के साथ लिखते हैं, हमेशा सोचते हैं कि पढ़ने वाले को कहीं मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस तरह से अपनी बातों को घुमाकर लपेट कर लिखते हैं और अपना लिखा हुआ जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि सामने वाले को वो चीज़ भेजनी चाहिए जो अच्छी लगती है। लेकिन फ़ोन पर वो बात नहीं हो पाती, फ़ोन पर तो लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं और मनाने के लिए फिर दूसरी कॉल कर लेते हैं। तो ये जो दिल की बातें हैं ना, ये दिल ही जानता है।

0: ऐसे ही खतों में भी न जाने कितने अफसाने लिखे गए भेजे गए। खत न सिर्फ भावनाओं को व्यक्त करते हैं बल्कि वो इतिहास को भी संजो कर रखते हैं। पीढ़ियां इन्हें पढ़कर अपने पूर्वजों की जिंदगी को समझती है। खत लिखने की आदत हमें ज्यादा अच्छा सोचने, कम बोलने और गहरे में महसूस करना सिखाती है। और जाते जाते यही कहूंगी कि खत की अहमियत कभी खत्म नहीं होगी, भले ही तकनीक बदल जाए, इंसानी दिल की भाषा तो वही रहेगी ना। आज ही किसी खास इंसान को एक खूबसूरत सा खत लिखिए, देखिए कैसे कागज का एक टुकड़ा रिश्तों को नई जान दे देगा। आज ये बातें किताबी लग रही हैं और शायद किताबी हैं, हो भी गई हैं, पर कुछ चीजें अपनी जगह छोड़ भी दें तो वो अपने निशान नहीं छोड़ते।
1: अभी अलविदा मत

तो बीते हुए लम्हों को संजोकर रखने में ही यादों की जो धूल है वो हटती नहीं और यादें हमारे साथ रहती हैं। और खतों की इन्हीं बातों के साथ आज के निशिगंधा कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स आज से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियास काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि वे तेलंगाना अपनी समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं आप और गीत सुहानी लेकर मैं माधुरी हूं आप सभी के साथ। तो नमस्कार, और गीत सुहाने में हम आपके लिए लेकर आते हैं ओल्ड क्लासिक्स। तो ये जो पहला गीत है, ये गीत लेकर आए हैं हम फिल्म श्री 420 से।

0: पहुंचे।
1: ये प्यारा सा गीत सुना आपने आशा जी और मोहम्मद रफी साहब की आवाजों में, संगीत एसडी बर्मन का, फिल्म का नाम काला पानी और बोल लिखे मजरू सुल्तान पुरी साहब ने। और अगला गीत जो हम लेकर आ रहे हैं वो भी बहुत ही प्यारा है, चलिए सुन लेते हैं पहले।

शंकर जयकिशन के संगीत से सजा ये गीत सुना आपने मुकेश जी की आवाज में फिल्म आवारा से, और अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए लता जी की आवाज में फिल्म अनाड़ी से।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय बता दें, रात्रि के हो गए हैं 1:31 और पूरे 42 सेकेंड। और ये जो ओल्ड क्लासिक्स का सफर सुन रहे हैं आप, इसका नाम है गीत सुहाने। जी हाँ, सुहाने सुहाने गीत यही मिलते हैं आपको आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर। तो अगला गीत हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए गीता दत्त की आवाज में फिल्म बाजी से।

0: गीत सुना आपने फिल्म दिल देके देखो से। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म आह से, लता जी की आवाज में।
1: तुम्हारे हाथों में मेहंदी रचेगी, तुम्हारी मुरादें भर आएंगी, तुम्हारे सपने सच्चे हो जाएंगे। उस दिन दीदी,

किशोर कुमार की आवाज में ये गीत सुना आपने, एस डी बर्मन का संगीत और फिल्म थी 9-2-11, मजरू सुल्तानपुरी के लिखे बोल थे। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं फिल्म बहार से शमशाद बेगम की आवाज में।

तलत महमूद की आवाज में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म टैक्सी ड्राइवर से एस डी बर्मन साहब का संगीत और साहिर लुधियानवी के बोल। अगला गीत हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए फिल्म देवदास से लता जी की आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स आज से 4 दिन के दौरे पर भारत आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रॉड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए कड़े मुकाबले में खलीलुर रहमान को 99 वोट मिले, जबकि साइप्रस के बहुपक्षीय मामलों के विशेष दूत एंड्रियाज काकोरिस को 91 वोट प्राप्त हुए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ खलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने तथा बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल नई दिल्ली स्थित तेलंगाना भवन में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में नितिन नवीन ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मकता और उद्यमशीलता की भावना के लिए प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23, 21-16 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन हारकर बाहर हो गए हैं। उन्हें इंडोनेशिया के अल्बी फरहान ने सीधे गेमों में 21-19, 21-16 से हराया। मौसम विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, रॉयलसीमा, सौराष्ट्र और

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप और इस वक्त हम लेकर आते हैं कार्यक्रम रात सुरमई और रात सुरमई के साथ माधुरी है एक बार फिर आप सभी के साथ। गिनते रहेंगे सुबह तलक बेदारी में, फूल खिलेंगे जो शब की फुलवारी में, नींद भी बेदारी भी ख्वाब भी आंसू भी, क्या क्या है इन आंखों की अलमारी में। हमने अपनी नींद गवाही दी आखिर ख्वाब नहीं आने की इस बीमारी में।

किनारा किनारे पे बेसुध पड़ा था, समंदर का भी जी भरा लग रहा था। हमें इश्क बस इस सबब से हुआ था, हमारे भी हिस्से में थोड़ा खुदा था।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 2:24 और 47 सेकेंड। ये सफर है रात सुरमई का। इरादा है किसी जंगल में जा रहूंगा मैं, तुम्हारा नाम हर एक पेड़ पर लिखूंगा मैं, हर एक पेड़ पे चढ़कर तुम्हें पुकारूंगा, हर एक पेड़ के नीचे तुम्हें मिलूंगा मैं, हर एक पेड़ कोई दास्तां सुनाएगा, समझ ना पाऊंगा लेकिन सुनूंगा मैं।

एक बेचैनी सी है अंदर भी और बाहर भी, और इस बेचैनी को कुछ यूं पिरो कर देखा है। सुनिएगा, कभी अपने अंदर उतर के तो देखो, घने जंगलों से गुजर के तो देखो। ये मंजर बड़ा बेतुका सा है, फिर भी संवर जाएगा रंग भर के तो देखो। ये सब्जा अभी आंख में आ रहेगा, जरा इस पे तुम पांव धर कर तो देखो।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।

जुड़े हुए हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हैं रात सुरमई में। अपनी ही जात के सागर में उतरने के लिए उम्र भर तरसे हैं हम, डूब के मरने के लिए। एक तेरी चुप ने जुदा खुद से किया है हमको, हाथ से और अभी बाकी हैं गुजरने के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी।

0: एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में से पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और प्राथमिकता के आधार पर इसे लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगस्त्यमलाई के संरक्षित क्षेत्रों के अतिक्रमण मद्रास उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद कई दशकों से जारी है और लगातार बढ़ता गया है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में 15 दिन बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें मंगीलाल विकास बिवाल दिनेश बिवाल यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम पूंजी कोष और अम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इनक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता में से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिग्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड में खेले गए तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड ने भारत को 6 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 180 रन बनाए थे, जिसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंदों में 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले दौर में थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान को 25-23 21-16 से हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by Central Board of Secondary Education CBSE. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for class 12.

ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। रात के 3:10 हो चुके हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही मेरी यानी पंकज के साथ, और मैं आपसे मिलता हूँ दो गानों के बाद। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी के गाने से, यानी कि मूवी का नाम है एक बार कहो। इन दो गानों को सुनिए, फिर आपसे मिलता हूँ।

ये है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। रात के 3:10 हो चुके हैं और अब शुरू होता है कार्यक्रम हमराही मेरी यानी पंकज के साथ, और मैं आपसे मिलता हूँ दो गानों के बाद। तो शुरुआत करते हैं इस मूवी के गाने से, यानी कि मूवी का नाम है एक बार कहो। इन दो गानों को सुनिए, फिर आपसे मिलता हूँ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मूवी का नाम जूली, आनंद बख्शी के बोल और राजेश रोशन का म्यूजिक, किशोर दा और लता जी की आवाज थी और हमराही शो के ये गाने सुने आपने मेरे यानी पंकज के साथ। और एक बार फिर से 3 जून की आधी रात में मैं और आप साथ में हैं और ये ऐसा पल होता है जहां हमें अपने पसंदीदा इंसान की सबसे ज्यादा याद आ रही होती है और उसको पाने की मन में ढेरों दुआएं भी, बस ऐसा लगता है कि अब कबूल हो जाए और हर दिल किसी न किसी पर फिदा है।

खैर, इस पूरे घंटे हम सुनेंगे पुराने जमाने के ड्यूट्स गाने, और चलिए अब आपको ना बैक टू बैक ब्लैक एंड व्हाइट के एरा में मैं लेके चलता हूँ और आपको सुनवाता हूँ दो ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप अलग ही लेवल की मदहोशी फील करेंगे। दो गाने के बाद मिलता हूँ।

मुझे यकीन नहीं होता कि ये ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना जो है वो बीत चुका है। वो अभिनेता नहीं रहे, गायक चले गए, पूरी टीम संसार से चली गई, लेकिन आज भी ये गीतों की याद दुनिया में गूंज रही है। और सच कहूं तो इन गानों ने ही दिलों की मोहब्बत को जगाए रखा है, वरना तो अब दिल की जगह दिमाग यूज करके लोग इश्क करते हैं। हमराही शो में मैं पंकज हूं आपके साथ, और इन दो गानों के बाद आपसे फिर मिलता हूं सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। और ये वाला जो गाना है वो हर प्रेमी का सपना।

What a beautiful song. रात के 3:43 हो चुके हैं. आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन का संगीत, आशा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में, एक में और एक तो फिल्म से एक गाना था. जब ये गाना चल रहा था मैं एक बात सोच रहा था कि कितनी हैरानी की बात है ना कि लोग किसी से अपनी नफरत का इजहार जो है वो कितनी आसानी से कर देते हैं. मतलब वो अपनी हरकतों से बताते हैं कि हाँ हम आपको पसंद नहीं करते, लेकिन वही प्यार के इजहार की जब बात आती है तो उसकी भनक तक नहीं लगने देते. मतलब भनक तक तो छोड़ो, मतलब कोशिश तक नहीं करते. क्या नफरत में इतनी ताकत है कि हमेशा वो जीत जाए? देखिए प्यार के इजहार तो करना चाहिए. प्लीज सामने वाले को जरूर बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं. उसके बाद उनके रिएक्शन जो हो सो हो, एटलीस्ट आपका मन तो ये भारी नहीं रहेगा ना कि आपने अपने दिल की बात कहीं नहीं, कह देनी चाहिए ताकि आगे की जिंदगी में उसे अपना हमराही बनाया जा सके. तो इस गाने के बाद हमराही शो में मैं पंकज आपसे दोबारा मिलता हूँ.

दिन में जो है चारों तरफ कितना शोर रहता है ना, दिल्ली जैसा महानगर जो है वो तो मानो शोर से ही बना हो, लेकिन रात के एक खामोश पल और सुकून, काश ऐसा हो जाता कि सुबह का उजाला ना ही होता तो ज्यादा अच्छा होता, ऐसे ही ऊँगती हुई नींद और इन गानों का मजा लेते हैं हम। लेकिन खैर, सूरज चाचू तो निकलेंगे ही, लेकिन हमारा ही शो का समय जो है वो पूरा होने वाला है। उसके बाद सुबह 4 बजे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आप, और फिर सुबह 4:10 पर अरुणिमा शो में मैं पंकज आपसे फिर मिलूंगा। अभी के

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।

0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह के हस्तक्षेप को नकार दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने काफी समय से लंबित विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति से बाहर नहीं रखा जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से परिवार की परिभाषा में विवाहित बेटी को शामिल नहीं किया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 तारीख तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति अजय गुप्ता ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें मंगीलाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में फ्रॉम एस्पिरेशन टू अचीवमेंट नामक पुस्तिका का विमोचन करेंगे। इस पुस्तिका में अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्गों के लिए उपक्रम पूंजी कोष और आम्बेडकर सामाजिक नवाचार और इंक्यूबेशन मिशन के तहत प्राप्त सहायता से सफल उद्यमियों और नवोन्वेषकों की प्रेरणादायी कहानियां हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। यह आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेलसी रॉड्रिक्स आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर आ रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि डेलसी रॉड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के पारगमन वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। यह व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को तीसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं के नाम रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह के 4:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है कार्यक्रम अरणिमा। मैं पंकज हूँ आपके साथ। इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ, तो शुरुआत करते हैं लता जी की आवाज में बरसात की एक रात फिल्म से।

जैसे रात के बाद सुबह का आना फिक्स है, वैसे ही जीवन में सुख दुख का आना जाना भी तय है। स्थाई तो देखिए कुछ भी नहीं है। किस्मत फिल्म से इस गाने को येसुदास ने गाया था, आपने सुना। अमित खन्ना के बोल और बप्पी लहरी का संगीत था। अरुणिमा शो में मैं पंकज हूँ आपके साथ और छोटी वाली सुबह हो गई है। सुबह के 4:21 हुए हैं और 3 जून की ये सुबह है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। मैं पंकज हूँ आपके साथ। और इंसान की उम्र का ना एक टाइम पीरियड होता है,

और उम्र बीत जाने के बाद फल जो है वो पेड़ से अलग हो जाता है। तो इससे एक बार मिले हुए जीवन के हर पल का खूब आनंद लीजिए। और इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

सफर फिल्म से ये गाना था। किशोर दा की आवाज में कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक और एंदीवर के बोल थे। पता है अपने जीवन में ना हमें किसी इंसान को अथवा तो उसकी शिक्षा स्वभाव चरित्र को अपने ऊपर हमेशा रखना चाहिए, जिसकी स्मृति मात्र से जो है आपको बल मिले। और वो आप कोई भी हो सकते हैं, वो आपके माता पिता हो सकते हैं या गुरु हो सकते हैं, जिनकी याद आपको ऊर्जावान बनाए अथवा तो उनकी तस्वीर देखकर ही आपको मन का बल मिले। सच मानिए, इनका स्मरण हमारी जिंदगी को सकारात्मक बना देता है।

के 4:41 हो चुके हैं। राजेश रोशन का संगीत था, नितिन मुकेश की आवाज, इंदिवर के बोल और जैसी करनी वैसी भरनी था फिल्म का नाम। इंसान का कर्म ही जो है उसके ना अच्छे बुरे दिनों का निर्माण करता है। और एक और बात जो मेरे बड़े मुझे हमेशा समझाते थे कि कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि समय का पहिया जो है वो बड़ा मजबूत होता है। कब राजा को रंक और रंक को राजा बना दे भैया कुछ पता नहीं है। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर मैं हूं पंकज आपके साथ। शो का नाम है अरुणिमा। हमारा

भाव सबके हित के लिए हो। मन, कर्म और वचन से हम किसी का भी अहित ना करें। जब हमारे कर्म के पेज पर हमारी कथा लिखी जाएगी तो कहने और सुनने दोनों महक उठेंगे।

उपहार मूवी से ये गाना था मोहम्मद रफी की आवाज में। और ये बात जो है मैं एक सकारात्मक अंदाज में कहना चाहता हूँ कि जिंदगी का ना कुछ भरोसा नहीं होता, इसका जो है हमें खूब मजा उठाना चाहिए, क्योंकि ये तो फिक्स है कि जो आया है उसका जाना भी अटूट निश्चित है। और अब मैं पंकज आपसे अगले घंटे भोर सुहानी शो में मिलूंगा सुबह 5:10 पर। अभी अरुणिमा शो बस कुछ मिनटों में पूरा हो जाएगा और फिर उसके बाद सुबह 6:10 तक आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। तो बस ऐसे ही सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और इस शो के बचे हुए ये दो गाने सुनिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष S. राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। ये सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष के किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद मामलों को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
1: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों

0: से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
1: भारत ने जर्मनी द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया है। ये व्यवस्था आज से लागू होगी और केवल हवाई मार्ग से जर्मनी के रास्ते यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों पर लागू होगी। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस संबंध में घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान की गई थी। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश आज 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने श्री खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। पश्चिम बंगाल सरकार में आज से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगरपालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर चुका है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The government has constituted a one-member committee to probe into matters relating to procurement of services for on-screen marking OSM system by CBSE, Central Board of Secondary Education. OSM is a new digital evaluation system introduced by CBSE this year for Class 12th board examinations, replacing traditional paper checking. The committee will be chaired by Chairperson of the Capacity Building Commission, S. Radha Chauhan. The committee will submit its report within a month to the Department of Personnel and Training. Meanwhile, the CBSE yesterday officially activated an online portal for verification of marks and evaluation of answer sheets of Class 12 students. Our correspondent reports that the facility is available only to those students who have obtained scanned copies of their evaluated answer books. India has rejected any role for third parties to resolve its boundary matters with Nepal days after Nepalese Prime Minister Balendra Shah sought involvement of China and the UK to address the long-standing dispute. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said both sides have established bilateral mechanisms to deal with all the aspects of border matter.
0: While close to 98% of India-Nepal boundary has been demarcated, there are some unresolved segments. The shifting of the course of Gandak River has resulted in this situation. In addition, there are cases of cross-border occupation and encroachment of no man's land in demarcation.

सुबह के 5:10 हुए हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और अब शुरू होता है भोर सुहानी मेरे यानी पंकज के साथ। और शुरुआत करते हैं इन दो गानों से, और पहला गाना ये सुदास की आवाज में फ्रॉम द मूवीज सुनैना।

सुनते हुए ना ये गाना अलग ही सुकून देता है। वैसे भी अभी मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है क्योंकि अभी धीरे धीरे सुबह हो रही है, रोशनी आसमान में हो चुकी है। लता जी की आवाज में बेमिसाल फिल्म का ये गाना था, आनंद बख्शी के बोल और आरडी बर्मन का संगीत था। आज 3 जून बुधवार है, यह 2026 का छठा नंबर का ये महीना चल रहा है। मतलब समय को तो मानो जैसे पंख लग गए हों, इतनी जल्दी टाइम बीत जाता है। खैर, भोर सुहानी में मैं पंकज हूँ आपके साथ सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। जैसे जैसे सुबह होगी गर्मी तेज होती जाएगी, तो खुद को ठंडा रखने के लिए ठंडे पेय पदार्थ जो है वो पिए और कोशिश करें कि तेज बाहर जो है धूप में, जब तेज धूप हो तो बाहर ना जाएं, वरना अगर जाना पड़े तो छतरी की छांव में ही बाहर निकलें। खैर, अभी के लिए आपको गीला गीला महसूस करवाने के लिए ये लीजिए भीगा हुआ गाना और इन दो गानों के बाद आपसे मिलता हूँ।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।